सुप्रभात। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़ के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठवीं तिथि, तदनुसार 27 जून सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित

0: समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में टी20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।
2: प्रातः बेला की आराधना

वंदना का आरंभ देशभक्ति रचना से हमारी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ाती है हमारे प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना। भारत माता का भाल सदैव ऊंचा बना रहे, यही हम सबकी कामना है और यही हम सबका प्रयास।

और अब स्मरण संसार के रचयिता परमपिता परमेश्वर का। समस्त ब्रह्मांड का वही स्वामी है, क्योंकि वही इस सृष्टि का बार बार निर्माण और संहार करता है, वही रक्षक है, वही पालन करता। समय समय पर वो महामानव बनकर हमें मानवता का प्रेम का पाठ पढ़ाता है और साबित करता है स्वयं का सर्वेश्वर होना, स्वयं का सर्वव्यापी होना।

भक्ति वही सार्थक है जो जीवन से मुक्ति का ज्ञान दे सके। जब तक देह से मोह रहेगा, सांसारिकता का बीज मन में पनपता रहेगा। इन अवरोधों को पार करने के लिए ज्ञान का प्रकाश ही ऐसा माध्यम है जो हमें परमात्मा के समीप पहुंचा सकता है।

हमारी भारत भूमि पर जन्मे महामानव राम ने अपनी मर्यादा से, कृष्ण ने अपने कौशल से, गौतम बुद्ध ने अपने त्याग से और मीरा ने अपने समर्पण से प्रेम को परमात्मा का स्वरूप निरूपित किया है। आइए मीराबाई की एक भक्ति रचना से इसे समझने का प्रयास करें।

सब कुछ रचा है, वही इसके अस्तित्व को बनाए रखने का और इसके पुनर्निर्माण का कारण भी बनता है। प्रकृति और जीवन का यही चक्र संसार की वास्तविकता है, वही असीम शक्ति इसका कारण है और वही कारक। चर अचर जीव और यहां तक कि नारायण भी, सभी पर उसी निरंजनी नारायणी शक्ति का अधिकार है।

0: आज के इस कार्यक्रम में आपने समूह स्वर में देशवंदना के बाद रामकृष्ण चंदेश्री, राजेंद्र काचरू, अनुपमा देशपांडे और पंडित जसराज की गायी भक्ति रचनाएं सुनी। अब आज की वंदना संपन्न होती है।
1: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान।

भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा ले तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं आज का चिंतन, विषय है धर्म, आलेख डॉक्टर प्रभुदयाल मिश्र का।
1: धर्म को लेकर समाज में अनेक भ्रांत धारणाएं वर्तमान में प्रचलित हैं। पहले तो यही जान लेना जरूरी है कि अंग्रेजी का रिलीजन शब्द कैसे भी धर्म के आशय को स्पष्ट नहीं करता। रिलीजन ऐसे विश्वास और मत मतांतरों को ध्वनित करता है जो किन्हीं स्थायी आदेशों, परंपरा और धारणाओं पर आधारित होते हैं। इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन अथवा बोध की क्षमता किसी में भी नहीं देखी जाती। इनका उल्लंघन ईश्वर को दी गई एक प्रकार की चुनौती है, जिसे धर्म के प्रहरी किसी भी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करते हैं। भारतीय परंपरा के धर्म को गीता ने अनेक प्रकार से समझाया और अपने प्रयोग में लाया है। इसमें धर्म का पहला आशय प्रत्येक का अपना स्वभाव प्रकृति है। धर्म की व्यापकता की ये पराकाष्ठा है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अपना स्वयं का है तथा धर्म उसका कतार में बंध जाना नहीं है। उसे इसे जानने, पहचानने और इस पर लगातार शोध करना आवश्यक है। ऐसा करते हुए वो रित अर्थात सृष्टि की मूल व्यवस्था के अनुरूप अपने आप को ढालकर परम श्रेय का अधिकारी हो सकता है। भारतीय वैशेषिक दर्शन में धर्म की परिभाषा करते हुए कहा गया है, यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि ही सधर्मः, अर्थात जो यहां इस लोक में अभ्युदय और परलोक में सिद्धि प्रदान करे वही धर्म है। स्वाभाविक रूप से धर्म अपनी व्यापकता में व्यक्ति और समाज दोनों को परस्पर जोड़ता है। ये जहां सामाजिक जीवन में यम अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अर्थ रखता है, वहीं व्यक्तिगत जीवन में नियम अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की आवश्यकता प्रकट करता है। योग दर्शन के इन पांच यम तथा नियमों ने व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों धाराओं में संतुलन बनाकर रखा है। यदि कोई व्यक्ति यम का पालन करता है तो उससे किसी को कष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी दूसरे को हिंसा, असत्य कथन, धन की चोरी, संग्रह अथवा शील भंग कर कष्ट नहीं पहुंचाता। महाभारत में इसी धर्म को सार रूप में कहा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, अर्थात 18 पुराणों में व्यास ने जो कुछ भी कहा है उसका सार केवल इतना ही है कि परोपकार ही पुण्य है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। इसे व्यवहारिक धरातल पर आज भी सभी के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। अच्छा हो हम ऐसी मान्यताओं और धारणाओं को दूसरों पर न थोपें जो उन्हें उनके स्वयं के अस्तित्व बोध से

0: दूर ले जाती हों। इस संदर्भ में गीता के स्वधर्म और सर्वधर्मान प्रयोगों को भी हमें ठीक से समझ लेना होगा। गीता में जहां श्री कृष्ण स्वधर्मे निधनो श्रेयः अर्थात अपना धर्म पालन करते हुए मर जाना भी श्रेयस्कर कहते हैं, वहां इस धर्म के अनेक कोण हैं। उदाहरण के लिए यदि अर्जुन की तरह कोई योद्धा है तो उसका धर्म युद्ध करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, किंतु ये स्वधर्म कर्तव्य, वर्णाश्रम, आश्रम, मानव धर्म और जीवन धर्म पालन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार जब श्री कृष्ण अंतिम 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो वे किसी धर्म विशेष को अपनाने का आदेश या आग्रह नहीं कर रहे हैं। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि बाहरी शोध और अन्वेषण का कोई अंत नहीं है, अतः सबके भीतर मैं परमात्मा जो बैठा हुआ है उस पर ही सब छोड़ दें। यहां इतना भर समझ लेना और जरूरी है कि ऐसा करते हुए किसी में भी अन्य दूसरे के प्रति कोई भेद बुद्धि शेष नहीं रहेगी। आखिर जो मुझ में है वही तो सब में है। अब जब मैंने उसे अपने में पा लिया है तो उसे सब में भी मुझे देखना है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण के अनुसार समदर्शी हो जाता है। उसे ब्राह्मण, गाय, हस्तिनी, कुत्ते और चांडाल में कहीं कोई भेद दिखाई नहीं देता।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कृषि चर्चा, विषय है सोयाबीन बीज उपचार टीकाकरण। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर रतनदीप सोनी।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज की कृषि चर्चा में हम आपसे बात करेंगे सोयाबीन के बीजोपचार और टीकाकरण के संबंध में। विभिन्न बीमारियों से सोयाबीन के बचाव के हेतु बीजोपचार अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा रोग ग्रसित पौधों के मरने से उपयुक्त पौध संख्या में कमी एवं उत्पादन में हानि होती है। अतः सभी किसान भाइयों की सलाह है कि बोनी करने के पहले सोयाबीन बीज को अनुशंसित पूर्व मिश्रित फफूंदनाशक पेन फ्लू पेन फेन तथा ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन 38 FS के 1 मिलीलीटर मात्रा 1 किलोग्राम बीज के साथ उपचारित कर सकते हैं। यदि ये नहीं है तो दूसरा है कार्बोक्सिन 37.5% तथा थायरम 37.5% का जो मिश्रण आता है 3 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ उपचारित कर सकते हैं, अथवा थायरम 2 ग्राम एवं कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ, और यदि जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा वेरी उपलब्ध है तो 8 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में पीला मोज़ेक बीमारी तथा तना मक्खी का प्रकोप भी देखने को आता है, ऐसे क्षेत्रों में किसान भाई सजग रहें और अनुशंसित मात्रा में फफूंदनाशक से बीज उपचार करने के पश्चात जो हमने पहले बताया है कीटनाशक थायोमिथॉक्सम 30 FS 10 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के साथ, अथवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL 1.25 माने 1.25 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के साथ बीज उपचार करने की अनुशंसा की जाती है, ताकि मोज़ेक रोग और फल तना मक्खी कीट के प्रकोप से फसल को बचाया जा सके प्रारंभिक तौर पर। जो उपरोक्त हमने आपसे अनुशंसित कवकनाशियों और उपचारित बीज को छाया में सुखाने के पश्चात जैविक खाद का यदि हम से उपचारित करना चाहते हैं, जैसे ब्रेडी राइजोबियम कल्चर तथा PSV कल्चर दोनों को यदि पहले से इनका उपचार किया जाता रहा है तो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के साथ इसका टीकाकरण करना है और तुरंत बोनी के हेतु उपयोग में लाना है। यदि नई ज़मीन में हम कर रहे हैं तो सोयाबीन की खेती करने की स्थिति में हम जैविक खाद की मात्रा जो 5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित करते हैं राइजोम कल्चर PSV कल्चर, उसकी जगह में 10 से 15 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करना चाहिए, ताकि

0: एजोबियम का इनाकुलेशन अच्छे ढंग से हो सके और वातावरण के नत्रजन और भूमि में उपलब्ध फास्फोरस तत्व का अवशोषण पौधों के हित में अधिक से अधिक हो सके। कृषक गण विशेष ध्यान रखें कि क्रमानुसार फफूंदनाशक, फिर कीटनाशक से बीजोपचार के पश्चात ही जैविक कल्चर खाद का द्वारा टीकाकरण करना चाहिए। साथ ही कल्चर व कवकनाशियों को एक साथ मिलाकर कभी भी उपयोग में नहीं लाना चाहिए, जबकि जैविक फफूंदनाशी ट्राइकोडर्मा वेरी का उपयोग करने की स्थिति में अनुशंसित कीटनाशक से बीजोपचार पश्चात तीनों जैविक उत्पाद राइजोबियम कल्चर एवं पीएसएम पीएसबी कल्चर तथा ट्राइकोडर्मा वेरी को मिलाकर बीज का टीकाकरण कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस तरह से यदि हम व्यवस्थित ढंग से क्रमानुसार सोयाबीन के बीज का उपचार करते हैं तो पौधों में लगने वाली फफूंद जनित बीमारियां और बीज में जो कीट का प्रकोप होता है, विषाणुओं का प्रकोप होता है, उनसे अब फसलों को बचाया जा सकता है। यह विशेष ध्यान देने की बात है, यदि इनमें चूक होती है तो दिक्कत आ सकती है और हमारी फसल रोगों से और कीटों के प्रकोपों से प्रभावित हो सकती है, हमें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति ना आने पाए इसलिए हमें ध्यान रखना है किसान भाइयों। और जहाँ तक बीज की बात है सोयाबीन की, बीज का अंकुरण पहले कर लेना चाहिए, परीक्षण हो जाए ताकि कम से कम 100 दानों में 70 दाने उगते हों। ऐसे बीज का प्रयोग अनुशंसित बीज दर प्रति हेक्टर के हिसाब से या प्रति एकड़ के हिसाब से काम में बुवाई के लिए लाना चाहिए। और जो भी हम बीज लें, अच्छा होगा कि बीज उत्पादक संस्थाओं से लिया गया हो, बीज प्रमाणित हो और इस बीज को उचित फफूंदनाशी रसायन से उपचारित किया गया हो। आज की कृषि चर्चा में किसान भाइयों बस इतना ही।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए देश पर मिटे।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में संस्कृत में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः दिव्यानन्द झा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:05 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आइए आपको जानकारी दे दें आकाशवाणी भोपाल और आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे एमएसएमई दिवस पर चर्चा, मध्य प्रदेश इकोसिस्टम इनेबलर और स्टार्टअप मेंटर श्री प्रदीप करमलेकर से बातचीत, मध्य प्रदेश पुलिस का साइबर अपराध के प्रति जन जागरूकता अभियान सेल्फ क्लिक 2.0 के संबंध में जानकारी एसीपी साइबर श्री सुजीत तिवारी से, और साथ साथ जोड़ों के स्वास्थ्य में योग किस तरह से लाभकारी हैं जानेंगे शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र में योग प्रशिक्षक डॉक्टर गीता सिंह से। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत कार्यक्रम का समय है सुबह 9:15। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे अर्चना सिंह के गाए बघेली गीत, इनसे मिलिए। ये कार्यक्रम होगा सुबह 9:30 पर। इसमें सुनिए चित्रकार एवं बाल साहित्यकार श्रीमती अनिता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत। सुबह 10:00 आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी गीत सागर। ये कार्यक्रम होगा 10:05 पर।

10:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे रत्नाकर व्यास का सरोद वादन, राग होगा नट भैरव। दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे आपकी फरमाइश। ये कार्यक्रम होगा दोपहर 12 बजे। 12:30 पर सुनिए संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी। दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे महिला कार्यक्रम। 1:30 पर होगा लोक संगीत और 1:45 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के रीवा केंद्र का योगदान रहेगा। दोपहर 2 बजे फिल्म संगीत आप सुनेंगे और आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा 2:30 पर। सांध्यकालीन सभा में 5:02 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी, प्रस्तुति होगी रीवा केंद्र की। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 5:33 पर और पुनः फिल्म संगीत 6:00 भी आप सुनेंगे। ग्राम सभा कार्यक्रम होगा 7:21 पर। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात 8 बजे सुर्खियों में रात 8:15 पर सुनिए पॉडकास्ट सीरीज प्रकृति की बात आकाशवाणी साथ के साथ की 7वीं कड़ी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 8:35 पर। 9:30 पर होगा कार्यक्रम विज्ञान भारती और रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आप सुनेंगे। ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

आपको पुनः बता दें कि सुबह 9:30 पर इनसे मिलिए कार्यक्रम होगा। इसमें आप सुनेंगे चित्रकार और बाल साहित्यकार श्रीमती अनिता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत। ये थे आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित सेवा भारत टैक्सी का गुजरात में करेंगे शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आतिथ्य में होगा विशेष कार्यक्रम। और आज भोपाल, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा दल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ बातचीत करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वे वहां भारत वंशियों से भी मिलेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल्स पर इसका सीधा प्रसारण होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश को नशे के खतरे से बचाने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल का भी शुभारंभ किया। संबोधन में अमित शाह ने कहा कि देश नशे के खिलाफ लड़ाई के बेहद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है।
1: मादक पदार्थों की समस्या केवल कानून व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं है, नार्को टेररिज्म इकोसिस्टम भी बन चुकी है। तो हमारी देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे देश के अर्थतंत्र की सुरक्षा के लिए और हमारे देश की युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम इस पर संपूर्ण विजय प्राप्त करें।
0: समान नागरिक संहिता यूजीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए अध्ययन और परीक्षण संबंधी उच्च स्तरीय समिति की बैठक कल नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश भवन में हुई। समिति की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विधेयक के प्रारूप के साथ ही विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति समेत अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति सदस्य सचिव अजय कटेसरिया ने बताया कि समिति की रिपोर्ट की ड्राफ्टिंग अंतिम चरण में है। समिति की रिपोर्ट के 2 भाग होंगे, जिसमें पहला भाग समिति के अनुशंसाओं का और दूसरा भाग समिति द्वारा किए गए जन परामर्शों से संबंधित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज शाम को सनसेट पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में शामिल होंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। अगले दिन सुबह 6:30 पर सनराइज और बुज पॉइंट पर मेडिटेशन करेंगे। फिर सहायता समूह

0: समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन भी करेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की प्रदेशवासियों सहित उद्यमियों को शुभकामनाएं और बधाई दी है। श्री कश्यप ने कहा है कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था की सशक्त आधारशिला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जैसे अभिनव आयोजनों ने प्रदेश में एमएसएमई स्टार्टअप्स और निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोले हैं। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ा है, रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं और स्थानीय उद्यमों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल लोकतंत्र सेनानी स्मृति दिवस के अवसर पर रविन्द्र भवन में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी, साथ ही लोकतंत्र सेनानियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी।
2: लोकतंत्र सेनानियों के योगदान के शिलालेख उनके निवास क्षेत्र के आसपास लगाने के भवन, पार्क या मार्ग का नाम रखने के लिए मैं सहमत हूँ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, लोकतंत्र सेनानियों के इलाज के लिए जो खर्चा लगेगा सरकार देने के लिए तैयार रहेगी। हमारे लोकतंत्र सेनानी अपने राज्य के अंदर कई जगह छोटे छोटे स्थान पर भी रहते हैं और ऐसे में कभी कोई गंभीर बीमारी पड़ी और वहाँ राज्य के उस अस्पताल में इलाज नहीं है तो हमारी एयर एम्बुलेंस निःशुल्क लेकर के आएगी और उनका इलाज कराएगी।
0: प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मॉनसून ठहर गया। मौसम केंद्र भोपाल के मुताबिक मॉनसून आगे बढ़ा तो पहले ये भोपाल उज्जैन संभाग में पहुंचेगा, आखिर में ग्वालियर चंबल में दस्तक देगा। प्रदेश में मॉनसून 24 जून को पहुंचा था। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मॉनसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां बन रही है। इसके असर से आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारे शिकस्त दी। लंदन के ली वैली हॉकी सेंटर में खेले गए मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, चुकराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। सातवां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समय स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे की भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, पीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। खंडवा में साइबर अपराधों से बचाव के लिए पुलिस का सेफ क्लिक 2.2 अभियान लगातार जारी है। अभियान के तीसरे दिन विशेष साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा कलेक्टर के आदेश पर 24 घंटे संचालित होने वाला जिलास्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। सतना जिले में जिला प्रशासन और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में कई जगह नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत नुक्कड़ नाटक सहित अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। निंडौरी में कल से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत जिले के 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इंदौर में मध्य प्रदेश गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल वृत्त इंदौर ने कॉलोनियों के निवासियों के लिए समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया। गुना में कल राजस्व और नगर परिषद के संयुक्त अमले द्वारा संचालित कोचिंग संस्थानों का सघन निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार भोपाल।

नमस्कार भोपाल के सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज कार्यक्रम में आप सुनेंगे जूही राव के साथ। श्रोताओं, आज कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के बारे में जानने से। हेलेन केलर, जी हाँ, ये अमेरिकी लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद थी। उनका जन्म आज ही के दिन 1880 में अलाबामा में हुआ था। उन्होंने नेत्रहीनों और महिलाओं के मताधिकार की वकालत की और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन की सह संस्थापिका भी रहीं।

बचपन में हुई बीमारी के कारण उनकी देखने और सुनने की शक्ति चली गई थी, लेकिन एनी सुलिवन जो कि उनके साथ में रही, उनकी शिक्षिका बनी, उनके कारण वे लिखने और पढ़ने लगी और साथ में लेखिका भी बनी। वे पहली महिला बनी जो कि नेत्रहीन और बधिर रहते हुए भी उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप पूरी की, साथ ही ग्रेजुएशन भी किया। उनका मानना था कि जीवन में यदि संघर्ष किया जाए तो कोई काम ऐसा नहीं है जिसे हम नहीं कर सकते। उनका यह भी कहना था कि खतरों से बचना पूरी तरह असंभव तो नहीं, लेकिन उन्होंने ये हमें सिखाया है कि हमारा प्राथमिक लक्ष्य ये होना चाहिए कि खतरों से हम जीवन में आगे लड़कर कैसे बढ़ सकते हैं। उन्होंने श्रमिक वर्ग के लोगों और महिलाओं के लिए न्याय प्राप्त करने और युद्ध में बीमार हुए सैनिकों के लिए भी उन्होंने कार्य किया जो नेत्रहीन हो गए, उनके लिए उन्होंने एक एसोसिएशन भी बनाया जो कि लंबे समय तक कार्य कर रहा है। हेलेन केलर जैसे व्यक्तित्व हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी चुनौतियां आती हैं उनसे डरना नहीं है, उनसे हारना नहीं है, हमें बस आगे बढ़ते जाना है। अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और जीवन में पढ़ाई बहुत आवश्यक है।

मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। अब आपको बताने जा रहे हैं आज के समाचार पत्रों से कुछ मुख्य समाचार और उपयोगी जानकारियां।

मौसम की बात करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश में मॉनसून 43 ज़िलों में बारिश का येलो अलर्ट, 39 ज़िलों में बारिश, भोपाल में 2 से 3 दिन का इंतज़ार और बढ़ा। नीट यूजी बैंक डिटेल्स सुधार के लिए 30 जून तक मौका।

आज शुरू होगा द बंसी कॉल सेंटर फॉर थिएटर प्रैक्टिस। रंग विदूषक का नया ठिकाना बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज शनिवार को होने जा रहा है। पॉलिटेक्निक में बनेगा हाईटेक एजुकेशन टीवी सेंटर। फिल्म ओटीटी इंडस्ट्री को मिलेगी ट्रेनिंग। इंडस्ट्री जैसा होगा स्टूडियो, पॉडकास्ट, पोस्ट प्रोडक्शन लैब और एग्जीबिशन हॉल भी रहेगा। लर्न एंड अर्न मॉडल को मिलेगी नई ताकत। गायन पर्व 3 जुलाई से भारत भवन में। पद्मश्री अश्विनी भिड़े देशपांडे का होगा गायन। सारस फेस्टिवल 5 जुलाई को। बेस्ट 30 फोटोग्राफ्स होंगी प्रदर्शित। ये आयोजन नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और भोपाल बर्ड्स की ओर से दूसरे वर्ष लगातार होने जा रहा है। मैहर बैंड अगरिया लौह और निर्माण का स्वाद अब राष्ट्रीय अमूर्त

विरासत ICH में शामिल कराने मध्य प्रदेश पर्यटन मंडल ने भेजे थे प्रस्ताव। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने का दावा हुआ मजबूत। श्रोताओं, ये थी कुछ जानकारियां आज के समाचार पत्रों से, और अब कार्यक्रम में हम बढ़ते हैं आगे।

0: नमस्कार, मैं सुलेखा भट्ट, शास्त्रीय गायिका।
1: नमस्कार, मैं प्रवीण शिवलिकर, वायलिन वादक।
2: मैं डॉक्टर लता सिंह मुंशी, नृत्यांगना एवं गुरु भरतनाट्यम।
3: नमस्कार जी, मेरा नाम अखिलेश गुंदेचा है, मैं पखावज वादक हूँ।
1: आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
0: आप सुन रहे हैं नमस्कार भोपाल।
2: नमस्कार भोपाल के सभी श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाइयां, नमस्ते।
3: नमस्कार भोपाल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं।
4: मीडियम वेव, डीटीएच और प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन, साथ ही वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर यह है नमस्कार भोपाल कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एमएसएमई दिवस मनाया जा रहा है और इस दिवस को क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये सब जानने के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ में है मध्य प्रदेश इकोसिस्टम एनेबलर और स्टार्टअप मेंटर श्री प्रदीप करम्बेलेकर। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में।
5: नमस्कार, आकाशवाणी पे मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एमएसएमई डे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई डे के रूप में 27 जून को मनाया जाता है। उसका एक ही उद्देश्य है कि लगभग 60-70% जो इकोनॉमी का हिस्सा है, जो पूर्व सकल उत्पादन का हिस्सा है और सर्विस इंडस्ट्री का हिस्सा है, वो एमएसएमई से आता है। तो एमएसएमई को एक तरह से उत्साह उनका बढ़ाने के लिए और कैसे वो ग्रोथ कर सकें और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उद्यमिता में आ सकें, इस उद्देश्य से एमएसएमई डे मनाया जाता है। और उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि जैसा भारत सरकार भी लगातार कह रही है कि जिस तरह से बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, तो उद्यमी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में एमएसएमई डे, स्टार्टअप डे, इनका महत्व और बढ़ जाता है।
4: सर, आज के स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं तो उनको एमएसएमई की तरफ से कितना लाभ मिलता है?
5: देखिए, मध्य प्रदेश अगर आप देखें तो एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेट है जहाँ तक स्टार्टअप्स की बात की जाए या स्टार्टअप्स की पॉलिसी की बात की जाए। सरकार इकोसिस्टम बनाने में बहुत प्रयासरत है। अगर आप देखें तो ग्रांट की बात, सबसे अधिक स्टार्टअप्स चाहते हैं कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिले। तो बिल्कुल शुरुआत से देखें तो रेंटल असिस्टेंस भी है 5,000 रुपये अधिकतम तक, यहाँ तक कि अब तो 10,000 रुपये प्रति माह सरकार दे रही है जो स्टार्टअप होते हैं मध्य प्रदेश के, उनको सपोर्ट सिस्टम के रूप में पहले एक साल तक। उसके अलावा मैचिंग ग्रांट्स दे रहे हैं स्टार्टअप्स को। अगर आप किसी सेबी रजिस्टर्ड AIF या किसी के थ्रू आपको फंड मिलता है तो उसका 15% का एक मैचिंग ग्रांट देती है गवर्नमेंट स्टार्टअप को। वहीं अगर महिलाओं की बात करें, अगर किसी स्टार्टअप में महिला की प्रतिभागिता 51% या उससे अधिक है तो उसको 18 लाख तक का मैचिंग ग्रांट मिल सकता है। तो एक ये बड़ा अच्छा प्रयास है और मध्य प्रदेश शासन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तीव्र गति से स्टार्टअप का उत्थान चाहती है और बहुत तेजी से वो कार्य करना चाहती है और एक अनुकूल माहौल है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश में अब ज्यादातर रजिस्ट्रेशन, चाहे वो गुमास्ता हो, चाहे उद्यम आधार नंबर हो या किसी भी प्रकार की सब्सिडीज हो, वो सब अब धीरे धीरे ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो गई हैं। और उद्यमी को और क्या चाहिए, अगर सभी चीजें एक प्लेटफॉर्म पर सुगम रूप से सीमलेस प्राप्त होने लगे तो उद्यम करना आसान हो जाता है, शुरुआत तो आसान हो ही जाती है।
4: प्रदीप जी, बतौर स्टार्टअप मेंटर आपसे जानना चाहेंगे कि एक स्टार्टअप सक्सेसफुल हो या अच्छा ग्रो करे, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स, क्या बेसिक उन्हें फुलफिल करना चाहिए?
5: देखिए, किसी भी स्टार्टअप की सबसे बड़ी सक्सेस का रीजन जो मैंने देखा है वो अपने आइडिया, जो उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया पर कार्य करना शुरू किया है उसके ऊपर पैशनेट होना जरूरी है, जिसको कहते हैं ना जुट जाना। सबसे पहला तो होता है कि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, वो अल्टीमेटली किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है, तो ये तो एक बेसिक है। लेकिन कई लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढ लेते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा आइडिया भी जनरेट कर लेते हैं, स्ट्रैटेजी भी बना लेते हैं, तो एक्शन ही शुरू नहीं कर पाते। आजकल के कई ऐसे स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं जो एग्जीक्यूशन में वीक हो जाते हैं। इसलिए मैं आजकल स्टार्टअप से कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचिए मत, करना शुरू कर दीजिए, पूरी पैशन और शिद्दत से शुरू करिए। वेट मत करिए कि जब कुछ अच्छा समय आएगा, जब कुछ ऐसा हो जाएगा तब मैं शायद स्टार्टअप को शुरू करूंगा। उसको दिमाग में रखने में और लगातार

0: लोगों से बात करने से बेहतर है यू जस्ट स्टार्ट, एग्जीक्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इकोसिस्टम पूरा, चाहे मुझ जैसे मेंटर हो, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हो, खुद सरकार हो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, आज की डेट में हर व्यक्ति चाहता है कि स्टार्टअप आगे बढ़े, इस देश में उद्यमिता का कल्चर आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि कोई विशेष परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी भी उद्यमी को, अगर उसमें थोड़ी सी भी जीवटता और पैशन है कि वो अपना बिजनेस क्रिएट ना कर पाए।
1: प्रदीप जी, आपने शासन के साथ में इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स की हेल्प के लिए स्टार्ट किया, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए।
0: इंक्यूबेशन सेंटर VASPL इंक्यूबेशन हमने 10 वर्ष पहले जब सरकार की पॉलिसी आई थी तो पहला प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर हमें प्राप्त हुआ था, और उसके बाद से यहाँ पर लगभग 100 से अधिक स्टार्टअप्स तैयार हो चुके हैं। और इंक्यूबेशन का एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी नए और छोटे आइडिया को, जो आइडिया पल्लवित होना चाहता है, उसको वो पल्लवित होने में मदद करता है। उसको किस तरह से हम सीड फंड के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, कैसे उसके सॉफ्टवेयर्स में मदद कर सकते हैं, उसके आइडिया को कैसे हम एक बिजनेस रूप दे सकते हैं, ये सारा इंक्यूबेशन का काम होता है। और विगत कई वर्षों से हम वही कार्य कर रहे हैं। चूंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव और उसके अलावा जो मेरा नेटवर्क है, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सो उसके कारण मेरे पास सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि मैं अपने स्टार्टअप्स को गो टू मार्केट, कैसे वो मार्केट में अपने क्लाइंट्स को ढूंढें या उनको पिच करें, उसमें उनकी काफ़ी मदद कर पाता हूँ, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं ट्रैक्शन लाने में उनकी मदद कर पाता हूँ। सो दैट इज़ अ मेन मोटिव नाउडेज कि स्टार्टअप्स को मैं कहता हूँ कि फंड्स भी ढूंढिए, लेकिन फंड्स के साथ साथ क्लाइंट के पास जाना और क्लाइंट के पास पिचिंग शुरू करिए। अगर आपको इन्वेस्टर की जगह कस्टमर से पैसा मिलने लगेगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट नीड्स को आसानी से आप पूरा कर लेंगे।
1: प्रदीप जी, MSME डे पर कोई आयोजन भी होने जा रहा है?
0: 27 तारीख को मध्य प्रदेश शासन का एक फंक्शन है और उसमें हम सब सहभागिता करेंगे। गवर्नमेंट ने रजिस्ट्रेशन लिंक्स वगैरह भेजी गई हैं, विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे CII, फिकी और जितने भी इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है वे भी अपने मेंबर्स को इनवाइट कर रहे हैं। इसी तरह भारत सरकार की तरफ से भी इन्विटेशन है, उनके यहाँ भी MSME डे है और माननीय उपराष्ट्रपति जी उसमें जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सभी क्षेत्र में सभी, और आज की डेट में ऐसा कौन सा राज्य है जो युवाओं के लिए स्टार्टअप और MSME पे बात न कर रही हो, तो इसका महत्व तो अपने आप बढ़ गया है। हर व्यक्ति अपनी तरह से कुछ न कुछ उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। 10 बजे से रविंद्र भवन में आयोजित है।
1: प्रदीप जी, मैसेज आप देना चाहेंगे MSME डे पे लास्टली आकाशवाणी के जरिए?
0: जिस तरह से AI आगे बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से नए कंसेप्ट आते जा रहे हैं, जिस तरह से मशीनें आगे बढ़ती हैं, और सबसे बड़ी बात, जहां जैसे जैसे भारतीय दुनिया पे छाते जा रहे हैं, इससे बेहतर और सकारात्मक समय मुझे नहीं लगता पुनः आएगा। ये 25 साल हमारे हैं और इन 25 सालों को हम कैसे अपने देश को आगे ले आने के लिए कर सकते हैं, MSME उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
1: आपने इतना बहुमूल्य समय दिया अपना हमारे सभी श्रोताओं को MSME डे और स्टार्टअप्स के बारे में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, आपने मुझे इस योग्य समझा, उसके लिए धन्यवाद।
1: श्रोताओं, MSME दिवस पर चर्चा के लिए अभी हमारे साथ में थे श्री प्रदीप करम बेलकर, मध्य प्रदेश इकोसिस्टम एनेबलर और स्टार्टअप मेंटर।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा साइबर अपराध के प्रति जन जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 हाल ही में शुरू किया गया है। इसके संबंध में हमने आपके लिए जानकारी ली है ACP साइबर श्री सुजीत तिवारी से। स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में।
1: थैंक यू। ये हमारा सेफ क्लिक 2.0 दूसरा प्रोग्राम है जो हमारे माननीय DGP साहब के निर्देशन में, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि पिछले वर्ष सेफ क्लिक 1.0 चलाया गया था, उसी कड़ी में साइबर अवेयरनेस फैलाने के लिए यह दूसरा प्रोग्राम है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था प्रोग्राम का, और एक साइबर रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था भोपाल शहर के लिए। इसके साथ ही साइबर सेफ 2.0 जो है वो भोपाल ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश के सभी पुलिस थानों के द्वारा इस कार्रवाई को किया जा रहा है और अपने अपने थाना क्षेत्रों में साइबर अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये 15 दिन का अभियान है। जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर फ्रॉड जो है इसके ट्रेंड बदलते रहते हैं। साइबर फ्रॉडस्टर्स कोशिश करते हैं कि नए नए तरीके इजाद कर सकें, और ऐसा हुआ भी है कि कुछ उन्होंने ट्रेंडों को चेंज किया। जैसे आपने देखा होगा विगत दिनों में डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज लोग नहीं जानते थे, तो डिजिटल अरेस्ट आ गया। इसके अलावा और भी नई नई जो स्कीम होती है, या किसी तरीके की कहीं पे कोई प्राकृतिक आपदा होती है उसमें राहत कार्य प्रारंभ होता है तो फ्रॉडस्टर्स उसकी आड़ लेकर फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। तो 2.0 का मकसद ये है कि पुरानी बातें तो जो साइबर अवेयरनेस के लिए हम चला रहे हैं वो तो रहेंगी, साथ में जो कुछ नए तरीके के जैसे साइबर फ्रॉड फ्रॉडस्टर्स ने इजाद किए हैं, जैसे डिजिटल अरेस्ट और अन्य विभिन्न प्रकार के वो हैं, उसके बारे में भी आम जनता को जागरूक किया जाए जिससे वो समझ सकें और अवेयर हो सकें साइबर फ्रॉड्स।
0: इसमें बैंक से रिलेटेड जो अपराध रहते हैं कि आपका अकाउंट में डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है तो हम बैंक से फोन कर रहे हैं, OTP आएगा, बुजुर्गों के प्रति भी अपराध बढ़ते जा रहे हैं साइबर से रिलेटेड, तो उनके लिए क्या व्यवस्था रहेगी इसमें?
1: देखिए, इसमें हर थाने को, यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसमें बताया गया है कि उसके अपने थाना क्षेत्र के करीब करीब हर एरिया को कवर करना है। जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, सभी तरह के प्रतिष्ठान हो गए, अगर किसी कॉलोनी में रिटायर्ड कर्मचारी या इस तरीके के व्यक्ति ओल्ड सिटीजन्स रहते हैं तो उनको भी गैदर करके और उनको भी जागरूक करें, विभिन्न संस्थाओं में जाना, मतलब कुल मिला के टारगेट ये है कि थाना क्षेत्र में आने वाले हर प्रतिष्ठान, हर व्यक्ति, यहाँ तक कि सार्वजनिक जहाँ बाजार है वहाँ पर भी जाकर लेक्चर के माध्यम से और PPT के माध्यम से आम नागरिक को जागरूक करना। मतलब कोशिश ये की जा रही है कि हर व्यक्ति को इसमें, चाहे वह युवा हो, सीनियर सिटीजन हो, किसी प्रतिष्ठान में काम करने वाले हो, ठेला लगाने वाला हो, वो सब सामान्य व्यक्ति इसमें कवर हो सके ताकि सभी साइबर जागरूकता के इस अभियान में शामिल हो सके और साइबर सेफ हो सके। इसमें जागरूकता में यही चीजें भी बताई जाएंगी कि उनको किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या क्या सावधानियां बरतनी है, और किस प्रकार से जेन्युइन जो मैसेज करने वाला कोई ऐप होता है या लिंक होता है उसको कैसे चेक किया जाए। अमूमन होता यह है कि आदमी मोबाइल तो इस्तेमाल करता है लेकिन वो इस पर ध्यान नहीं देता है कि किस तरीके की लिंक सही है गलत है, या इसमें तीन चीजें काम करती हैं। एक तो लालच, जैसे पैसे का अगर किसी को लालच दिया जाए तो थोड़ी देर के लिए आदमी का दिमाग डाइवर्ट होता है। एक होता है डर, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट वाला प्रकरण चला कि किसी को इस तरीके का डर दिखाकर, और एक होता है जल्दीबाजी। तो जल्दीबाजी में कई बार हम इन चीज़ों को देख नहीं पाते, तो यहाँ जो साइबर अवेयरनेस चलाई जा रही है उसका मकसद ये है कि आप जो सही लिंक हैं, सही ऐप्स हैं, उनको कैसे पहचानें, जहाँ फ्रॉड की संभावना लगे वहाँ पर रुकें, या अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आपको तत्काल कहाँ पर संपर्क करना है जिससे आपकी संबंधित संस्था मदद कर सके।
0: यदि कोई व्यक्ति फ्रॉड का शिकार हो जाए तो उसे सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: जैसा कि इस अवेयरनेस कैंपेन में भी बताया जा रहा है, 1930 जो टोल फ्री नंबर है वहां संपर्क करें, cybercrime.gov.in वेबसाइट है उस पे जाएं। अगर वह इन चीजों से भी अनभिज्ञ है तो वो तत्काल उसको अपने संबंधित जो पास का थाना है वहां पे जाना चाहिए। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि भोपाल में तो हर थाने में साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति संबंधित थाने पे जा सकता है, अपनी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अलावा बैंक में भी जा सकता है, संबंधित बैंक को जाकर भी, बैंकों को भी अब इसका नोडल बनाया गया है कि वो उस आधार पे तत्काल मेल करें और उस व्यक्ति के खातों से जा रहे पैसे को रोकने का प्रयास करें।
0: जी जी सर,

0: यदि कोई जो फ्रॉडस्टर्स पकड़े जाते हैं तो उनको अधिकतम या क्या सजा का प्रावधान है?
1: देखिए, सजा का प्रावधान तो जो हमारे नए लॉज हैं और जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में प्रावधान जो दिए गए हैं धाराओं के हिसाब से, तो सजाएं तो वो जो उसमें निर्धारित की गई हैं उसके हिसाब से होती हैं। मेन चीज़ होती है कि उनको ट्रेस आउट करना और उनको पकड़ना। तो सजाएं तो जो निर्धारित, जैसा हमारे यहाँ जो प्रचलित कानून है उसके हिसाब से ही न्यायालय देंगे उनको। और लेकिन ये है कि हमारा उनको टारगेट करना, और सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आदमी अवेयर होगा तो साइबर फ्रॉड उसके साथ नहीं होगा, तो वो इस कैंपेन का मकसद ही यही है।
0: जी, किस तरह से ट्रैक किया जाता है, क्या आप बताना चाहेंगे?
1: साइबर फ्रॉड की शुरुआत होती है वो बैंक खाते और मोबाइल नंबर से होती है। कोई भी फ्रॉडस्टर जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, तो सबसे पहले उसमें मोबाइल का नंबर होता है, और जो पैसों का जो ट्रांजेक्शन होता है वो किन्हीं ना किन्हीं खातों में होता है। तो हम लोग जब शिकायत होती है तो उसके बाद मोबाइल नंबर्स और खातों के आधार पर, क्योंकि सारी चीज़ें आज डिजिटल हैं, तो फ्रॉड करने वाले का भी पता उसी आधार पर डिजिटलाइजेशन जो हमारे सिस्टम हैं, हमारे जो ऐप्स हैं, उनके माध्यम से लगाया जाता है।
0: यहाँ पर रेडियो के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: देखिए, आज मोबाइल एक ऐसी वस्तु है कि जिसमें हमारा सारा संसार सिमट गया है। सोशल मीडिया से लेकर हमारे बैंक के ट्रांजेक्शन्स तक सभी कुछ आज हमारे मोबाइल में है। तो हमें उस मोबाइल को बड़ी गंभीरता से लेना है। हम मोबाइल का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम लोग उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए, उसको किस तरीके से सावधानियां बरती जाएं, ये चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते हैं। अगर हम उस मोबाइल को गंभीरता से लेते हुए, जैसा कि इस अभियान में भी बताया जा रहा है, और लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को अवेयर किया जाता है, तो हमेशा ध्यान रखें कि साइबर फ्रॉड जो होता है वो, जैसा मैंने आपको बताया, तीन चीज़ें हैं, लालच, डर और जल्दीबाजी। तो ये कभी ना करें। किसी भी प्रकार के लिंक, किसी भी प्रकार के ऐप, किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया के द्वारा प्रचारित या प्रसारित किए जा रहे एडवर्टाइजमेंट या इन चीज़ों पे एकदम से भरोसा ना करें। हमेशा रुकें, पहले उसकी सत्यता को चेक करें, और उसके बाद ही किसी तरीके की भी लिंक, ऐप, इन चीज़ों पर अपने ट्रांजेक्शन या किसी भी प्रकार की चीज़ों को शेयर करें। साथ ही सोशल मीडिया पर यह भी ध्यान रखें कि हमको हर चीज़ अपनी सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा चीज़ें सार्वजनिक करने से फ्रॉडस्टर उसका गलत फायदा उठा सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं, अगर आप इनका ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पे आप साइबर फ्रॉड से बच सकें।
0: सेफली 2.0 के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सभी सुनने वालों के साथ साझा की। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू, धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके माध्यम से भी कहीं ना कहीं ये मैसेज हमारे आम जन तक जाएगा। तो हम चाहेंगे कि सभी नागरिक साइबर सेफ रहें, साइबर सुरक्षित रहें। धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थे एसीपी साइबर श्री सुजीत तिवारी। हमें आशा है कि आपने बातचीत ध्यान से सुनी होगी और आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे जिससे आप साइबर सेफ रहें। कोई भी आप मोबाइल पर मैसेज आए या फिर आपके मोबाइल पर या कंप्यूटर पर कोई लिंक आए तो उसे एकदम से क्लिक ना करें, पहले देखें, समझें और फिर कॉल करें या फिर उसे डिलीट कर दें। या और यदि आपके साथ कोई ऐसी घटना होती है तो 1930 पर तुरंत कॉल करके साइबर फ्रॉड की जानकारी दें।

0: मीडियम वेव डीटीएच प्रसार भारती के मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार भोपाल आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। श्रोताओं, हम आपको निरंतर योग से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं कार्यक्रम में, जिससे आप स्वस्थ रह सकें। आज हम जानेंगे कि जोड़ों के स्वास्थ्य में योग किस तरह से लाभकारी है।
1: डॉक्टर गीता सिंह, योग प्रशिक्षक, शासकीय योग प्रशिक्षण केंद्र, शिवाजी नगर, भोपाल।
0: बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
1: नमस्कार, थैंक यू जूही। आजकल क्या है कि विशेषकर जो 50 के बाद, चाहे वह पुरुष हो चाहे महिला, 80% लोगों को जोड़ों का दर्द होता है। उसका कारण उनका खान पान, उनका रहन सहन, जैसे कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी। इसके अलावा कुछ लोगों को जेनेटिक भी होता है। और बच्चों की बात करें तो बच्चे जो हैं आजकल खेलना कूदना मन कर दिए हैं, जो उनका कंपटीशन की तैयारी, उनकी सिटिंग इतनी ज्यादा होती है कि फिजिकल उनका कोई भी कार्य नहीं हो पाता। इसके कारण क्या है, आजकल बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबको जोड़ों का दर्द होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, यदि सभी लोग योग से जुड़ जाएंगे तो इसमें काफी उनको निजात मिल सकता है। पहले पैर से लेकर के सर तक की जितनी भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, अंग प्रत्यंग अंग को सूक्ष्म क्रियाओं के द्वारा पहले उनको लचीला बनाते हैं, आसन करने के योग बनाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ठंड के महीने में तो बिल्कुल अकड़ जाते हैं, उनके हाथ पर काम नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए पहले हल्का फुल्का मालिश करना चाहिए। यदि ठंडी का महीना है तो जैसे सरसों का तेल हुआ, तिल का तेल, इनसे थोड़ा मालिश करने में उनमें थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है। इसके बाद उनको सूक्ष्म व्यायाम की क्रिया करवाना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाओं में सबसे पहले पैरों की अंगुलियों से अंगुलियों को 10 बार वो ऊपर नीचे अंगुलियों को चलाएं, और यदि वो स्वयं नहीं करवा सकते हैं तो किसी का सहयोग लेकर के दोनों पैरों की अंगुलियों को ऊपर नीचे चलाएं। इसके बाद पंजे चलाएं, पंजे के बाद आपके टखने चलाएं, फिर दोनों हाथों से अपने पैरों की एड़ियों को पकड़ करके और उसके पंजे को पकड़ करके उसको क्लाक एंटी क्लाक धीरे धीरे घुमाएं जितना सहन कर सकते हैं। यदि तेज दर्द हो तो उसको बिल्कुल हल्के हल्के ढंग से करना चाहिए। फिर धीरे धीरे इसी प्रकार पिंडली, घुटना और घुटने से लेकर थाई तक का भाग, फिर पूरे पैर को श्वास के बल खींचना, श्वास के बल छोड़ना। इस प्रकार सभी अंगों के लिए सूक्ष्म क्रियाएं बहुत ही लाभप्रद है। हाथों की अंगुलियों को धीरे धीरे श्वास के बल चलाएं, श्वास के बल खींचे छोड़े, और धीरे धीरे अंगुलियों को, जोड़ों को, उनको खींचें, कलाई को भी क्लाक एंटी क्लाक घुमाएं। इसके बाद कोहनी, कोहनी से कंधे, एक एक अंग को और एक एक भाग से ऊपर धीरे धीरे श्वास के बल, पहले 5-5 बार करें, फिर 10-10 बार करें, और इस तरह इसका यदि नियमित अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे उनको जोड़ों के दर्द में राहत मिलेगी। और ठीक इसी प्रकार कंधे को भी ऊपर नीचे घुमाएंगे, दोनों हाथों को कंधे पर ले जा करके क्लाक एंटी क्लाक घुमाएंगे तो कंधों के दर्द से निजात पाएंगे। जिनके गर्दन में जकड़न होती है, गर्दन में दर्द होता है, उनको धीरे धीरे गर्दन को ऊपर नीचे, दाएं बाएं गोल घुमाएं, ये अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार और अपने सहन शक्ति के अनुसार। इस प्रकार धीरे धीरे सर से लेकर पैर तक सूक्ष्म क्रियाओं के माध्यम से शरीर के प्रत्येक जोड़ों को दर्द से निजात दिला सकते हैं।
0: इसके बाद में हमें आसन भी करना चाहिए।
1: हाँ, यदि पहले ही हम आसन करवा देंगे तो हो सकता है नस नाड़ी चढ़ जाए, हो सकता है उसको दर्द हो, उसका साइड इफेक्ट हो, तो दूसरे दिन से वो करेगा ही नहीं। इसलिए पहले सूक्ष्म क्रियाएं करवाने के बाद जब बॉडी लचीली हो जाती है, उसको दर्द से आराम मिल जाता है, तो धीरे धीरे हम आसन भी करवाते हैं। जैसे आप सेतु बंधासन, इसके बाद पवन मुक्तासन करवाएंगे, खड़े होकर करने वाले आसन में ताड़ासन, धीरे धीरे कटी चक्रासन करवाएंगे। इस तरह से बहुत सारे आसन हैं।

पेट के बल जैसे लेट गए तो पेट के बल में मकर आसन में भी बहुत राहत मिलती है। मकर आसन के बाद धीरे धीरे भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन के बाद जो लोग कर सकते हैं तो धीरे धीरे धनुरासन करेंगे, इससे उनको राहत मिलेगी। पेट के बल लेटकर धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, उत्तान पादासन हुआ, नौकासन हुआ, जिससे नाभि उनकी ठीक होगी। आपके पेट की समस्त नस नाड़ियाँ वे लचीली होंगी। और आसन के बाद यदि कर सकते हैं तो कपालभाति करना चाहिए। कपालभाति भी कम से कम 20 स्ट्रोक 30 स्ट्रोक करेंगे, उससे हमारे शरीर के अंदर के सारे विषैले तत्व तो निकल जाएंगे। जब विषैले तत्व तो निकल जाएंगे तो जोड़ों में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके बाद हमें

0: समस्त नस नाड़ियां वे लचीली होंगी और आसन के बाद यदि कर सकते हैं तो कपाल भाती करना चाहिए। कपाल भाती भी कम से कम 20 स्ट्रोक 30 स्ट्रोक करेंगे, उससे हमारे शरीर के अंदर के सारे विषैले तत्व तो निकल जाएंगे। जब विषैले तत्व तो निकल जाएंगे तो जोड़ों में काफ़ी राहत मिलेगी। इसके बाद हमें करना चाहिए अनुलोम विलोम, उससे अधिक से अधिक ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे अंदर जाएगा, हमारे जोड़ों के लिए राहत होगी। अनुलोम विलोम के अलावा भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। डायरेक्ट कभी आसन नहीं करना चाहिए, पहले पूर्व अभ्यास करके अपने शरीर को आसन के लिए तैयार करना चाहिए।
1: आज आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया इस विषय पर कि योग के जरिए हम अपने जोड़ों को किस तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। इतना समय देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जूही। और मैं सोचती हूँ ऐसा कि यदि सभी लोग नियमित रूप से योग का अभ्यास करेंगे, योग से जुड़ेंगे, तो 99% स्वस्थ रहेंगे। केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरह से एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा। और वैसे भी आजकल घर घर योग, सभी रहे निरोग, तो यदि घर घर योग पहुंच जाएगा और सभी निरोग रहेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। इसलिए सभी को नियमित अपने दिनचर्या में योग को शामिल करना चाहिए।
1: श्रोताओं, अभी हमारे साथ में थी योग प्रशिक्षक डॉक्टर गीता सिंह। उन्होंने बताया कि योग से आप जोड़ों के स्वास्थ्य किस तरह से बनाए रख सकते हैं। हमें आशा है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे और स्वस्थ जीवन व्यतीत

श्रोताओं, फिल्म संगीत पर आधारित एक और कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकते हैं नेहा के साथ सुबह 8:30 पर। और जवान फिल्म के इसी गीत के साथ आज का नमस्कार भोपाल समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए जूही राव को, नमस्कार।

0: 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी 0 कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और

अभी नमस्कार भोपाल कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
1: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
2: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गांवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया जी, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
4: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
5: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
6: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज़ ऑन AIR ऐप और न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
7: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल

0: ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और कैबो वर्दे तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
1: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र सिक्किम असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार छत्तीसगढ़ कोंकण गोवा तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु पुदुचेरी केरलम माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, एआई को जिम्मेदारी के साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी, इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद, सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकेंड में 2 बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ $12 अरब का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. प्राइम मिनिस्टर

खुद ही बनाते हैं हम पेचीदा जिंदगी को, वरना तो जीने के नुस्खे बहुत आसान हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग श्रोताओ, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरमई सवेरा में। और आज के सफर में मैं हूं आपके साथ नेहा सूनी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज कार्यक्रम में ढेर सारी हम बातें करेंगे और साथ ही सुनवाएंगे आपको प्यारे प्यारे गीत। चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस खूबसूरत से नगमे के साथ।

श्रोताओं, कहते हैं कि शब्द इसलिए भी ठहर कर कहना चाहिए ताकि भविष्य में उसी शब्दों के लिए पछतावा महसूस ना हो। हम बोल तो देते हैं पर समझ नहीं पाते कि शब्द हवा में नहीं खुदे, वे मन में उतरते हैं और मन याद रखता है बहुत देर तक, कभी कभी उम्र भर भी। इसलिए कहा जाता है कि शब्दों को ठहर कर कहना चाहिए, क्योंकि वक्त का स्वभाव बड़ा अजीब है। वह वही बातें, वही आवाजें, वही तीर जैसे शब्द किसी अनजानी सुबह फिर से हमारे सामने खड़े कर देता था, और तब एहसास होता है कि बोलना आसान था पर उन शब्दों के लौट कर आने का भार सहन करना सबसे कठिन। पछतावा भी एक तरह की चुप्पी है जिसमें व्यक्ति अपने ही बोल शब्दों से दूर भी नहीं भाग सकता और पास भी नहीं बैठ सकता। इसलिए शब्दों का चयन केवल भाषा नहीं, एक जिम्मेदारी भी है, क्योंकि शब्द कभी नहीं मरते, वे स्मृतियों में बदलकर हमसे जवाब मांगते रहते हैं।

0: चाहिए, वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, कहा जाता है कि हर किसी का आपको समझ लेना जरूरी नहीं है। अच्छी किताबें और अच्छे इंसान अक्सर वही समझ पाते हैं जिनके पास सोचने की गहराई और समझने का हुनर होता है। अगर कोई आपको नहीं समझता तो उसे लेकर परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। इस दुनिया में हर व्यक्ति की सोच, समझ और नज़रिए की अपनी एक सीमा होती है। जैसे हर किसी को अच्छी किताबों का महत्व समझ नहीं आता, वैसे ही हर कोई अच्छे इंसान की गहराई को भी नहीं समझ पाता है। कुछ लोग केवल शब्द सुनते हैं, जबकि कुछ लोग भावनाओं और विचारों को भी समझने की क्षमता रखते हैं। इसलिए अगर कोई आपकी अच्छाई, आपकी सोच और आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हैं। हो सकता है कि उसकी समझ अभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाई हो। जीवन में सबसे ज़रूरी बात ये नहीं है कि हर कोई हमें समझे, बल्कि ये है कि हम खुद को समझें और अपनी सच्चाई पर विश्वास बनाए रखें। अच्छे लोग और अच्छी किताबें अक्सर समय के साथ समझ में आती है और उन्हें वही लोग पहचान पाते हैं जिनके पास गहराई से सोचने और महसूस करने की क्षमता होती है।

0: से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: श्रोताओं कहते हैं कि दुख भी एक तरह का सुख है। जीवन की गहराइयों में उतरकर देखा जाए तो दुख केवल पीड़ा नहीं है, वो आत्मा का एक मौन शिक्षक भी है। जो व्यक्ति केवल सुख को ही जीवन का सत्य मानता है, वो अस्तित्व की आधे पक्ष से ही परिचित रहता है, क्योंकि कई बार दुख ही वो द्वार बन जाता है जहां से मनुष्य स्वयं को पहचानना प्रारंभ करता है। सुख में मन बाहर की ओर दौड़ता है, पर दुख भीतर की यात्रा करवाता है। सुख हमें संसार से जोड़ता है, जबकि दुख हमें अपने वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। यही कारण है कि अनेक संतों, ऋषियों और साधकों ने दुख को शत्रु नहीं बल्कि आत्म जागरण का साधन भी माना है। जब जीवन सब कुछ छीन लेता है, तब व्यक्ति समझता है कि वास्तव में उसका अपना क्या है। जब अपेक्षाएं टूटती है, तब वैराग्य जन्म लेता है। जब हृदय आहत होता है, तब ईश्वर की खोज भी प्रारंभ होती है, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए हर दुख अपने भीतर किसी गहन कल्याण का बीज लेकर आता है।

श्रोताओ, कभी कभी जब मन दुख डर और निराशा से भर जाता है तब इंसान रो नहीं पाता। उसके भीतर जमा भावनाएं किसी और रूप में बाहर आने लगती है। वह चिड़चिड़ा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाता है या अनचाही बातें कह देता है। इसलिए कभी कभी कठोर व्यवहार के पीछे बुराई नहीं होती बल्कि एक टूटा हुआ, थका हुआ और दर्द से भरा इंसान छिपा होता है जिसे सिर्फ समझने की जरूरत होती है।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग और अवैध तस्करी विरोधी दिवस पर कल केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नारकोटिक्स कंट्रोल की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित लोकतंत्र सेनानियों के प्रादेशिक सम्मेलन में कई घोषणाएं की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों को सरकार स्पेशल ट्रेन से तीर्थ दर्शन कराएगी। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेन पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के रुठियाई, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से के 15 जिलों में एंट्री करने के बाद मानसून ठहर गया है। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 2-3 दिन में मध्य प्रदेश के कुछ और हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां बन रही हैं। और फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नार्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। आइए पुनः रुक करते हैं कार्यक्रम सुरमई सवेरा की ओर। श्रोताओं, मनुष्य का जीवन उम्मीद से चलता है। कई बार रास्ते लंबे हो जाते हैं, मंजिल देर से मिलती है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि मंजिल गलत है। धैर्य हमें सिखाता है कि हर सही चीज़ तुरंत नहीं मिलती, और जो मिलने में समय लेती है वही सबसे अधिक स्थायी और सार्थक होती है। इसलिए हमें ये विश्वास बनाए रखना चाहिए कि देर भले ही हो पर अंत अच्छा ही होगा। अक्सर हम जो चाहते हैं वह तुरंत पूरा नहीं होने पर मन में शंका घर लेती है, पर सच ये है कि इच्छाएं भी समय की कसौटी पर परखी जाती है। जब मन, कर्म और समय एक साथ आते हैं तब वही होता है जो हमारे लिए सच में उचित होता है। कभी कभी जो हम चाहते हैं वो थोड़ा बदल कर, थोड़ा सवर कर हमारे सामने आता है, और तब हमें समझ आता है कि यही सबसे सही था।

0: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: सुरमई सवेरा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, हम तो आपसे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि खुद के लिए हमेशा सही रहो, खुद के लिए हमेशा सही रहो। दुनिया का तो नज़रिया ही अलग है, तो दुनिया का जो नज़रिया है वो अलग हो सकता है आपको देखने का, आपको समझने का, लेकिन अगर हमारा नज़रिया सही है, हम अगर सही हैं, तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, या यूँ कहें जिसकी तमन्ना, जिसकी ख्वाहिश हम रखते हैं।

श्रोताओं, चलते चलते हम आपसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर ही है। फिलहाल श्रोताओं, आज के सुरमे सवेरा कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरमई सवेरा, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं अर्चना सिंह के गाए बघेली गीत।

0: लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह के गाए बघेली गीत। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आज सुनिए चित्रकार एवं बाल साहित्यकार श्रीमती अनीता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम इनसे मिलिए में आपका स्वागत है। कार्यक्रम आपसे ये कहता है कि हम आपकी मुलाकात किसी एक शख्सियत से कराते हैं और देते हैं उनका एक परिचय। पर यहाँ मेरे लिए एक बहुत छोटा सा संकट ये मौजूद हो रहा है कि हमारे साथ जो शख्सियत स्टूडियोज में मौजूद हैं, उन्हें मैं चित्रकार कहूँ, रचनाकार कहूँ, समाज सेवी कहूँ, शिक्षाविद कहूँ या मित्र कहूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज में है अनीता सक्सेना, आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: अनीता जी, बहुत सारे आयाम हैं आपके जीवन के और जीवन का एक लंबा

0: अनुभव आपके साथ मौजूद है जिसे लेकर आप लगातार चल रही हैं। पारखी दृष्टि आपकी न केवल चित्रों पर है बल्कि प्रकृति पर कुछ इस ढंग से है कि जब उन फोटोग्राफ्स को देखा जाए जो आपकी कैमरे की आँख से होकर गुजरते हैं तो वो कुछ एक अलग ही दृश्य खींच देते हैं। मोटे तौर पर यदि पूछा जाए या जानना चाहूँ तो इन सारी चीज़ों की प्रेरणा कहीं से आपको मिली या ये स्वतः कदम दर कदम होता चलता चला गया सिलसिला?
1: दरअसल क्या होता है ना कि आपका बचपन जहाँ बीता होता है वो बहुत सारी बातें आपके मन में बैठी हुई होती हैं। मेरा बचपन गांव में बीता, हालांकि गांव में पूरा नहीं बीता, छुट्टियाँ वहाँ होती थी तो गांव का जो माहौल मिला
0: जी
1: वो बाग बगीचे नदी कुआं खेत, तो वो मन में ऐसे बैठ गए कि वो आज तक भी वहाँ से वो दृष्टि हटती नहीं है। वही मेरी कविताओं में आए और वही मेरी चित्रों में आए, मेरे मन के अंदर बैठे हुए हैं वो सब।
0: मुझे लगता है कि गांव में रहने वाला या बचपन की चीज़ों को जीने वाला हर एक इंसान होता है क्योंकि सबका जीवन बचपन से होकर ही गुजरता
1: है। सही बात है।
0: लेकिन सब उसे अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, कहीं कोई बात, कोई शौक, कोई चाहत, कोई इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं ज़रूर आपके भीतर होगा जिसने आपको प्रकृति को महसूस करने के लिए मजबूर किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात या कोई घटना या कोई चीज़ रही होगी?
1: शुरू की तो नहीं कह सकती, शुरू तो जो बचपन जैसा मैंने बताया वहाँ बीता, लेकिन हाँ जब थोड़ा सा मैं शायद 7th-8th में रही होंगी तो मेरे पड़ोस में रहने आए थे प्रोफेसर चंद्रेश सक्सेना
0: जी।
1: वो ग्वालियर आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वो जो चित्र बनाते थे तो मुझे ये लगता था कि मेरे बनाए हुए चित्र भी ऐसे होने चाहिए। उनसे मैंने काफ़ी कुछ देखा, सीखा तो नहीं देखा, और वहाँ से शायद मेरे मन में ये आया कि ये विषय, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एक विषय होता है। मैं तो सोचती थी चित्र बनाए जाते, उन्होंने ही बताया कि ये एक विषय है और तुम चाहो तो क्लास 9 से इसको ले सकती हो। तो शायद वो प्रेरणा मेरी रही हो
0: जी
1: जिसने मेरे को चित्रकला की तरफ प्रेरित किया।
0: बिल्कुल।
1: और एक और घटना थी इसी के साथ, जब मैंने एडमिशन ले लिया था चित्रकला में तो मेरे मामा जी की लड़की थी डॉक्टर प्रभा पवार जी, वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की चित्रकला विभाग की डीन थी और उनके हस्बैंड मतलब अवतार सिंह पवार जी जीजा जी वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट के डीन थे, तो वो भी आती थी छुट्टियों में, तो वो बाटिक बहुत अच्छा बनाती थी।
0: अच्छा।
1: तो उनको भी जब मैंने देखा तो उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि उनसे भी मैंने सीखा कि कला जो है वो कितनी, देखिए खूबसूरती क्या होती है कि इंसान को अट्रैक्ट करती है चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे आप उसको चित्र में देख रहे हो चाहे आप साक्षात प्रकृति में देख रहे हो। तो शायद वो सब भावनाएं मेरे अंदर जो भरी कि मुझे भी इनको बनाना चाहिए, मुझे भी इनको सीखना चाहिए, तो वहाँ से हो सकता है ये शुरुआत हुई हो।
0: यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आपकी 9वीं कक्षा की बात यदि की जाए तो ये शायद 40 साल पुरानी बात होगी या और भी थोड़ी सी ज़्यादा,
1: और भी ज़्यादा।
0: उस समय में, उस दौर में लड़कियों का पढ़ना ठीक है, बहुत घरों में पढ़ा जाता था और बच्चे पढ़ भी रहे थे, लेकिन कुछ खास विषय के लिए सोच नहीं पाते थे।
1: सच बात
0: तो चित्रकला का विषय चुनना और उसमें आगे की भी पढ़ाई करने को लेकर किसी तरह की कोई कठिनाई या कोई बाधा आई या आपको बहुत सहर्ष इसके लिए
1: नहीं,
0: आज्ञा भी
1: मुझे
0: मिली?
1: लगता है ये सब ना मतलब एक जो तीसरी शक्ति होती है, या मैं ये मान के चलती हूँ कि ईश्वरीय जो वो रहता है, कि घर में कहीं ऐसा वातावरण भी नहीं था। मुझे लेखन का एक शौक जरूर हो गया था, 7th-8th में मेरी एक कविता प्रकाशित हो गई थी।
0: अच्छा।
1: बाल भारती करके पत्रिका आती थी, तो लोगों को ये लगने लगा था कि मेरी रुचि इसमें है। और जब 9th में चंद्रेश चाचा जी से बात हुई तो मेरे बड़े भैया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे थे और दीदी मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही थी, तो मेरे बड़े भैया ने ही जाके मेरा एडमिशन कराया था, मैं गई भी नहीं थी, गजरा राजा स्कूल ग्वालियर का, वहाँ जाके उन्होंने कराया और बोले तुम्हारा हो गया एडमिशन। घर में किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुम ये क्यों ले रही हो, इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है, भविष्य है कि नहीं है, पर चूंकि मेरा शौक था, मुझे अच्छा लगता था, सबने प्रेरित किया, ना पिताजी ने कभी ये कहा कि तुम ये विषय क्यों ले रही हो, सब खुश थे
0: जी
1: इस चीज को लेकर।
0: तो ये तो स्कूल के समय की बात हो गई, फिर जब आगे की पढ़ाई की बात आती है तो उस समय उसी विषय पर टिके रहना, उसको और आगे बढ़ाना या उसमें स्पेशलाइजेशन करना, ये आपकी स्वतः

0: स्फूर्त भावना थी या किस तरह से आप उस कदमों को लेके बढ़ें?
1: समय के साथ अपने आप धीरे धीरे धीरे, जब नाइन्थ में आई, नाइन्थ से टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ आते आते काफ़ी कुछ समझ चुके थे उसको। हालांकि जो उम्र होती है वो उम्र ऐसी नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा जाने, लेकिन एक मन का जो होता है ना, हर बच्चा सोचता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। तो ट्वेल्थ तक आते आते ये लगने लगा था कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा विषय है, मतलब बहुत ऐसा विषय है कि लोग आपको मुड़ कर देखते हैं कि अरे वाह, ये चित्र तुमने बनाया, इतना सुंदर बनाया। तो जब ट्वेल्थ मैंने पास किया तो ग्वालियर में दो कॉलेज थे, आर्ट्स कॉलेज था और एक केआरजी कॉलेज। केआरजी कॉलेज में डिग्री थी और आर्ट्स कॉलेज में डिप्लोमा था। तो मेरे ही जो गुरु थे उन्होंने बोला तुम आर्ट्स कॉलेज भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस समय ये बंदिश नहीं थी। तो सुबह 7 बजे से आर्ट्स कॉलेज जाती थी मैं, वहाँ से 11-12 बजे जैसी फ्री होती थी तो डायरेक्ट के अर्जी चली जाती थी। और मैं ही नहीं, मेरी और भी 2-3 सहेलियाँ थी, हम लोग मिलकर। तो वो दोनों जगह से जो हम कर रहे थे तो एक अलग भावना मन के अंदर पैदा हो रही थी कि हम एक बड़े आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं। हालांकि ये आज तक भी मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनी, लेकिन हाँ, वो जो एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि आर्ट्स कॉलेज में भी हमने पढ़ा और बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, हमारे टीचर्स ने कभी हमको ऐसा नहीं कहा। क्योंकि उस समय जब पढ़ते पढ़ते कालिदास अकादमी जो उज्जैन की है, वहाँ हम लोग पेंटिंग्स भेजने लगे थे। अच्छा। हमारी पेंटिंग सिलेक्ट होने लगी थी
0: जी।
1: तो सर भी हमें प्रोत्साहन देते थे। और केआरजी में तो चूंकि केवल चित्रकला नहीं था, और भी विषय थे, तो उनको भी पढ़ रही थी। वहाँ भी चूंकि टॉपर्स में थी तो वहाँ भी किसी टीचर को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि तुम दो कॉलेज में क्यों पढ़ रही। तो इस तरह से वो चलता रहा, वो सहज भाव से चला
0: जी।
1: उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई।
0: और चित्रकार ही क्यों, किसी भी कलाकार के लिए मुझे लगता है कि आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास दो बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, जो उसके लिए किसी वैलिडेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और यदि ये हम ईमानदारी से अपने भीतर महसूस करते हैं तो आगे बढ़ने की प्रेरणा या जरिए या माध्यम हमें यूं भी मिलते चले जाते हैं। उस दौर में जब आप ये सब काम कर रही थी, सीख रही थी, पढ़ रही थी, पेंटिंग्स अपनी बना रही थी, तो वो कौन सा वर्ष था और उस समय आपने अपने उस क्षेत्र की क्या किसी खास चीज़ों को भी उकेरा अपने चित्रों में?
1: जी हाँ, ये 71 में मैं आई थी इस कॉलेज में, शायद आर्ट्स कॉलेज में पहला टर्निंग पॉइंट था मेरा
0: जी।
1: क्योंकि घर में माँ बनाती थी दीवारों पर चित्र पूजा से संबंधित, नौमी बनती थी हमारे, नागपंचमी पे बनता था, दिवाली पर ज्योति बनती थी। तो वो जो चित्र बनाती थी तो वो मुझे बड़े प्रभावित करते थे कि वो सिर्फ ऐसी आड़ी टेढ़ी रेखाएं और उसमें आदमी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन हम उसमें पहचान रहे हैं कि हाँ, ये लक्ष्मी जी हैं, तो ये कृष्ण जी हैं, तो ये राम हैं। तो इस तरह के वो चित्र बनाती थी तो वो चित्र मुझे बहुत प्रभावित करते थे। तो मैंने आर्ट्स कॉलेज में, हमारा एक विषय हुआ करता था कॉम्पोजिशन, उसमें मैंने एक विषय में उन चित्रों को लेके एक पेंटिंग बनाई
0: जी।
1: तो वहाँ हमारे एक सर थे दुर्गा प्रसाद शर्मा जी, जो हमें ये कॉम्पोजिशन और सिखाते थे
0: जी।
1: उन्होंने जब उसको देखा तो बोले तुमने ये कहाँ से सीखा? तो मैंने कहा माँ बनाती हैं घर में। तो बोले तुम इसको और आगे बढ़ाओ
0: जी।
1: और उन्होंने मुझे कई जगह उसमें नई चीज़ें ऐड करवाई और उस तरह से मैंने वो पेंटिंग बना। बाद में पता चला कि ये लोक कला है, लोक कला है, और इस कला को मैंने अब वर्तमान में मैं उसी पर काम कर रही हूँ। और वो जो वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, तो वो जो पेंटिंग्स बनाई उन्हीं को मैंने बनाकर बड़े चित्र फिर कालिदास अकादमी में भेजे। अच्छा। और वहाँ से वो पुरस्कृत हुए।
0: तो आपके फाइन आर्ट में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी या ग्रेजुएशन जब कर रही थी, तो इसमें बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम होता है
1: जी।
0: लेकिन उसमें कौन सा विषय या कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसकी तरफ आपका सबसे ज़्यादा रुझान था या जो आपको सबसे ज़्यादा आकर्षित करती थी?
1: विषय तो सच में कई होते हैं, लैंडस्केप भी है, पोर्ट्रेट भी है, लाइफ भी होती है, फुल लाइफ भी, पर मेरे को ये कॉम्पोजिशन ही ज़्यादा पसंद था, जो एक विषय के ऊपर एक चित्र बनाना। तो उस विषय को जब अपन, विषय तो एक छोटा सा बोलते हैं कि यह विषय है, लेकिन जब उस विषय को अपन चित्र में बनाने बैठते हैं, विस्तार देते हैं, तो उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गांव का चित्र है, लेकिन गांव में कितनी चीज़ें हैं, झोपड़ी भी है, मकान भी है, नदी भी है, पेड़ भी है, जानवर भी, पानी है, सब कुछ है। तो उसी तरह से कोई कॉम्पोजिशन में जब एक विषय पर हम चित्र बनाते हैं तो वो चित्र बहुत विस्तार लिए होता है, तो मुझे उनको बनाना बहुत अच्छा लगता था।
0: शायद यही वजह रही कि आपकी एक मांडना पर बहुत चर्चित पुस्तक भी आई।

0: है
1: जी
0: ये किस चीज से संबद्ध है और क्या है, हम जानना चाहेंगे
1: जैसे,
0: आपसे।
1: हाँ जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बीज अंकुरित हो गया था मेरा कॉलेज लाइफ में, जो शर्मा सर ने मेरे को कर दिया था, और उसी पर फिर मैं चित्र बनाती गई।
0: जी
1: वो समय के साथ साथ वो चित्र रूप बदलते गए, मतलब जैसे उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया था कि हमेशा आगे बढ़ना, पीछे मत हटना। लेकिन उसमें सबसे बड़ी शर्त थी कि लोक कला को आप विकृत नहीं करेंगे, मतलब उसका मूल रूप रहने देना है। तो उस मूल रूप के साथ मुझे चित्र बनाने थे,
0: जी
1: तो वो मूल रूप के साथ जब चित्र बनाती थी तो समय बहुत लगता था मुझे, लेकिन मैंने इन पे चित्र बनाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि बहुत साल मेरे बीच के ऐसे भी थे, शादी हुई और हम लोग चूंकि कोल इंडिया लिमिटेड में थे मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों को बहुत दूरस्थ जगहों में रहना पड़ता था जहाँ दुकानें भी नहीं होती थी, सामान नहीं मिलता था।
0: जी
1: लेकिन फिर भी जैसा भी मौका मिलता था तो मैं लाके चित्र बनाती थी। और दूसरा, कालिदास अकादमी में भेजना भी नहीं छोड़ा, जैसा भी मेरे से बनता था मैं करती
0: जी
1: थी, और मैं लगातार वहाँ कई सालों तक भेजी, हालांकि बाद में बंद हुआ वो। तो वो जो चित्र मैं बनाती रही,
0: जी
1: वो चित्र दूसरे रूप में तब विकसित हुए जब मैं शादी के बाद राजगढ़ पहुंची। राजगढ़ मेरी ससुराल है, और वहाँ मैंने देखा कि मेरी सासू माँ, मेरी माता जी, जमीन पर बहुत सुंदर मांडने बनाती थी, मतलब विस्तार लिए हुए बड़े बड़े मांडने। तो मैं तो चकित रह गई क्योंकि ये मैंने कभी देखा ही नहीं था। दीवार पर चित्र वहाँ भी बनते थे,
0: जी
1: माँ भी बनाती थी, लेकिन राजगढ़ में बनाए जाने वाले मांडने और वो चित्र, ये कला कहलाती है मालवी लोक कला। ग्वालियर में वो मालवी लोक कला नहीं है।
0: जी
1: तो ये जो माता जी के जब बनाए हुए मैंने मांडने देखे और दीवार पर बनाए हुए चित्र देखे, तब फिर मेरी दिशा फिर बदली।
0: अच्छा
1: मैं जो वो चित्र बना रही थी, उन चित्रों में अब मैंने मांडनों को जोड़ दिया। और ये मांडना जो होता है कि जमीन पर गोबर से लीप कर और उसके ऊपर छुई मिट्टी से, और वो भी हाथ से बनाया जाता है, हाथ में रुई,
0: जी
1: या पहले तो बोलते हैं कि बालों का गुच्छा लेके महिलाएं उससे बनाती थी, पर रुई से या कपड़ा लेके उससे बनाती थी। तो धीरे धीरे धीरे समय जैसे जैसा बदलता गया, मैंने ये भी देखा कि एक तो माता जी और माता जी की उम्र की लोग उम्र दराज जब होते गए तो उनसे वो बनना बंद हुए। दूसरी, जो नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी वो मेहनत नहीं करना चाहती थी,
0: जी
1: और विकास के नाम पर जमीन जो है वो पक्की
0: पक्की
1: होती
0: होती
1: चली,
0: गई।
1: वो कच्ची मिट्टी खत्म होती गई, वहाँ पर सीमेंट के और मार्बल या ये टाइल्स लगने लगे। दीवारों पर जो चित्र बनते थे वो चित्र भी कम हुए, और कम होने के बाद बाद में तो मैंने देखा कि यंग जनरेशन बोलती है, जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे, कि आप तो हमें कागज़ पर बना के दे दो, हम दीवार पर लगा लेंगे
0: लगा
1: और
0: लें
1: पूजा कर लेंगे,
0: जी।
1: क्योंकि वो दीवार नहीं खराब करना चाहते। और ये सबसे बड़ा दुख का कारण था कि जो हमारी लोक विरासत है, जो हमारी लोक कला है, वो ख़त्म हो रही थी। तब यहाँ से मैंने दूसरा काम शुरू किया।
0: जी
1: मैंने कोशिश की कि जो मांडना और जो दीवार पर बनाए हुए चित्र हैं जो ख़त्म हो रहे हैं, उनको एकत्रित किया जाए, संग्रहित किया जाए,
0: जी
1: क्योंकि वो हमारी एक धरोहर है। लोक कला वहाँ से है जहाँ इंसान बोलना भी नहीं जानता
0: जी
1: था,
0: जी
1: तब वो चित्रों के माध्यम से अपने भावनाओं को बताता था। तो वही चित्र धीरे धीरे धर्म के साथ जुड़ते गए, पूजा पाठ से जुड़ते गए, और वो हर विषय को लेकर एक चित्र दीवार पर बनाया जाता था। तो उस तरह के वो चित्र मैंने एकत्रित किए, हालांकि
0: जी
1: बहुत आसान नहीं था
0: निश्चित रूप से।
1: जी, लेकिन धीरे धीरे ये काम किया।
0: और उसे फिर पुस्तक का रूप दे दिया।
1: हाँ, पुस्तक का रूप देने में बहुत समय लगा, 25
0: जी
1: साल तो मेरे को लगे चित्र एकत्रित करने में,
0: अच्छा।
1: क्योंकि राजगढ़ में जो चित्र बनते थे, वहाँ से आगे बढ़ो तो नरसिंहगढ़ में उनका रूप बदल जाता था, और आगे बढ़ो तो काकरवाल, पचोर, जितनी जगमंडावर, जहाँ मैं जाती थी वहाँ थोड़ा बहुत चेंज हो जाता था। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं हर जगह जाऊँ, पहले हर जगह जाऊँ। अच्छा, जब अपन किसी चीज़ के पीछे गहन अध्ययन करते हैं, तो मुझे ये भी लगा कि ये चित्र केवल चित्र नहीं है, ये तो पूरी एक कहानी है। मतलब हर चित्र के पीछे किसी ना किसी त्योहार का वो जुड़ा हुआ था। जैसे राखी पर जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा,
0: जी
1: संक्रांत पे जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा, क्योंकि संक्रांत में सबको तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दी जाती है ना। होली पर जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा, उनके पर्टिकुलर नाम थे उस तरह से बनते थे।
0: जी
1: दीवार पर जो चित्र बनेंगे वो भी हर त्योहार के अलग चित्र बनते थे। तो फिर मुझे चैत्र से लेके वैशाख तक के, फिर मैंने वहाँ से शुरू किया कि चैत्र में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उन त्योहार में कौन सा मांडना बनता है, जमीन पर क्या बनता है और दीवार पर क्या बनता है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो इस तरह पूरे 12 महीने के जब मैंने एकत्रित किए तो मेरे पास अच्छा खासा एक संग्रह हो गया। फिर मुझे लगा कि अब इसका मैं क्या करूँ,

0: तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई महेश श्रीवास्तव जी से, जो यहाँ के विख्यात पत्रकार हैं, हमारे आदरणीय हैं। तो उनको मैंने अपनी फाइल दिखाई, तो बोले अरे तुमने इतना काम किया है मालवा पे, तुम इसकी किताब छपवाओ। तो मैंने कहा किताब इतनी बड़ी मेरे बस की बात नहीं है।
1: जी
0: तो बोले तुम मानव संग्रहालय जाओ,
1: अच्छा
0: इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जाओ। और उन्होंने मुझे वहाँ पर अरुण श्रीवास्तव जी थे, उनसे मिलने को कहा।
1: जी
0: मैं मानव संग्रहालय गई, अरुण जी से मिली। तो किस्मत कहते हैं इसको सारी, कि एक भगवान जो रास्ता दिखाता है। तो महेश जी ने जब बोला और मैं वहाँ पहुँची, तो अरुण जी फाइल देख के वो भी चकित रह गए, बोले चलिए डायरेक्टर साहब से मिलाते हैं आपको। सरित चौधरी जी डायरेक्टर थे, वो उसी समय मेरे को वहाँ ले गए।
1: जी
0: सरित जी ने फाइल देखी तो वो भी बोले कि ये तो आपने बहुत अद्भुत काम किया हुआ है। तो बोले आप एक काम करिए, कल हमारी मीटिंग है
1: अच्छा
0: जिसमें हम लोग जो प्रकाशन होता है उस पर निर्णय लेते हैं, आप मुझे इसका एक पांडुलिपि बना के दीजिए।
1: अच्छा
0: तो वो पूरा दिन मैंने उनकी फोटोकॉपी करवा के वो पांडुलिपि बनाई, दूसरे दिन जाके उनको दी। और तीसरे या चौथे दिन मेरे को फोन आ गया कि इसको तो हम छापेंगे
1: अरे
0: और
1: वाह।
0: ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से प्रकाशित होगी, आप इसमें जो भी काम कर सकते हैं पूरा करिए, हमारी टीम आपके साथ रहेगी।
1: जी
0: और मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल हुई।
1: बिल्कुल, ये सिर्फ मेहनत के सार्थक होने का ही समय नहीं था, बल्कि बहुत गौरव की भी बात थी
0: जी
1: कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय उस मेहनत को, उस प्रयास को एक बहुत
0: जी
1: बड़ा सम्मान दे रहा था। जब किताब की बात आई है तो हम आपसे ये भी जानना ज़रूर चाहेंगे कि एक बहुत विस्तृत विषय में डूब कर जब अपन काम करते हैं तो दूसरे विषय की तरफ या दूसरी दिशा की तरफ, दूसरे आयाम की तरफ देख पाना बहुत आसान तो नहीं होता।
0: जी
1: फिर लेखन की तरफ कैसे आप लगातार काम करती रहें लेखन को लेकर भी?
0: ये बात सही है कि हम एक साथ दो नाव में सवारी नहीं कर सकते।
1: जी
0: जिस समय मांडना की बुक बन रही थी, किताब का पूरा काम चल रहा, तो करीबन 1 साल चला वो काम। तो लेखन एक्चुअली क्या है, लेखन कहीं भी नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। ये मन के अंदर से जब तक वो भाव आपके अंदर नहीं आएंगे, और ये भाव तब आते हैं जब आप या तो बहुत ज़्यादा अवसाद में हों, दुखी हों, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, या वो मौसम बहुत खूबसूरत हो, आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ प्रकृति अपना पूरा सौंदर्य दिखा रही है आपको, ऐसे बहुत सारी जगहें होती हैं या बहुत सारे कारण होते हैं तब आप लिखते हैं। तो ऐसा नहीं कि लेखन रुका, ऐसे अवसर बहुत आए कि जब मन दुखी हुआ या मन ने कुछ और सोचा, और ऐसा नहीं कि दुख होता है तभी हम लिखते हैं, हम खुश होते हैं तब भी लिखते हैं।
1: जी
0: तो मन को हल्का करने का एक साधन है लेखन। तो ये जो लेखन है, ये डायरी मैं बचपन से ही लिखती हूँ, तो ये सारा लेखन उसके साथ साथ चलता रहा। बस ये बात अलग है कि उस लेखन को एक दिशा देने का काम उस समय नहीं हुआ जिस समय यह किताब छप रही थी,
1: जी
0: और क्योंकि कोई भी लेखन जब तक उसको 25 बार पढ़ा ना जाए, जब तक मांझा नहीं जाए, तब तक वो एक कविता पूर्ण रूप नहीं लेती है।
1: जी
0: तो वो लिखता गया लेकिन वो सामने बाद में आया।
1: यानी बीज मन के भीतर पड़ा हुआ था, लगातार उसको अनुकूल मौसम मिल रहे
0: जी
1: थे,
0: बिल्कुल
1: वो
0: बिल्कुल
1: पुष्पित पल्लवित अपने समय से हुआ और उसकी खुशबू हम सब तक पहुंची।
0: एकदम सही
1: हम
0: बात
1: चाहेंगे
0: है।
1: कि आपकी कविताओं की कुछ खुशबू क्यों ना हमारे सुनने वालों तक भी पहुंचे। यदि कोई एक वानगी आप पेश करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: हाँ शुक्रिया। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं प्रकृति से बहुत प्रभावित रहती हूँ, मेरी रचनाएं भी प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं। सारी हवा बादल चांद सूरज सब मेरे रचनाओं में है। और एक छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ।
1: जी
0: ये कविता भी आप सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रकृति है वही इंसान है, जो भाव इंसान के होते हैं वही प्रकृति में दूसरे तरीके से आते हैं। तो ये कविता का शीर्षक है हवा और बादल।
1: जी
0: कि हवा और बादल में दोस्ती बड़ी थी, हवा और बादल में दोस्ती बड़ी थी, और हवा कब से बादल के पीछे पड़ी थी, कि संग संग हमारे हमेशा ही रहना, धरा पर कहीं भी जरा ना बरसना।
1: अच्छा
0: समंदर से उठकर आया था बादल और हवा संग नभ पर छाया था बादल।
1: वाह।
0: हवा ये समझती कि उसका है बादल, और बादल का कहना कि जग का है बादल।
1: ओहो
0: बादल ने देखी थी कमजोर काया, वो पिंजर से बेलों के नीचे की छाया, हल्को संभाले वो नजरें गड़ाए, तकता था नभ को कि बादल कब आए।
1: वाह।
0: करोड़ों की आशाएं बादल पे ठहरी, कि बरसेगी बरसेगी अब जल लहरी। करोड़ों की आशाएं बादल पे ठहरी, कि बरसेगी बरसेगी अब जल लहरी, बादल के आंसू।

0: छलकने ही वाले कि हवाओं ने तोड़े बंधन के ताले।
1: ओ
0: जाओ रे मेघा, जाओ रे मेघा, तुम जम के बरसो, न खुद को जलाओ न यूं आज तरसो। जो तुम जम के बरसे तो भीगेगा कण कण, भीगेगी धरती और भीगेगा तन मन। भीगेंगी शाखें वो पत्ते वो डाली, हरी होगी धरती और झूमेगी बाली। उतर कर पहाड़ों से नदियाँ बहेंगी,
1: वाह,
0: उतर कर पहाड़ों से नदियाँ बहेंगी। धरा भी हरी हो के सबसे कहेगी कि बरसी है जम के, कि बरसी है जम के, नहीं रुकने वाली हवा और बादल की जोड़ी निराली।
1: वाह वाह, बहुत खूब। हम उम्मीद करते हैं कि ये कविता सभी सुनने वालों को बहुत बहुत पसंद आई होगी, और हम ये चाहेंगे कि कला की, सृजन की और आपके मन की जोड़ी भी यूं ही बरकरार रहे और कुछ बेहतर सृजन हम सब तक पहुंचते रहें। जब भी कला की बात होती है, हम आसपास की या हमारे पृष्ठभूमि की बात करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि जितना हमें देती है उतना हमसे मांगती भी है
0: जी।
1: तो घर परिवार में जब तक माता पिता के घर तक एक अलग तरह का माहौल होता है, शादी के बाद अपने पति के साथ, जैसा आपने कहा कि कोयले खदानों की, कोल माइंस के उधर उनका काम था, वहाँ फिर उनका काम भी बहुत अलग तरह का था, वो एक ख्यात चिकित्सक हैं, तो इन सारे पड़ाव को आपने किस तरह पार किया या किस तरह महसूस किया?
0: मेरा मानना है कि समय के साथ आपको चलना चाहिए तो आपको तकलीफ नहीं होती।
1: जी,
0: ग्वालियर जैसे शहर से निकलकर मैं राजगढ़ जैसी जगह पर जब आई, जो एक गांव से थोड़ा ऊपर था, तो वहाँ ये नहीं लगा मुझे कि मैं ऐसी जगह पर आई हूँ एक शहर से। वहाँ भी मैंने मांडना पर काम किया, मतलब मैं उस रूप में ढल गई
1: जी।
0: और जहाँ हम जब कोयला खदानों में पहुँचे, जहाँ पर मतलब आप सोचिए कि दूर दूर तक सिर्फ खदानें होती हैं, जंगल भी कम होते हैं, नए पौधे होते हैं, और वहाँ शहर जाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा दूरी पर है, घर आने के लिए आपको कम से कम 4 ट्रेन बदलनी होती थी उस समय।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उस समय बड़ी ट्रेनें नहीं चलती थी
1: जी, जी।
0: तो वहाँ मैंने उस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया। वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने को मुझे वहाँ मिला। हम लोगों का वहाँ एक महिला मंडल हुआ करता था जो समाज सेवा के कार्य करता था, और उसके साथ मैं जुड़ गई थी यूनिसेफ से, यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड फंडरेंडिंग कैंपेन से। तो हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर टीवी पेशेंट और कुष्ठ रोगी पेशेंट्स का एकत्रित किया। चूंकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे और मेडिकल फील्ड में थे, तो उनकी सहायता से हम लोगों ने उन पेशेंट्स का इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद जरूरी ये होता है कि हम किसी को ठीक तो कर दें, लेकिन वो जीवन यापन कैसे करेगा, तो उस पे ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया। फिर उनको हमने हमारे महिला मंडल से बकरियां दिलाई, करघा लगवाया कि भाई आप ठीक हो गए हो, अब आप अपना कमाइए और अपना जीवन यापन कीजिए। तो इन सब कामों में बहुत आनंद आया
1: जी।
0: अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है उनको एक पौष्टिक भोजन देना। तो हम लोग एक पाउडर बनाते थे, शक्ति पाउडर, ये यूनिसेफ की तरफ से हमें सिखाया गया था। तो वो शक्ति पाउडर में प्रोटीन बराबर हो, तो गेहूं, चना, मूंगफली, सोयाबीन को मिला के हम लोगों ने एक चक्की भी डाल ली थी।
1: अच्छा,
0: महिलाओं ने उसमें पिसवाते थे हम, और उनके पैकेट बना के सुबह 5 बजे दूध के साथ हम उनको देने जाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, भीगा हुआ चना,
1: हाँ,
0: वो पैकेट
1: जी,
0: एक ग्लास दूध,
1: हाँ,
0: और उन सबको वहाँ अपने सामने खिला के फिर हाँ, आते थे। तो इस तरह से ये बिलासपुर में किया। सिंगरौली में रहे तो वहाँ हम लोगों ने करघा डलवा दिया था, तो करघे पे चादरें, टॉवल ये बनती थी। तो इस तरह से जहाँ रहे वहाँ बहुत खुशी खुशी ये सारे काम किए। तब ये सब दिमाग में नहीं आया कि लिखना भी है या चित्र भी बनाना है। जहाँ रहे वैसे काम,
1: मतलब जीवन के चित्र बन रहे थे, वो कागज पर थे, लोगों के मन में थे, उनकी स्वास्थ्य के साथ बेहतर स्वरूप में आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सृजन तो हो रहा था अपने विविध रूपों में,
0: रूप बदल गया
1: जी। इसीलिए मुझे भी ये संशय था कि मैं आपका परिचय किस रूप में दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके नजदीक रहकर जानी सुनी और समझी हैं। यहाँ पर आपने जिक्र किया राजगढ़ का, नरसिंहगढ़ का, सिंगरौली का, बिलासपुर का, कोल माइंस जहाँ जहाँ है, लगभग मुझे लगता है वो सारा एरिया देखा होगा। ग्वालियर आपका घर था, भोपाल से नाता कैसे जुड़ा?
0: ये भी एक प्रारब्ध कहते हैं ना, भगवान जो एक आपकी किस्मत का लिखता है हम लोग नहीं जानते। ये मेरे हस्बैंड जब रिटायर हुए तब हम लोग धनबाद में थे, धनबाद का जो कोल माइंस और वो सबसे कठिन माना जाता है
1: जी।
0: वहाँ से

0: रिटायर हुए, क्योंकि ये गांधी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर पंड्या जी थे
1: जी
0: और मदन मोहन जोशी जी थे, तो उन्होंने कभी इनको बोला होगा या परिचय इनका था, तो उन्होंने बोला कि तुम आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ आके ज्वाइन करोगे। तो बस रिटायरमेंट के तीसरे दिन हम लोग भोपाल में थे, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था। भोपाल आ गए, भोपाल की गली सड़कें मैं कुछ भी नहीं जानती थी। फिर मेरा ये नया दौर शुरू हुआ कि मैंने भोपाल को पहचानना शुरू किया, तो धीरे धीरे भोपाल से जो परिचित हुई
1: जी,
0: फिर मुझे मिल गया यहाँ हिंदी लेखिका संघ। हिंदी लेखिका संघ ने फिर मुझे एक नई दिशा दी, जहाँ मेरा परिचय हुआ भोपाल की जो बड़ी शख्सियत हैं जिनको विश्व पूरा

0: भोपाल की गली सड़कें मैं कुछ भी नहीं जानती थी। फिर मेरा ये नया दौर शुरू हुआ कि मैंने भोपाल को पहचानना शुरू किया, तो धीरे धीरे भोपाल से जो परिचित हुई
1: जी,
0: फिर मुझे मिल गया यहाँ हिंदी लेखिका संघ। हिंदी लेखिका संघ ने फिर मुझे एक नई दिशा दी, जहाँ मेरा परिचय हुआ भोपाल की जो बड़ी शख्सियत हैं जिनको विश्व पूरा जानता है, ऐसी लेखिकाओं को, मालती जोशी जी, मैरुनिसा परवेज जी, तो उनके साथ जब मैं जुड़ी तो मेरा लेखन नेचुरली बहुत अलग तरह से प्रभावित हुआ और मैंने लिखना शुरू किया। जो पहली पुस्तक मेरी आई 2009 में कविताओं की
1: जी,
0: और 2011 में उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया
1: जी।
0: तो ये ईश्वर की कृपा मानती हूँ मैं। और दूसरी पुस्तक मेरी आई 2016 में, जिसको 2017 में साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय पुरस्कार मिला
1: जी।
0: तो ये भोपाल की ही देन मानती हूँ मैं कि यहाँ आके मैं एक साहित्यिक संसार से मेरा परिचय हुआ और चित्र भी चलते रहे, मांडना भी हुआ। मांडना की पुस्तक आई मेरी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने प्रकाशित की, और ये कविताओं की पुस्तक भी आई, तो दोनों तरह से काम करती रही।
1: तो हमारा ये भोपाल आपको यूं ही फलता रहे, आप हमारे भोपाल को अपने चित्रकला, साहित्य और सेवा से समृद्ध करती रहें। बहुत विस्तार है इस विषय में और उसके हर आयाम पे सीमित समय में बात कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज की इस बातचीत को तो हम यहाँ विराम देते हैं, लेकिन जल्दी ही फिर कोशिश करेंगे कि आपके मांडने पर विस्तार से बात की जाए और उसके उस मर्म को समझने की कोशिश की जाए कि वो चित्र क्या बोलते हैं और कैसे वो हमें अपनी ओर बुला लेते
0: हैं। ये आपकी बात बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मांडना में इतना कुछ है बताने के लिए और बहुत ज़रूरी है सबको बताने के लिए कि वर्तमान में हम जितना ये पर्यावरण और इन चीज़ों कर रहे हैं, तो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज उसको पहले कितना सोच चुके हैं। मतलब उसमें आपको पेड़ पौधे, धरती, आकाश, वायु सबके लिए है, हमारे जो पंच तत्व हैं उन पंच तत्वों का पूरा उसमें समावेश है
1: जी।
0: और इसलिए ये लोक कला जो है ना, जो बनी वो शायद इसी से प्रेरित होकर बनी, पर आज हम उसको भूल रहे हैं, तो उसको वापस में उतना ही संग्रहित करके उसका प्रदर्शन होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए
1: जी।
0: तो ये मेरा प्रयास है, अभी चल रहा है।
1: आपका प्रयास निर्बाध आगे बढ़ता रहे, लेकिन हमारी और सभी सुनने वालों की तरफ से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगी कि कलाओं का ये प्रदर्शन आपकी तरफ से भी हो, यदि तो हम सब लाभान्वित होंगे, उन्हें देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और फिर आपसे एक मुलाकात का वादा है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम इनसे मिलिए मैं, अब हम आपसे और सभी सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार
0: जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चित्रकार एवं बाल साहित्यकार श्रीमती अनीता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।

0: ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है, लीजिए प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है आगर मालवा जिले की चिट्ठी। आलेख महेश शर्मा, वाचन स्वर दीपा सिंह। आगामी वर्षा काल को देखते हुए आगरमालवा जिला कलेक्टर प्रीति यादव ने बाढ़, अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी विभागों को आवश्यक तैयारियां समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए हैं। गत दिनों हुई आपदा प्रबंधन की बैठक में जिला कलेक्टर ने सभी अधिकारियों से कहा है कि आपदा की स्थिति में त्वरित और समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग अपनी कार्ययोजना तैयार रखें और आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर्व पर आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित मोती सागर तालाब में आयोजित गहरीकरण और सफाई कार्य में प्रदेश के उच्च तकनीकी शिक्षा और आयुष विभाग के मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए। इस दौरान मोती सागर तालाब में साफ सफाई कार्य किया गया। वहीं जन अभियान परिषद द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और गाँवों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को लेकर जल स्रोत पूजन, गंगा कलश यात्राएं, सामूहिक श्रमदान और जन जागरूकता गतिविधियों से ग्रामीणों को जल संरक्षण का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आगरमालवा जिला अस्पताल में स्थापित तंबाकू व्यसन मुक्ति केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

आयोजित किया गया। इसमें लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करने, आमजनों को इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही तंबाकू सेवन से होने वाले कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता यूसीसी के संबंध में अध्ययन और परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की पिछले दिनों आगरमालवा स्थित कंपनी गार्डन के नवीन मांगलिक भवन में समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा की उपस्थिति में जन परामर्श बैठक हुई। इसमें जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अन्य वर्गों के लोगों ने विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव पेश किए। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत आगरमालवा स्थित पुराने कृषि उपज मंडी में प्राकृतिक खेती संवर्धन और खेत बचाओ अभियान के तहत पिछले दिनों आयोजित हुए एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वर्तमान समय में धरती माता और मानव स्वास्थ्य दोनों को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आगरमालवा नगरीय क्षेत्र के पात्र 243 हितग्राहियों को पिछले दिनों विधायक मधु गहलोत ने स्वीकृति पत्र सौंपे। गौरतलब है कि पहली किश्त के रूप में 1-1 लाख रुपए के मान से 2,47,00,000 रुपए सीधे हितग्राहियों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत हर घर जल बेहतर जल के तहत पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ और बेहतर बनाने के उद्देश्य से आगरमालवा जिले के नलखेड़ा नगर में 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन पिछले दिनों क्षेत्रीय विधायक भैरव सिंह परिहार ने किया। योजना के अंतर्गत कुंडालिया बांध से फिल्टर प्लांट तक 16 किलोमीटर रॉ वाटर पाइपलाइन, विभिन्न स्थानों पर उच्च क्षमता की पानी की टंकियों का निर्माण, पाइपलाइन विस्तारीकरण, नल कनेक्शन और फ्लोटिंग इंटरक्वेल सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। आगरमालवा जिला पंचायत सभागृह में गत दिनों हुई पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक में सीईओ बीएस सोलंकी ने कृत्रिम गर्भाधान, बधियाकरण, टीकाकरण, क्षीरधारा, ग्राम योजना, दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, मैत्री योजना, गौशाला संचालन और गौरस ऐप के उपयोग और प्रगति की जानकारी ली। जिले के नलखेड़ा स्थित विश्व प्रसिद्ध पीताम्बरा सर्वसिद्ध पीठ मां बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन, विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के संचालन के लिए पुजारियों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की जांच और पात्रता परीक्षण प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए जिला प्रशासन ने टीम गठित की है। जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि में मत्स्य प्रजनन काल होने से कलेक्टर ने जिले के जलाशयों में मत्साखेट पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। नियमों के उल्लंघन पर उल्लंघनकर्ता को 1 वर्ष का कारावास या 5,000 रुपए का जुर्माना या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है। आगरमालवा कलेक्टर प्रीति यादव ने सभी तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी आवश्यक पात्र हितग्राहियों का ई केवाईसी निर्धारित समय सीमा 30 जून तक अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए ताकि योजना के आगामी किस्तों का लाभ बिना किसी बाधा के प्राप्त हो सके। वृद्धजनों को जागरूक करने के उद्देश्य से आगरमालवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीते दिनों वृद्धाश्रम में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में द्वितीय जिला न्यायाधीश मधुसूदन जंघेल ने वृद्धजन के खान पान, स्वास्थ्य से संबंधित बिंदुओं पर चर्चा करते हुए नालसा वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा योजना और वरिष्ठ नागरिकों माता पिता के भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों की जानकारी दी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

अभी आप सुन रहे थे आगर मालवा जिले की चिट्ठी। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत सागर।

श्रोताओं, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गीत सागर में। और कहते हैं कि महासागर की महानता उसकी ऊंची लहरों में नहीं बल्कि उसकी अथाह गहराई में छिपी होती है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम गीत सागर में। और आज के इस सफ़र में मैं हूं आपके साथ नेहा सोनी।

दोस्तों, आज प्रसिद्ध संगीतकार आर डी बर्मन का जन्मदिन है। इनका जन्म 27 जून 1939 को कोलकाता में हुआ था, तो सोचा क्यों ना इनके बारे में थोड़ी बात हम कर ली। हिंदी सिनेमा के एक महान संगीतकार के रूप में आर डी बर्मन जाने जाते हैं, और इनका पूरा नाम हम सभी जानते हैं, राहुल देव बर्मन था। फिल्मी दुनिया में वे पंचम दा के नाम से विख्यात हुए। पंचम दा के नाम से उन्हें जाना जाता था, और अपने करियर में 300 फिल्मों में लगभग उन्होंने संगीत दिया है। अपने मधुर संगीत से श्रोताओं का दिल जीतने वाले संगीतकार राहुल देव बर्मन के लोकप्रिय गीत आज भी हम सभी सुनते हैं, और हम सभी उनके इन नगमों के, उनके इन गीतों के दीवाने हैं। और उनके संगीत में सिर्फ कोई एक ही धुन नहीं थी, उनके संगीत में हर एक धुन थी जो हर एक वर्ग को अच्छा लगता था, और आज भी वो गीत हम सब सुनते हैं, पसंद करते हैं।

दोस्तों आर डी बर्मन की संगीत यात्रा छोटे नवाब फिल्म से हुई थी, जो 1961 में आई थी, और उनकी आखिरी फिल्म 1942 ए लव स्टोरी, जो 1994 में आई थी, ये फिल्म रही। और इसके अलावा कई फिल्मों में आर डी बर्मन ने संगीत दिया, जिसमें से हमने भी गीत सुना, फिल्म शोले, यादों की बारात, कटी पतंग, अमर प्रेम, तीसरी मंजिल, कारवा, परिचय, मासूम, इजाज़त, दिलबर और 1942 ए लव स्टोरी। ये वो फिल्में हैं जिनके गाने, जिनका संगीत हम सभी को आज भी याद है, और ये जब गाने बजते हैं तो खुद ब खुद हमारा दिल झूम उठता है।

0: दोस्तों, भारतीय सिनेमा में संगीत को एक नया रंग देने वाले कई नाम आए और उन्हीं में एक नाम आर डी बर्मन का भी है। कई फिल्मों में संगीत देने के बाद उन्हें कई सम्मानों से भी सम्मानित किया गया। उनके अनमोल योगदान के लिए उन्हें सम्मान दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो संगीत है, उनके संगीतबद्ध किए गए जो गाने हैं, वो सिर्फ एक ही कैटेगरी के नहीं हैं। वो संगीत ऐसा है जो कभी युवाओं में जोश भरता है, तो कभी वो अपनों की याद दिलाता है, तो वो कभी किसी एक अभिनय पर केंद्रित रहा तो वो कभी बच्चों को भी गुदगुदाया करते हैं। ये सारे नगमे पंचमदा ने हमें दिए हैं और आज उन्हीं के फिल्मों के ये नगमे हमने आप तक पहुँचाए।
1: हसीना से

0: बता दा।
1: बता दूं? वो यहीं पर
0: है।
1: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

श्रोताओ, इसी के साथ आज भारतीय पार्श्व गायक नितिन मुकेश का भी जन्मदिन है, जिन्हें हिंदी सिनेमा में उनके बेहतरीन गानों और भक्ति भजनों के लिए जाना जाता है। और हम सभी जानते हैं कि वह हिंदी सिनेमा के महान और दिग्गज गायक मुकेश के बेटे हैं। नितिन मुकेश ने 1980 और 1990 के दशक में बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद उन्होंने फिल्मों में गाया और कई गाने उनके ऐसे हैं जो हम आज भी याद करते हैं, सुनते हैं। आपको याद होगा फिल्म क्रांति का उनका गीत जो आज भी हम सभी गुनगुनाते हैं। इसके अलावा फिल्म रामलखन, खून भरी मांग, नूरी, तेजाब और सनम बेवफा, इन फिल्मों में नितिन मुकेश ने गीत गाए हैं।

अभी गीत सागर कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग माला। इसमें सुनिए रत्नाकर व्यास का सरोद वादन, राग है नट भैरव।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में भी आप सुन रहे थे नट भैरव राग पर रत्नाकर व्यास का सरोदवादन। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच की ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर या

0: नट भैरव राग पर रत्नाकर व्यास का सरोदवादन। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्ज़, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस साल भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मजबूत जनसंबंधों पर आधारित हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में सेवा शुरू की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में एशिया हाउस और प्रमुख वैश्विक कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और भविष्य में अवसरों की खोज पर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वे गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। सुरक्षा बल 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा से पहले गहन गश्ती और तलाशी अभियान चला रहे हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 3 जून तक चलेगी। और मौसम केंद्र के अनुसार आज भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर समेत 43 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। प्रस्तुति अनुजा रघुवंशी की है।
1: स्वागत है आपका कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में। मैं हूं आपके साथ अनुजा। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो ये कार्यक्रम है इसमें हम बात करते हैं आपसे किसी विषय पर और सुनाते हैं फिर आपको प्यारे प्यारे गीत। तो आज का हमारा विषय है आप जिंदगी में कमबैक कैसे करते हैं, तमाम परेशानियों परिस्थितियों के बाद हताश होकर किस तरह दोबारा ज़िंदगी में एक ज़िंदगी से लड़ने के लिए दोबारा खड़े हो जाते हैं, खुद को इंस्पायर कैसे करते हैं, अभिप्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, तो किस तरह से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं हमें बताइए फ़ोन करके। फ़ोन नंबर तो आप जानते ही हैं हमारा 0755-266-0902। तो जल्दी से हमें फ़ोन कीजिए, तब तक आपको हम सुनाते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैं अपूर्वा बोल रही हूँ, अपूर्वा रघुवंशी।
0: जी, तो अपूर्वा जी, आप क्या करती हैं अपनी ज़िंदगी में खुद को वापस मोटिवेट करने के लिए? अगर हार जाते हैं तो फिर कैसे संभल के वापस खड़ी होती हैं ज़िंदगी की जंग लड़ने के लिए?
1: ऐसा अक्सर होता है जीवन में कि हम बहुत थक जाते हैं और फिर लगता है कि कोई फायदा नहीं है ये सब मेहनत करने का, सब ऐसे ही चलेगा। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो मुझे मेरे नानी की कही हुई एक बात याद आती है
0: जी।
1: कि जिंदगी सबकी कटती है, कभी समय अच्छा कटता है, कभी बुरा कटता है, लाइफ में सब कुछ बैलेंस में रहता है।
0: जी
1: तो हमें ज्यादा लंबा नहीं सोचना चाहिए, बस आज क्या करना है, कल क्या करना है, इसके आगे नहीं सोचना है और बस अपना कर्म करते जाना है।
0: बिल्कुल, क्या बात है। तो हम चाहते हैं हमारे जो श्रोता हैं वो सारी जो आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल उनको अपनी ज़िंदगी में उतारें और इसी तरह से अपनी लाइफ को जिएं। और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे परिवार में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे दो बच्चे।
0: अच्छा, चलिए तो अब आपको सुनाते हैं ये गीत।

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते
1: हाँ
0: मैडम
1: जी
0: जी।
1: नमस्ते, किससे बात हो रही है हमारी?
0: हाँ जी गुलबालो से बोल रहा हूँ, विक्रम मालवी है।
1: जी कैसे हैं आप?
0: हम बढ़िया हैं।
1: तो जैसा कि आप जानते हैं, आज है हमारा कार्यक्रम बात आपकी, गीत हमारे। तो
0: जी
1: आप अपनी ज़िंदगी में मोटिवेट कैसे होते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है, आप ऐसा क्या करते हैं या फिर किस चीज़ से इंस्पायर होते हैं कि वापस आप हताश होके दोबारा हिम्मत से ज़िंदगी के लिए खड़े हो जाते हैं?
0: तो हिम्मत रखना पड़ती है ना मैडम जी।
1: तो वही हिम्मत आपको कहाँ से मिलती है ये जानना चाहते हैं हम।
0: अपने आप पर विश्वास होना चाहिए।
1: बिल्कुल, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आत्मविश्वास होना ज़रूरी है।
0: हाँ
1: इसके
0: जी
1: अलावा
0: मैडम
1: और
0: जी।
1: ऐसा क्या करते हैं आप जिससे आपको खुशी होती है? जैसे मैं आज दुखी हूँ तो मैंने कुछ अच्छा गाना सुन लिया, या फिर मैंने कुछ अच्छा खा लिया, या फिर बच्चे बच्चों के साथ खेल लिया, या दोस्तों से बात कर ली, तो आप ऐसा क्या करते हैं?
0: ये अपने मित्र या दोस्त है उनको अपनी बात जो है वो शेयर कर दो तो मन हल्का हो जाता है।
1: जी बिल्कुल, तो आप ये करते हैं अपनी ज़िंदगी में एक दोबारा जो है कमबैक करने के लिए। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको सुनाते हैं हम ये गीत।

0: जी
1: जैसे कि कुछ मूवीज हो गई जिसको अपन देख के अपने अंदर प्रोत्साहन जगता है।
0: हाँ
1: आज
0: जी
1: सुबह जैसे मैं एक मूवी देख रहा था, ग्राम पंचायत 2 जो पार्ट सीजन आया है,
0: हाँ जी
1: तो उसमें वही बता रहे हैं कि आप अपनी परिस्थितियों पे कैसे काबू करके अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे मेरे को काफी मोटिवेशन मिलता है कि
0: जी
1: अपनी
0: जी
1: परिस्थितियां जो भी है, लेकिन काम आपको उसी परिस्थितियों में रह के कैसे अपना आउटपुट बेस्ट देना है, वो चीज़ अपन उससे सीखते हैं।
0: हाँ जी तो बिल्कुल हमें आपकी बात बड़ी अच्छी लगी कि आप मूवीज़ के थ्रू जो है इंस्पायर हो सकते हैं और मोटिवेट हो सकते हैं।
1: जी
0: जी आपने हमें
1: जैसे कि
0: फ़ोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई सिद्धार्थ जी। तो अब आपको सुनाते हैं बड़ा ही प्यारा सा ये मोटिवेशनल सॉन्ग।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी, सिद्धार्थ जैन से बात हो रही है मैम।
0: जी सिद्धार्थ जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का कार्यक्रम है बात आपकी गीत हमारे। तो अपनी ज़िंदगी में कमबैक कैसे करते हैं आप? कैसे खुद को मोटिवेट करते हैं?
1: जैसे कभी कभार, जैसे मैं कभी कुछ परेशान हो जाता हूँ तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन के लिए कुछ ऐसी चीजें देखता हूँ जिससे मुझे कुछ मोटिवेशन हो।

0: தம்
1: ஐயோ
0: அதம் தாம் தாம் தாம் ரோக் ம் ம் ம் ம் ஆ ஏ

0: हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी नमस्ते, किससे बात हो रही है
1: सुप्रिया
0: हमारी?
1: सिंह से। बढ़िया,
0: जी सुप्रिया जी, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
0: तो आप
1: आप
0: अपनी ज़िंदगी
1: बताइए
0: में
1: आप।
0: कमबैक करने के लिए क्या करती हैं? खुद को कैसे मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर करके कैसे रखती हैं?
1: बहुत सारे, कई बार तो हमारे जीवन पूजा पाठ तो हमेशा ही चलती रहती है,
0: हाँ जी
1: और कई बार अपने बच्चों को देखकर ही बहुत खुशी होती है, तो लगता है कि हम भी इनके जैसे बने। थोड़ा
0: हाँ
1: सा
0: जी
1: हमारे अंदर भी फूर्ति आए, थोड़ा सा हम भी कुछ करें, कुछ नया करें। आसपास के लोग भी कई बार इंस्पायरिंग होते हैं,
0: हाँ जी
1: और भी ढेर सारी चीजें आती हैं।
0: जी बिल्कुल। और आपने जैसे बच्चों की बात करी, तो बच्चे तो सबसे ज़्यादा हम इंस्पायर करते हैं, है ना? जैसे बच्चे, आप देखते हैं कि बच्चे रोते हैं, गिर जाते हैं, फिर वापस थोड़ी देर में हम उन्हें हंसते हुए देखते हैं, खेलते हुए।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं। और कई बार हम जैसे बच्चे, कई बार बेटी है मेरी, तो उसको डांस का बहुत शौक है,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: कई बार वो गानों जो उसके गीत होते हैं डांस वाले, उनको कई बार वो रिपीट करती है, फिर डांस करती है, फिर करती है, फिर कहती है मम्मा ये स्टेप क्या आ रहा है, ये स्टेप क्या आ रहा है। तो कई बार हमने आपको इन सारी चीजों से तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि नहीं, उसने कितनी बार कोशिश की और आखिर में सीख कर ही मानी है ना। तो
0: बिल्कुल,
1: बच्चे
0: हाँ
1: भी कई
0: जी
1: बार हमारे लिए इंस्पायरिंग होते हैं।
0: बिल्कुल। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आपकी ये बात हमारे और श्रोताओं तक पहुँचे, जो अभी उदास महसूस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उन्हें एक मोटिवेशन और इंस्पायर जो है आप उन्हें ज़रूर
1: जी
0: करेंगी।
1: जी कई बार क्या होता है कि हम कभी बाहर नहीं जा पाते, या बहुत सारा हमें खुद इतने बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे आसपास ही बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको देखकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ना। हमारे बच्चे हुए, हमारे कई बार बुजुर्ग भी हमको कई बार ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है
0: हाँ
1: ना।
0: जी
1: हमारे हस्बैंड भी वो बेचारे लगे रहते हैं पूरे समय काम करते, या है ना, या कुछ बहुत टिपिकल ऐसी पोजीशन आ जाती है तो भी वो बेचारे लगे रहते हैं। तो हमारे लिए तो बहुत कुछ है ऐसा आसपास से सीखने के लिए।
0: तो चलिए, आपने हमें फोन लगाया, हमें बड़ी खुशी हुई, और अब हम आपको सुनाते हैं ये प्यारा सा मोटिवेशनल एक गीत।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्कार। राजस्थान
0: हाँ जी, नमस्ते जी।
1: कोटा से। बस
0: अच्छा, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, आप बताओ, आप कैसे? भूपेंद्र
0: मैं भी बढ़िया हूँ। आपका नाम एक बार हमें बता दीजिए।
1: कुमार गुप्ता।
0: जी भूपेन जी, तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे में।
1: बताओ ना आप।
0: खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं? अभी प्रेरित कैसे करते हैं? जिंदगी में प्रेरणा कैसे लाते हैं?
1: जिंदगी में प्रेरणा तो प्रकृति से ही है सब कुछ।
0: जैसे आप कभी हताश होते हैं, उदास हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं जिससे आप वापस

0: खुश हो जाते हैं और जिंदगी जीने के लिए आगे बढ़ते हैं।
1: संगीत का सारा लोग उदास होते हैं।
0: जी जी बिल्कुल,
1: संगीत सुनाओ, अपनों के साथ बैठ के बातें करो।
0: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, अपनों से बात करें, संगीत सुने के। हाँ जी,
1: पुराने दोस्तों को याद करो।
0: जी बिल्कुल, पुराने दोस्तों को, पुराने पलों को।
1: देखा जाए,
0: जी जी बिल्कुल,
1: कैसी भी परिस्थिति हो उसका मुकाबला करना चाहिए।
0: बिल्कुल, कैसी भी परिस्थिति हो उसका डटकर हमें मुकाबला करना चाहिए, और उसका तरीका ही है ये चंद खुशियाँ। हाँ जी,
1: परेशानियाँ तो,
0: जी जी,
1: अगर परेशानी नहीं हो तो जिंदगी क्या है।
0: बहुत, ये भी बिल्कुल सही बात है।
1: करो तो खुशी खुशी है।
0: जी जी,
1: मानो तो खुशी है, नहीं मानो तो फिर कुछ भी नहीं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही, बड़ी अच्छी बातें हुई आपसे। अब आपको हम सुनाते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नमस्ते
1: जी, नमस्ते मैम।
0: जी। किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरी करिश्मा चौकसे से बात हो रही
0: अच्छा, मेरी आपसे बात हो रही है
1: है। आपकी करिश्मा चौकसे से बात हो रही
0: जी।
1: है। मैं
0: करिश्मा जी, कैसी हैं आप?
1: बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। और करिश्मा जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: मैं भोपाल से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, भोपाल से ही बात कर रही हैं। चलिए,
1: हाँ
0: तो मैं आज, जैसा कि आप जानती हैं, हमारा आज का विषय है कार्यक्रम बात आपके गीत हमारे में, कि आप खुद को मोटिवेट कैसे करते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए।
1: मैम, मैं खुद को प्रेरित ऐसे करती हूँ कि अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को मतलब एक खुशहाल बना के और
0: जी
1: हमेशा खुशियां ढूंढ ढूंढ के अपने आप को मोटिवेटेड करती हूँ।
0: जी क्या बात है! मुझे तो आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बड़ी हंसमुख हैं। जिंदगी में परेशानियां होंगी, पर चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है आपके। सही है
1: हाँ
0: क्या?
1: मैम, परेशानियां तो जिंदगी में बनी रहती हैं, बट आगे जिंदगी जीने के लिए खुशहाल तो रहना ही पड़ेगा ना। यदि
0: बिल्कुल
1: अपन खुशहाल रहेंगे तो ऑलरेडी खुशियां ही खुशियां ही आएंगी जिंदगी में।
0: बिल्कुल करिश्मा
1: नेगेटिविटी
0: जी।
1: सोचेंगे तो
0: हाँ,
1: नेगेटिविटी ही आएगी।
0: क्या बात है! मतलब पॉजिटिव सोचना चाहिए। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा,
1: हाँ
0: पॉजिटिव सोचोगे तो
1: पॉजिटिविटी, यदि अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी रहेगी अपने आसपास। नेगेटिविटी देखेंगे तो नेगेटिविटी देखेंगे। इसलिए मैं अपनी जिंदगी में कोशिश करती हूँ कि हमेशा नेगेटिव चीजों से दूर रह के पॉजिटिव चीजों को गेन करूँ और पॉजिटिव ही पॉजिटिव रहूँ।
0: बिल्कुल। तो हम अपना समझ सकते हैं आपकी, जैसा जो आप कहना चाह रही हैं, कि हमेशा ज़िंदगी में सकारात्मक रहना चाहिए। और जब आप
1: जी मैम,
0: परेशान हैं तो आप सकारात्मक सोचने की कोशिश कीजिए और उसका ही प्रयास कीजिए।
1: जी। तो क्या सकारात्मक सोचेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो पॉजिटिविटी रहेगी तो वही चीज आपको हर चीज सकारात्मक सकारात्मक दिखेगी।
0: बिल्कुल, आप उसको, उसी परिस्थिति को सकारात्मक नज़रिए से देखेंगे।
1: जी
0: हमें बड़ी
1: जी
0: खुशी हुई
1: जी
0: करिश्मा कि आपने हमें फ़ोन लगाया और हमसे इतनी अच्छी बात साझा करी।
1: जी
0: चलिए, अब हम
1: मैम
0: आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: हेलो,
1: नमस्ते
0: नमस्ते। किससे बात हो रही है हमारी
1: जी। मैं बोल रही जुलेखा खत्री इटारसी से।
0: जी? कैसी हैं आप?

0: जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसी?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। इटारसी में मौसम कैसा है अभी?
0: मौसम तो धूप निकली हुई है,
1: अच्छा, बारिश नहीं हुई अभी?
0: बारिश तो बहुत कम है, बहुत
1: जी जी
0: जी
1: बिल्कुल, देखिएगा जल्दी से बारिश होगी अब वहाँ पे।
0: बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
1: तो बात आपकी गीत हमारे आज कार्यक्रम है, और जैसा कि आप जानते हैं हमारा आज का विषय है आप जिंदगी को कैसे जीते हैं, खुद को प्रेरित कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं जिंदगी जीने के लिए।
0: जी
1: आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे जिंदगी को जीती हैं, वापस उदास होती हैं तो वापस खुश होने के तरीके क्या ढूंढती हैं, हिम्मत से कैसे वापस खड़ी हो जाती हैं।
0: जी तो मैं ऐसा ढूंढती हूँ कि जैसे कभी मैं उदास होती हूँ तो फिर मैं सोचती हूँ कि और भी तो लोग इतने उदास है, कितनी ज्यादा परेशानी में, हमारी परेशानी हम देखते हैं तो औरों से थोड़ी ही कम लगती है, तो फिर खुश हो जाती हूँ कि नहीं भाई ठीक है,
1: जी,
0: और चाहती हूँ कि किसी को भी ना आए परेशानियाँ,
1: हाँ जी
0: और इसमें ध्यान लगा देती हूँ।
1: जी जी बिल्कुल। तो आपके परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार में मेरी माँ है
1: जी,
0: और मेरा भाई है।
1: अच्छा, क्या बात है। बिल्कुल, तो माँ तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन होती, प्रेरणा होती है हमारे लिए, है ना।
0: जी बिल्कुल सही, जी
1: हमने माँ को तकलीफ़ में भी देखा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए हमेशा माँ जो है बीमार होती थी, उसके बाद भी हमारे लिए भोजन बनाना, हमें खाना खिलाना, हमें हमारा ध्यान रखना, हमारी पढ़ाई करवाना, आधी नींद में भी हमारे लिए जागती थी वो हमेशा।
0: बिल्कुल सही, माँ तो माँ होती है, उनका दर्जा तो कोई नहीं ले सकता है।
1: बिल्कुल सही बात है। तो सबसे बड़ी प्रेरणा जो है हमें माँ से मिलती है,
0: जी
1: और आपने हमें फ़ोन किया, हमें बड़ी खुशी हुई।
0: जी जी मुझे बहुत खुशी हुई, कई दिनों बाद लगा मैडम जी मेरा फोन।
1: बिल्कुल, अब तो आप देखिएगा आप प्रयास करते रहिए, फ़ोन ज़रूर लगेगा
0: जी
1: आपका।
0: जी बिल्कुल जी सही,
1: जी, आपने हमें फ़ोन किया, बड़ी खुशी हुई। चलिए अब आपको सुनाते हैं प्यारा सा गीत।

अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। हमें उम्मीद है कि अब आप अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रेरणा से, हिम्मत से, मोटिवेशन होकर और इंस्पिरेशन के साथ जिएंगे। अपने आसपास की चीज़ों से खुद को प्रेरित करेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी अपनी हिम्मत से प्रेरित करेंगे, मोटिवेशन देंगे।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस साल भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मजबूत जन संबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने ईरान को चेतावनी

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आइए सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में कहा कि इस साल भारत और सेशल्स के बीच राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। दोनों देशों के रिश्ते आपसी विश्वास, लोकतांत्रिक मूल्यों, विविधता के सम्मान और मजबूत जन संबंधों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ईरान को चेतावनी दी है कि यदि वो भविष्य में संघर्ष विराम का उल्लंघन करता है या कोई आक्रामक कार्रवाई करता है तो अमेरिका उसका सैन्य जवाब देगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में शलाका जनजातीय चित्र प्रदर्शनी चल रही है। गौंड चित्रकार मनीषा ध्रुवे के चित्र प्रदर्शित हैं। ये प्रदर्शनी 30 जून तक चलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

श्रोताओ नमस्कार, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, जहां आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओ इस मौसम की जो गर्मी है उसमें बारिश बस आने ही वाली है, तो चलिए इन बारिश की बूंदों के आगमन के इंतज़ार में हम शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं इस कार्यक्रम के लिए आज का पहला खत हमें प्राप्त हुआ है मयंक रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से, नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा और दामिनी वर्मा का। इसी गीत के लिए अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी, पारस, तपस्या और करिश्मा कामले की, जो कि गौरी नगर इंदौर से हैं। इनकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये गीत जो हमने लिया है फिल्म दिल चाहता है से। शंकर महादेवन, शान और केके की आवाज़ें हैं। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म कभी खुशी कभी गम से। अलका याग्निक, सुनिधि चौहान, उदित नारायण और सुदेश भोसले, साथ ही आदेश श्रीवास्तव की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं समीर और इसको संगीत दिया है आदेश श्रीवास्तव ने। और साथ ही इसी गीत के लिए हमें खत प्राप्त हुआ है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया का। इसी गीत के लिए हमें अगली फरमाइश मिली है आदर्श नगर मालोड पंजाब से ही राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।
1: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2

0: श्रोता, यह गीत आप सुन रहे थे फिल्म कल हो ना हो से। वसुंधरा दास, के शान और लॉय मेंडोजा की आवाज़ें, जावेद अख्तर के लिखे बोल और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। साथ ही इसी गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी थी आशा रेडियो श्रोता संघ मेहर नगर उमेरखंड महाराष्ट्र से, अभिजीत गवहाणकर राही, श्रीमती सरिता गवहाणकर, सिद्धांत गवहाणकर, प्रिंस एकांश गवहाणकर और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवहाणकर, श्रीमती वैशाली गवहाणकर, श्वेता सुमित गवहाणकर और कुमारी ध्वनि गवहाणकर परी। श्रोताओं, आइए अब अगला गीत हम सुनते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है। सिंगापुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता नेमा, भावना और प्राची नेमा से। ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म आजा नचले से, पीयूष मिश्रा के लिखे बोल, सलीम सुलेमान का संगीत और इस गीत में आवाज़ है सुनिधि चौहान की।
1: Dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata dinata din

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून क्या है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। श्रोताओं, आइए अब अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं जिसके लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री की।

0: फिल्म कभी अलविदा ना कहना से ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीत था शंकर एहसान लॉय का, और इस गीत में आपने आवाज़ें सुनी शान, वसुंधरा दास और साथियों की। श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी

0: Cena.
1: Na Sansani, na Sansani, na Sansani, na Otejna, na Otejna, na Otejna. Nashor din ra, nashor din ra,
2: nashor din ra. Chobari chobari kiya le.
1: Nahi ahankar. केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हाँ, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।
3: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग।

धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने जाना कि राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्नसेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच गया, जहां की राजा आदित्य सेन के यहाँ भुवन मोहिनी आश्रय में थी। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहता था। चंद्रहासिनी की ओर आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। चंद्रहासिनी ये जानकर भी विवाह करने को तैयार थी। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के पिता सम्राट द्युम्नसेन ने सभी भारतीय खंड राज्यों की सभा बुलाई, जिसमें हूणों से लड़ने के लिए भारतीय सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा की सभा में हूणों के अपमानजनक प्रस्ताव को पढ़ा गया। आमात्य ऋषभ देव ने कहा कि युद्ध टालने के लिए चंद्र

0: असिनी को समर्पित कर दिया जाए। ये सुनकर भुवन मोहिनी ने क्रोध में आकर ऋषभ देव का सिर काट दिया। उसके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। राजकुमार के सेनापतित्व में हूणों से युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। विजय के बाद विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया और वो सम्राट बना। अब आगे क्या होता है सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी में।
1: चंद्रहासिनी के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया। धारा नगरी लौटकर सम्राट ने स्वयं संन्यास ले लिया और मुझे सम्राट की गद्दी सौंप दी। आज मेरे पास सब कुछ है। भारत समस्त खंड राज्यों के नरेशों का एक सुदृढ़ संघ बन चुका है और मैं भारत का सम्राट हूं। सत्ता और शक्ति की अविरल धारा बहने लगी है, परंतु फिर भी एक रिक्तता है। भुवन मोहिनी चंद्रहासिनी को साम्राज्ञी बनवाकर राष्ट्र की सुप्त नारियों को जगाने के कार्य में संलग्न हो गई। स्वप्रेरणा से या मुझसे दूर जाने के लिए नहीं जानता। यद्यपि मैं प्रजा के हितार्थ कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मेरी आंखें सदैव भुवन मोहिनी को ही खोजती रहती हैं। प्रत्येक क्षण लगता है कि वो द्वार पर आकर खड़ी हुई है और कहती है,
2: आपने याद किया सम्राट विजयश्रवा?
1: इस ध्वनि को सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूं। कब आओगी भुवन मोहिनी? तुम कब आओगी मुझसे मिलने?
2: मैं आपके ही कक्ष में हूं देव।
1: आहा, भुवन मोहिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे कक्ष में मेरे सामने हो। ना जाने कितने दूत मैंने तुम्हें खोजने के लिए भेजे, सब लौट कर यही बताते रहे कि तुम नहीं मिली। क्यों क्यों भुवन मोहिनी, तुम मुझे भूलकर मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? क्यों चली गई? वो तुम ही हो ना जिसने राजकुमारी चंद्रहासिनी को मेरे जीवन में बलात् प्रवेश कराने की अनवरत चेष्टा की। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमको खोना होगा। मैं दृष्टि फाड़ फाड़ कर सूने पथ पर तुम्हारे बढ़ते चले आने वाले महायान की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अपने अंतर की उस विवश आकुलता को दबाकर, किंतु जब तुम्हें नहीं देख पाता तब एक पश्चातापूर्ण भावना जीवन में घुलकर कहती है, सब व्यर्थ है। मेरे जीवन के कर्म सब व्यर्थ हैं। मेरी दहकती विवक्ष भूमि ज्वालामुखी का उद्गार बन जाती है।
2: सम्राट, जिस तरह से आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है।
1: बिना मेरी आज्ञा के?
2: सर्व कल्याण के लिए आप जैसे कल्याणकारी सम्राट की आज्ञा आवश्यक नहीं है सम्राट।
1: मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं चाहता भुवन मोहिनी।
2: आपकी उद्विग्नता साम्राज्य की निकटता समाप्त कर देगी सम्राट। आप उन्हें अवसर तो दें। चंद्रहासिनी आपकी पूजा करती हैं, आपको देवों से भी बढ़कर मानती हैं। मेरा क्या है, मुझे आपकी दया ने एक नर्तकी से राष्ट्रभक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे लिए यही आशातीत है। इससे अधिक की ना तो मुझे कोई अभिलाषा है और ना ही कामना। मुझे आज्ञा दें सम्राट, मेरे सामने बहुत कार्य हैं। आपसे प्रार्थना है कि बिना किसी प्रयोजन के मुझे ना बुलवाया करें। प्रणाम।
1: One more.

क्या भुवन मोहिनी को सम्राट ने बुलवाया था? मेरी प्रियतम, क्या मैं अपना समस्त प्रेम दान देकर भी उस आग की ज्वलनशीलता को कम नहीं कर पाई जिसे भुवन मोहिनी की स्मृति ने दहका रखा है? आह स्वामी, मैंने भूल की है। मैंने अपने सुख के लिए आपकी और भुवन

0: अरे देखिए ना, ये नन्हे कुंवर के गालों पर ये लाल लाल क्या हो गया है?
1: छोटे बच्चों को ऐसा हो जाया करता है साम्राज्ञी, इसमें परेशान मत हो।
0: अरे अरे रे रे रे, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। अरे नहीं, चुप हो जा बेटे।
1: आज भुवन मोहिनी आ रही है।
0: अच्छा
1: हाँ, मैंने बुलवाया है, आती ही होगी। 5 वर्ष बाद आज उसके दर्शन होंगे।
0: मैं भी अपनी सखी को देखने के लिए आकुल हूं सम्राट।
2: सम्राट की जय हो।
1: अरे भुवन मोहिनी, आओ, तुम्हारी ही चर्चा। कितना परिवर्तन हो गया है तुम में, तुम तो साक्षात योगिनी बन चुकी हो।
2: अरे कितना नन्हा देवोपम, कोमलता का प्रतिरूप। बधाई हो बहन चंद्रहासिनी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए।
0: अरे छोड़ो सखी, इतना ही दुलार था तो पुत्र जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई?
2: मेरा रोम रोम इन्हें आशीर्वाद दे रहा था, परंतु मैं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं निकाल सकी। मेरी त्रुटि को क्षमा करना बहन। आ आ हाँ, मेरे पास आएंगे। आइए ना, आइए, दो ना बहन।
0: हाँ, ये लो, जा तू भी भुवन मोहिनी की गोद में ही रहा कर। ना जाने कब से तेरे पिता इनके नाम की माला जपते रहे हैं, अब तू भी पिता की भांति मेरा तिरस्कार कर।
1: साम्राज्ञी,
2: ऐसा ऐसा मत कहो बहन। सुना भुवन मोहिनी, ये वही राजकुमारी है जिसको सुखी बनाने के लिए तूने अपनी प्रेम आकांक्षाओं को होम कर दिया। फिर भी राजकुमारी तेरे प्रति कृतज्ञ नहीं है।
0: लाओ मुझे दो, मेरा कुमार है, कहीं इसे भी तुम्हारी गोद की आदत ना पड़ जाए। चलेगा दूध पीने? आ चल, तुझे दूध पिला दूं। मैं तेरी माँ हूं सम्राट पुत्र। मैं तेरी माँ हूं। आ आ आ चल।
1: क्षमा मांग सकता हूं तुमसे भुवन मोहिनी?
2: कुछ मत बोलिए आप, बहुत कड़वी घूंट पी चुकी हूं, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट अभी तीर्थाटन पर गई थी।
1: कभी अपनी तूलिका से तुम्हारा चित्र बनाया था।
2: नारी सेवा के काम में लग गई हूं।
1: निर्वासित होते समय तुम्हारा वो मुखड़ा अभी भी मुझे याद है।
2: मैंने मैंने अब तक 8 आश्रम आरंभ करा दिए हैं सम्राट।
1: भुवन, कहीं नहीं जाना है तुम्हें।
2: क्यों?
1: इसलिए कि राजकाज से अवकाश मिलने पर जब कभी तुम्हारी पागल स्मृति कौंधती है, तब मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है और कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे विवश करके चंद्रहासिनी को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी कि तुम मुझसे विलग रहो?
2: तो इसमें बुराई क्या है मेरी सम्राट? आपके दाम्पत्य जीवन में मेरी उपस्थिति सर्वदा बाधक होती और हमारी सम्माननीय साम्राज्ञी समझती कि मैं उनके सरस जीवन में अपनी उपस्थिति से विष घोल रही हूं। आज मुझे संतोष है कि निरंतर 5 वर्षों तक आपसे दूर रहकर मैंने अपने को अपराधिनी बनने से बचा लिया है।
0: ये झूठ है, मुझे फुसलाने का एक विषैला षड्यंत्र।

0: चंद्रहासिनी।
1: राजकुमारी क्षमा करो, पिछले 5 वर्षों में धारा नगरी में मेरी उपस्थिति अधिक से अधिक मात्र 1 माह की हुई होगी। तब मैं अपने पागल मन को नहीं रोक पाती थी, सबके दर्शन के लिए 2-4 दिन रुक जाती थी। किंतु मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि मैंने आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में विष घोलने का षड्यंत्र किया। आज भी अपराधिनी सिद्ध होने पर मैं सहर्ष कठोर से कठोर दंड स्वीकार करूंगी।
2: जिसके शीश पर भारत सम्राट का वरद हस्त हो, उसे दंडित करने का अपराध कौन मोल लेगा?
1: असत्य है राजकुमारी, जिस अपराध का संदेह तुम मुझ पर आरोपित कर रही हो उसे हृदय चीर कर दिखला सकती तो अवश्य दिखलाती, कि तुम्हारे प्रियतम को अपनी ओर मिलाए रखने का मैंने कोई कुचक्र कोई षड्यंत्र नहीं रचा। हाँ, मैं सम्राट को नहीं रोक पाती कि वो अपनी ममता की धारा मुझ पर ना उड़े ले।
2: यही तो काटा है जिसे दूर होना चाहिए।
0: पा लिया ना तुमने भुवन मोहिनी वो परिणाम जिसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। चंद्रहासिनी आज भारत की साम्राज्ञी है, वो तुम जैसी तुच्छ नारी के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकती। उसे वो क्षण भूल गए जब दीनहीन याचक की भांति तुम्हारे सम्मुख नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रणय दान के लिए अपना आंचल फैलाए हुए थी। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुरा रही है।
2: भुवन मोहिनी, मेरी बातें जितनी तुम्हें असहाय नहीं होंगी उससे कहीं अधिक भारत सम्राट को दुखा रही हैं। अरे अरे मुझे क्षमा करो, कहीं इन बातों का बदला मुझसे चुकाया गया तो मैं किसका सहारा खोजूंगी? कम से कम तुम्हारा पक्ष तो भारत सम्राट ग्रहण कर रहे हैं ना भुवन मोहिनी? उन्होंने अभी अभी स्वीकारा है कि तुम्हारे दया के कारण मैं साम्राज्ञी बनी हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी दया ना लेती? राजकुमारी होने के कारण किसी न किसी राजकुमार की जीवन संगनी तो होती ही ना। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सम्राट भी मुझ पर कृतज्ञता का बोझ लाद कर कह रहे हैं, यदि तुमने मेरे साथ सदैव व्यवहार ना किया होता तो वो संभवतः मुझे स्वीकार ना करते।
0: हाँ हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई संदेह भी मत रखना चंद्रहासिनी।
2: देख लिया ना भुवन मोहिनी, क्या मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन में भयानक प्रहार होते हैं? कहा था ना मैंने?
1: साम्राज्ञी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर
0: साम्राज्ञी से क्षमा याचना करके मुझे अधिक लज्जित मत करो भुवन मोहिनी। तुमने तुमने कोई अपराध नहीं किया, सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हारे अतुल स्नेह के प्रति भयानक अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे समर्पित जीवन को कुचलकर नीरस बनाया है। मैं ही तुम्हारे मरु जीवन में झंझावात पैदा करने वाला भयानक स्वार्थी और लोलुप व्यक्ति सिद्ध हुआ हूं। चलो, आज से मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करूंगा। चंद्रहासिनी साम्राज्ञी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं स्वयं सम्राट पद का परित्याग कर तुम्हारे साथ राह राह का भिखारी बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धत प्रेम जो हमारी दृष्टि में हमारा अपमान करने पर तुल जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अंततः साम्राज्ञी भी एक नारी है, सर्वदा अवध अदंडनीय। अस्तु, मैं आज से ही साम्राज्ञी से दूर रहूंगा ताकि उन्हें किसी प्रकार हमारे प्रति क्षोभ न उत्पन्न हो। चलो भुवन मोहिनी।
1: सम्राट,
0: मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता भुवन मोहिनी, चलो।

हम राजप्रसाद के इस खंड में रहेंगे, याद है ना? यहीं पर मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था। किशोरावस्था से लेकर सम्राट होने तक मेरा आवास यही प्रखंड था। कोलाहल से दूर एकांत में

0: और तुम्हें मेरी सौगंध है भुवन मोहिनी, तुम इस योगिनी स्वरूप का परित्याग करो।
1: एक बार फिर से मुझे उस स्नेह वारुणी से उन्मत्त हो लेने दो जिसे पीकर मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भयानक शून्यता आ रही है और मैं अपने को उसी नीरव शून्यता में विलीन करता जा रहा हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी अपने सौंदर्य मद में प्रतिपल पागल हो रही हैं और वो समर्पण का ढोंग रचकर प्रतिक्षण मेरे समर्पण की उपेक्षा करती जा रही हैं। मैंने किसी प्रकार 5 वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पर व्यतीत कर डाले हैं, किंतु चंद्रहासिनी कभी भी सौंदर्य उन्माद के विषैले नशे से बच नहीं सकी। वो महानता की उपासिका है, जबकि मैं अस्तित्वहीनता का। भुवन मोहिनी, आह, तुम्हारे स्पर्श में अभी भी वही मादकता है, वही विद्युत तरंगों से चपल भावनाओं का मायावी उन्माद, वही प्राणों में कंपन और सिहरन पैदा करने वाली प्राकृतिक वासना का स्फुरण। प्रिय, तुम्हें ये रूप राशि इसलिए नहीं प्राप्त हुई है कि मैं उसे देखकर आत्मविभोर हूं। अप्राप्य की भांति तुम्हें ना प्राप्त कर सकने की छलना में निरंतर जलता रहूं। बोलो भुवन मोहिनी, मैं चंद्रहासिनी के रूप की उत्पत्त गरिमा को बुझा दूंगा यदि तुम्हारा संबल प्राप्त हो। यदि एक बार तुम इस असमय के वैराग्य को ठुकरा सको, अन्यथा ये अतृप्त अनंत जीवन की वासना बनकर मुझे क्षुब्ध करती रहेगी और मैं लुप्त मधुप की भांति तुम्हारे रूप की यश गाथा को मन ही मन गुनगुनाते हुए उद्भ्रांत बना रहूंगा। मुझे चाहिए तृप्ति, तुम्हारे अक्षय यौवन के उपभोग की पूर्ण स्वीकृति, अन्यथा मैं माननीय चंद्रहासिनी के साम्राज्य को ठुकरा दूंगा। चंद्रहासिनी को चाहिए सत्ता और शक्ति, वो उसे मैं स्वेच्छा से प्रदान कर विरक्त हो जाऊंगा। आज चंद्रहासिनी की गोद में साम्राज्य के सिंहासन का प्रतिनिधि खेल रहा है, वो उसके रंग में रंगकर मुझे भूल सकती हैं और मेरी उपेक्षा भी कर सकती हैं, किंतु तुम बोलो, क्या तुम भी मेरी उपेक्षा करना चाहती हो? क्या तुम भी मेरे जीवन में मात्र छलना सिद्ध होना चाहती हो? बोलो भुवन मोहिनी, बोलो, तुम मुझसे घृणा करती हो?
2: नहीं,
1: तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो?
2: नहीं,
1: क्या तुम्हें मेरी वासनात्मक वृत्तियों के प्रति रोष है?
2: नहीं,
1: क्या कभी तुमने अंतर के निगूढ़तम प्रकोष्ठ में मेरी मूर्ति बिठाकर कभी पश्चाताप करना चाहा है?
2: नहीं,
1: क्या कभी तुमने मेरे लिए सर्वस्व उत्सर्ग ना करने की शपथ ली है?
2: कभी नहीं।
1: तो क्या कभी मेरी आसक्ति पर तुम्हें भय या रोष उत्पन्न हुआ था?
2: कभी नहीं।
1: क्या तुम सदैव मुझे देवत्व पर प्रतिष्ठित रखने के बोझ से दबी रही हो?
2: कभी नहीं देव।
1: तो क्या कभी तुम्हें चंद्रहासिनी के जीवन संगिनी बनाने का आंतरिक क्षोभ हुआ है?
2: कभी नहीं।
1: तब मायावनी, तब सच सच कहो, मेरी छाया से ही भयभीता बनकर मुझसे दूर क्यों भागती रही हो? क्या मुझसे प्रेम करने का तुम्हारा हार्दिक उल्लास अब मर चुका है?
2: नहीं, किंतु
1: तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझसे गोपनीय बनकर रहने की धृष्टता ना करना। मैंने तुम्हारे सम्मुख अपना अंतरपट खोल कर रख दिया है। मैं तुम्हें पाप पुण्य की भावना से विलख रख कर प्यार करता रहा हूं और आज मैं प्यार के बदले प्यार ही चाहता हूं।
3: आप तो प्यार पा ही रहे हैं सम्राट। भुवन मोहिनी आपकी गोद में अल्लड़ बाला सी मचल जो रही है।
1: ऐसी ही बैठी रहो भुवन मोहिनी। साम्राज्ञी, तुमने मेरे एकांत में पहुंचकर भीषण अपराध किया है। सावधान, अब तुम्हें अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, नेत्रों में आग भर के देखो, आज से मेरी गोद में प्रणय

0: लीला रचाने वाली भुवन मोहिनी पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी है। तुमने मुझसे जो प्रणय दान चाहा था वो भी भुवन मोहिनी का उच्छिष्ट था। भुवन मोहिनी की अनिच्छा देखकर भी मैं उसे अपने प्रेम दान से विभूषित करूंगा।
1: सम्राट,
0: भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी कहां जा रही? रुक जाओ भुवन मोहिनी।

0: हे मेरे जीवन के शत शत सहस्त्र लक्ष विद्रोह के स्फुलिंगो, तुम एक बार एकाकार होकर प्रलयंकारी महाज्वाल बनकर धधक उठो। हसीम वेदनाएं, अगणित निराशाएं, तीव्र जलन और घोर हाहाकार जीवन को इतना रुला चुका है कि अब आंसू सूख गए हैं। विद्रोह प्रबल हो उठा है, हमारी रग रग में एक ज्योति जलने लगी है। जीवन चाहता है कि उसी में भस्म हो जाए, मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कोई अवशेष न बचे। अपने भौतिक अस्तित्व पर अभिमान करने वालों को मैं बता जाऊं कि कैसे मरना होता है। आत्महनन करके मैंने जो पुण्य कमाया था वो तो मानो आत्मछल था, वो सर्वदा अपने आप को धोखा देती रही। किंतु आज अंतर तारों से जो चीत्कार प्रतिध्वनित हो रहा है वो मानो करुणा सागर में जीवन की समाधि लगा देगा। चंद्रहासिनी के लिए मुझे अपने सुख का परित्याग करना पड़ा था, चंद्रहासिनी के लिए दान कर डाला था अपने प्रीतम प्रणय के अनंत बसंतों को। यदि यदि मैं समझ पाती कि उस प्रतिदान का परिणाम आंसुओं में जीवन को विगलित कर देना है तो क्यों अपने मिलन भरे वसंत में पतझड़ लाती। काश काश मैं ना समझती कि प्रेम की पीड़ा से छटपटाने वाली एक सुंदरी राजकुमारी ने मेरे ऋतुराज को छीनकर अपना वसंत मनाया है। आज मैंने चंद्रहासिनी की दृष्टि में प्रेम की असहिष्णुता का दर्शन किया। वो तो मानो मेरे प्रणय की प्रतिस्पर्धिनी बनकर उग्र प्रतिकार के लिए तत्पर है। किंतु दूसरी ओर मेरे प्रियतम विजय श्रवा की आकुलता घुन सी मेरे जीवन की सुख शांति और समृद्धि को चूर चूर कर रही है। अब मेरे सामने मात्र दो रास्ते हैं, या तो मैं चंद्रहासिनी की सर्वत्र उपेक्षा करके विजय श्रवा के जीवन को मधुमेह वसंत के मादक खिलौरों से भर दूं, या अपने जीवन का अंत करके चंद्रहासिनी के लिए सर्वस्व उत्सर्ग कर जाऊं। परंतु यदि मैं उत्सर्ग करती हूं तो मेरे प्रिय का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं देव के जीवन में सरस वसंत अनुप्राणित करने का एक बार प्रयास अवश्य करूंगी, भले ही मुझे चंद्रहासिनी की कोपाग्नि में भस्म ही क्यों ना होना पड़े।
1: कहां है साम्राज्ञी? साम्राज्ञी के महल के सभी दासों और परिचारिकाओं सुन लो, अब तुम्हें साम्राज्ञी की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रहासिनी, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूं। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए?
2: सम्राट,
1: मैं तुम्हें शारीरिक दंड न देकर मानसिक दंड दूंगा। मैंने तुम्हें साम्राज्ञी पद पर प्रतिष्ठित करके भयानक भूल की है। एक अकृतज्ञ नारी हो तुम, जाओ, आज से तुम साम्राज्ञी पद से वंचित की जा रही हो।
2: नहीं,
1: मैं आज ही आदेश देता हूं कि समस्त साम्राज्य की प्रजा तुम्हें राजकुमारी चंद्रहासिनी के नाम से संबोधित करे, ना कि साम्राज्ञी।
2: नहीं सम्राट,
1: तुम्हें मेरे राज प्रासाद को भी त्यागना होगा।
2: परंतु सम्राट,
1: तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर गर्व है ना? तो जाओ, महाराज आदित्य सेन की लाडली बनकर इंद्रप्रस्थ के राजमहल को सुशोभित करो। तुम जैसी माननी के लिए धारा नगरी के राजप्रसाद में कोई स्थान नहीं है।
2: नहीं सम्राट,
1: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूं कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।
3: मदिर

0: कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वह सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिवसीय गुना जिले के दौरे पर हैं। आज इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आमजनों से मिलकर उनकी समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में

21वां एपिसोड होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिवसीय गुना जिले के दौरे पर हैं। आज इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में आमजनों से मिलकर उनकी समस्या संबंधी आवेदन प्राप्त किए। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मुख्य आतिथ्य में राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन परिसर में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में प्रदेश के औद्योगिक विकास की दिशा में कई निर्णय लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए जोधपुर और चेन्नई के बीच 27 जून से साप्ताहिक समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन रुठियाए, गुना, बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशन से गुजरेगी। हज 2027 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य हज कमेटी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इच्छुक लोगों से निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। और भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थी 10 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप जुड़े हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश के साथ, दोपहर के एक बज रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा, योगदान आकाशवाणी के रीवा केंद्र का है।

फूलों सी कोमल चांद सी प्यारी, धरती की शोभा है हर नारी। उसकी हंसी में सावन गाए, उसकी ममता जग महकाए। नदियों सी निर्मल उसकी धारा, जीवन में भर दे उजियारा। सूरज सा साहस दीपक सामान, नारी है सृष्टि की पहचान। हरियाली का संदेश सुनाती, प्रेम और करुणा की ज्योति जलाती। नारी और प्रकृति का यह नाता सारे जग को सुख दे जाता। मैनो इसी जोश और उमंग के साथ हम फिर हाजिर हैं आपका अपना मनपसंद कार्यक्रम महिला सभा लेकर। तो बहनों स्वीकार कीजिए अर्चना का नमस्कार। बहनों जनगणना किसी भी देश की जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति से संबंधित जानकारी एकत्र करने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कार्य सामान्यतः प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है। मैनो जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर सरकार विभिन्न योजनाएं बनाती है और देश के विकास की दिशा निर्धारित करती है। मैनो जनगणना में महिलाओं की भागीदारी और उनकी सही जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि किसी भी समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति पर निर्भर करती है। मैनो लोग सोचते हैं जनगणना केवल देश के लोगों की संख्या जानने का माध्यम है, लेकिन बहनों जनगणना से यह पता चलता है कि देश में महिलाओं की साक्षरता दर क्या है, कितनी महिलाएं रोजगार से जुड़ी हैं और किन क्षेत्रों में महिलाओं को अधिक सहायता की आवश्यकता है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मातृत्व लाभ, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाएं तैयार करती है। मैनो हम महिलाओं को यह समझना आवश्यक है कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के बेहतर भविष्य का आधार है। मैनो प्रत्येक महिला का कर्तव्य है कि वह 2027 में होने वाली जनगणना में जनगणना अधिकारी को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करे, साथ ही अपने परिवार और समाज की अन्य महिलाओं को भी जनगणना में सहयोग करने के लिए प्रेरित करे। मैनो एक जागरूक महिला न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में योगदान देती है, क्योंकि जब महिलाएं जागरूक

होंगी और जनगणना में सहयोग देंगी, तभी एक सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र का निर्माण संभव है। अब आइए बहनों, मोहम्मद रफी की आवाज में सुन लेते हैं आराधना फिल्म का ये गीत।

0: आइए बहनों, हम 2027 में होने वाले जनगणना के बारे में श्रेया पांडे से बातचीत करते हैं। श्रेया जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
1: नमस्ते, मैं श्रेया पांडे। जनगणना किसी भी देश के विकास की आधारशिला है। इसके बिना सरकार योजनाएं नहीं बना सकती और न ही जनता की को क्या आवश्यकता है ये ठीक से समझ सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह जनगणना में अपना पूरा सहयोग दे। जनगणना किसी भी देश में रहने वाले लोगों की संख्या, आयु, लिंग, शिक्षा, भाषा, व्यवसाय, आवास आदि से संबंधित जानकारी को एकत्रित करने की एक सरकारी प्रक्रिया है। यह हर 10 वर्ष में कराई जाती है।
0: क्या जनगणना में महिलाओं की सही संख्या, सही स्थिति दर्ज होना आवश्यक है?
1: हाँ, महिलाओं की सही संख्या एवं स्थिति

0: व्यक्ति का जनगणना में, जिससे कि उनकी सामाजिक स्थिति का पता चलता है, वे सामाजिक रूप से कहाँ, उनकी क्या स्थिति है, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण, और उनका जो लिंगानुपात है वो भी कितना बढ़ा या घटा, इसकी जानकारी के लिए उनकी सही, महिलाओं की सही जानकारी जनगणना में होना बहुत आवश्यक है, जिससे कि उनके लिए जो भी योजनाएं बनाने में, योजनाएं बनेंगी, उनको बनाने में बहुत सहायता मिलती है।
1: महिलाओं और बच्चों के विकास में जनगणना की क्या भूमिका है?
0: महिलाओं एवं बच्चों के विकास में जनगणना की बहुत भूमिका है। महिलाओं के सही स्थिति महिलाएं एवं बच्चों के बारे में दर्ज होने से महिलाओं के विकास के लिए योजना बनाने में मदद मिलती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण एवं रोजगार संबंधी योजनाएं महिलाओं को पहुंचाने में बहुत सहायता मिलती है, एवं महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण के लिए बेहतर नीतियाँ बनाई जा सकती हैं जनगणना के माध्यम से। एवं बच्चों के विकास में मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण से जुड़ी योजनाएं बनाने में बेहतर सहायता मिलती है। महिला रोजगार एवं आर्थिक स्थिति की जानकारी के आधार पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा सकती हैं।
1: श्रेया जी, आपने हमारी बहनों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों। अच्छा स्वास्थ्य एक ऐसी व्यक्तिगत और सामाजिक अनुभूति है जिसमें महिलाएं अपने आप को सक्रिय, सृजनशील, समझदार तथा योग्य महसूस करती हैं, जिससे उनकी विभिन्न क्षमताओं व योग्यताओं को यथा योग्य सम्मान मिलता है। साथ ही निर्भीक रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर सकती हैं महिलाएं, और जहां चाहे वहां आ जा सकती हैं, और कठिन से कठिन कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटती। बहनों, अक्सर देखने में आता है कि खून की कमी मतलब एनीमिया की बीमारी भारत में महिलाओं और किशोरियों के सामने एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन गई है। बहनों, हमारे शरीर में पर्याप्त हीमोग्लोबिन या लाल रक्त कोशिकाओं की कमी होने पर हमें कमजोरी लगती है, और थोड़ा सा काम कर ले तो थकान लगने लगती है, चक्कर आने लगता है, किसी काम में मन नहीं लगता जैसी समस्या होने लगती है। विशेष रूप से किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में एनीमिया का प्रभाव अधिक देखा जाता है। बहनों, मिशन उत्कर्ष 2026 का मुख्य उद्देश्य ये है कि एनीमिया से प्रभावित किशोरियों और महिलाओं में पोषण के स्तर को सुधारना व स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। बहनों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता, पोषण संबंधी शिक्षा, आयरन की पूर्ति और नियमित स्वास्थ्य जांच पर ध्यान दिया जाता है। सरकार का लक्ष्य है कि एनीमिया मुक्त भारत के सपने को साकार किया जाए। बहनों, खून की कमी मतलब एनीमिया होना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारे शरीर में आयरन की कमी, जरूरी पोषक तत्वों का अभाव, बार बार संक्रमण होने के कारण भी हमारा हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है। बहनों, आप सोचेंगे कि किस प्रकार का संक्रमण? बहनों, जैसे बार बार दस्त लगना, उल्टी होना, भूख न लगना, लगातार कई दिनों तक दस्त लगने से व्यक्ति की भूख भी मर जाती है और वह खाना नाम मात्र का खाता है, जिस कारण शरीर कमजोर हो जाता, साथ ही हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाता है, व्यक्ति एनीमिक हो जाता है। यदि सही उपचार ना मिला तो यह मौत का कारण भी बन सकता है। बहनों, मासिक धर्म के दौरान अत्यधिक रक्तचाप, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति जागरूकता में कमी भी एनीमिया का कारण बन सकती है। इसीलिए बहनों, सरकार द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है किशोरियों में खून की कमी की पहचान के लिए नियमित जांच कराई जाती है। आयरन और फॉलिक एसिड की गोलियों का वितरण भी कर रही है सरकार। बहनों, संतुलित व पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक कर रही है सरकार, लेकिन माताओं बहनों को भी ध्यान देना चाहिए कि हर घर में माताओं के साथ साथ बेटियों को भी खास तौर पर पौष्टिक आहार प्रदान करें, क्योंकि आज की बेटी कल की माँ होती है और मजबूत नागरिक बनती है। बहनों, एनीमिया की समस्या दूर होने से शिक्षा, कार्य क्षमता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। लगभग 95,000 किशोरियों को इस कार्यक्रम से लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। बहनों, हम महिलाओं को यह प्रयास करना चाहिए कि घर में

सभी को अच्छे से अच्छा पौष्टिक आहार प्रदान करें, जिससे किसी भी व्यक्ति को, बच्चा हो, बूढ़ा हो या जवान हो, एनीमिया का शिकार ना हो वो। बहनों, यदि सरकार, समाज और परिवार एक साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाते हैं तो भारत निश्चित रूप से एनीमिया मुक्त और स्वस्थ भारत की दिशा में आगे बढ़ेगा। बहनों, आइए सुन लेते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में ये गीत।

0: मैनू कभी कभी तला भुना खाते खाते मन ऊब सा जाता है। लगता है कुछ झटपट बनाकर खाया जाए जो हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी है और हमारा पेट भी भर जाए और जो बच्चे बूढ़े जवान सभी को पसंद आए। बहनों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वादिष्ट दलिये की खिचड़ी। बनाने की विधि इस प्रकार है। हमें चाहिए 1 कप दलिया गेहूं का, 1/2 कप मूंग की दाल, 1 छोटी प्याज बारीक कटी हुई, 1 छोटी गाजर बारीक कटी हुई, 1/4 कप हरे मटर के दाने, 1 छोटा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच घी, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, 4 कप पानी। बहनों, दलिया बनाना शुरू करते हैं हम। बहनों, दलिये को कड़ाही में डालकर थोड़ा सा घी डालें और हल्का भूंज लें। फिर मूंग की दाल को अच्छे से धो लें। आप कुकर में घी गर्म करें और जीरा डालें। जीरा चटक जाए तो उसमें प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भूंजें, फिर गाजर डालें और टमाटर डालकर 2 से 3 मिनट तक भूनते रहें। अब दलिया और मूंग की दाल डालकर 1 मिनट तक चलाएं। फिर हल्दी, नमक और पानी डाल दें। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 3 से 4 सीटी आने तक पकने दें। कुकर के ठंडे होने पर खिचड़ी को अच्छी तरह मिला लें। फिर ऊपर से थोड़ा सा घी डाल दें, बारीक कटी हरा धनिया डाल दें। आप गर्मा गर्म दलिये की खिचड़ी दही या पापड़ हरी चटनी के साथ परोसें। यह स्वादिष्ट होने के साथ साथ शरीर को ऊर्जा देता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जल्दी से पच जाता है। बहनों, आप लीजिए गर्मा गर्म दलिये का आनंद अपने पूरे परिवार के साथ। साथ ही सुन लीजिए ये प्यारा सा गीत जिसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले ने।
1: अरे, ए,

आकाशवाणी रीवा के योगदान के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला सभा। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला प्रसारण होगा इस छोटे से अंतराल के बाद।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 1:30 होने को हैं। अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम लोक संगीत। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की है। श्रोताओं, लोक संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं मुन्नी गंधर्वा का गाया गैलहई गीत।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम लोक संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी रीवा के योगदान से आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 1:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। योगदान आकाशवाणी रीवा का है। श्रोताओं, सुगम संगीत कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए कुछ गीत और भजन। तो आइए सुनते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन।

अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये भजन अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये गीत।

0: श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है, जिसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी रीवा के योगदान से। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: भोर की चौखट पर भक्ति की धारा,
2: ऑफिस जाने की जल्दी मगर देश दुनिया की खबर भी जरूरी।
3: ये आकाशवाणी है, अब आप समाचार सुनिए।
1: ऑफिस या घर से निकलते ही उफ, ये ट्रैफिक।
2: आकाशवाणी है ना,
4: बातों ही बातों में हर सुबह 10 से 11 बना लो पूरी दुनिया को अपना दोस्त।
2: ऑफिस में थोड़ा रिलैक्सिंग म्यूजिकल ब्रेक,
1: शाम सुहानी हो,
2: आकाशवाणी के साथ जुड़िए ना। घर पहुंचते ही थकान, कैसे हो मनोरंजन,
1: आकाशवाणी है ना। चैन की नींद से पहले कुछ भूले बिसरे पल, हर पल
2: सफर में
1: आपके साथ
2: आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
3: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर, तो कभी

0: कार्यक्रम उमंग सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
1: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2 बज रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अपना सपना मनी मनी का ये गीत। मीका सिंह की आवाज़, शब्बीर अहमद के बोल और प्रीतम का संगीत।

आनंद राज आनंद और श्वेता पंडित की आवाज़ों में आइए सुनते हैं फिल्म वेलकम का ये गीत। आनंद राज आनंद के लिखे बोल और संगीत है अनजान सागरी का।

0: श्रोताओं, फिल्म वेलकम के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। समिट में 2000 से अधिक प्रतिभागियों, जिनमें एमएसएमई उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एवं महिला व स्व सहायता समूह शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। शुरुआत में यह सेवा राज्य के 14 प्रमुख शहरों में शुरू की जाएगी। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए गए।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम पंचायत कुकरू में रात्रि चौपाल में ग्रामीणों से बातचीत करने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। अगले दिन मुख्यमंत्री स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन करेंगे। वहीं पौधरोपण कार्यक्रम के बाद कॉफी प्लांटेशन का निरीक्षण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। श्री सिंधिया का रुथियाई क्षेत्र में एक सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें आरोग्य सेतु 2.0, आयुष्मान सारथी चैटबॉट, आयुष्मान ऐप, ई सुश्रुत क्लिनिक, नेशनल हेल्थ क्लेम्स एक्सचेंज और स्वास्थ्य मानक शामिल हैं। वहीं श्री नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों

के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषयक कार्यशाला का शुभारंभ किया। कटनी जिले में कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। खंडवा जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। नरसिंहपुर जिले में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
3: $175 मिलियन इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 मिलियन पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
1: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा

0: परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
1: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है। एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
3: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
3: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोग परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि NCDC, IPCO, CRIPCO, NDDB, NABARD, NCEL, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में MSME दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
4: That is the only way that our MSME can go to the next level, and it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
0: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित

0: कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा, जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है, वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हरा कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्क फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य

समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हूं मैं फिर एक बार, आपका रेडियो साथी ऋषभ आहूजा। श्रोताओं, आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और आपको गीत सुनवाते हैं फिल्म दे दनादन से। सैयद कादरी के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी है राहत फतेह अली खान और सुजैन डिमेलो ने। संगीत है प्रीतम का और इस गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमंद्र और सन्मति पंचोलिया की। साथ ही हमें अगला खत इसी गीत के लिए मिला है सपना संगीता रोड इंदौर से। लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी मनन और तानिया का। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी मध्य प्रदेश ट्यून किया है आपने और आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है कंवर कॉलोनी बड़वाह से। प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूरा श्रीमाली का। साथ ही इसी गीत के लिए अगला खत हमें प्राप्त हुआ है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नुपुर, ऋषिका और रॉबिन का। तो आइए आपकी फरमाइश पर यह गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म बॉडीगार्ड से। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के लिखे इस गीत को आवाज़ें दी हैं ऐश किंग और क्लिंटन ने। संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हमें फरमाइश भेजी है अगले गीत के लिए ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय ने। साथ ही दुबेहा नेवदा गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय ने। इसी गीत के लिए अगला खत हमें मिला है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर जोंधले और आरती जोंधले का। तो आपकी फरमाइश पर आइए सुनते हैं कुर्बान फिल्म का ये गीत। निरंजन अयंगर ने इस गीत को लिखा है, सलीम सुलेमान का संगीत और आवाज़ें हैं सोनू निगम, श्रेया घोषाल और सलीम मर्चेंट की।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म सिंघम से। श्रेया घोषाल और अजय की आवाज़ें हैं, स्वानंद किरकिरे के लिखे बोल और अजय अतुल का संगीत। इस गीत के लिए हमें फरमाइश भेजी है छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश प्राप्त हुई है महादेव घाट अमलेश्वर से। डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी, सूरज, ज्योति ठाकुर और बेबी रेयांश ठाकुर की। इसी गीत के लिए हमें अगला खत प्राप्त हुआ है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी और दतरेंगी से भागवत वर्मा। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से। आतिफ असलम और अलीशा चिनॉय की आवाज़ें हैं, आशीष पंडित के लिखे बोल और प्रीतम का संगीत।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से अगली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया शोएब खान, पोत्रा मुस्तफ़ा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई और गांधीबाग अकोला से, रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर से। इनकी फरमाइश है फिल्म लव आजकल का ये गीत, जिसे गाया है राहत फ़तेह अली खान ने, इरशाद कामिल के लिखे बोल और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: श्रोताओं, फिल्म लव आजकल के इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह

ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज से 2 दिवसीय दौरे पर बैतूल जिले के हिल स्टेशन कुकरू जाएंगे। वह गांव वालों से बातचीत भी करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। और मौसम विभाग ने आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। मीडियम वेव DTH न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन और वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। मीडियम वेव पर हमारी इस सभा के समापन से पहले आइए एक नजर डालते हैं सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर। श्रोताओं, शाम की सभा के आगाज के साथ सुनिए युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी शाम 5:02 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की होगी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए शाम 5:33, शाम 6 और रात्रि 8:35 पर। आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति के अंतर्गत ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा का प्रसारण शाम 7:21 पर होगा। 7:45 पर सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। रात्रि 8 सुनिए कार्यक्रम सुर्खियों में। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ इस स्टूडियो पॉडकास्ट सीरीज का 7वां अंक आप सुनेंगे रात्रि 8:15 पर। कार्यक्रम विज्ञान भारती का प्रसारण रात्रि 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। और संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज सुनिए प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन रात्रि 10:00। इस कार्यक्रम का प्रसारण भी आकाशवाणी दिल्ली से किया जाएगा। ये थे आज शाम की सभा में प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। मीडियम वेव DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन, साथ ही वेव्स OTT ऐप पर यह आकाशवाणी भोपाल है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी यह सभा यहीं विराम लेती है। शाम की सभा के कार्यक्रमों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक DTH पर यह प्रसारण जारी रहेगा। DTH के ऑडियो चैनल पर आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी का भोपाल केंद्र। दोपहर के 3:02 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत। श्रोताओं, लोक संगीत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मुन्नी गंधर्वा द्वारा गाए कुछ लोकगीत। तो आइए सुनते हैं मुन्नी गंधर्वा द्वारा गाया गैल्हाई गीत।

डीटीएच के ऑडियो चैनल से आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम लोक संगीत में। आइए अब सुनते हैं मुन्नी गंधर्वा द्वारा गाया ये देवी गीत।

इसी के साथ कार्यक्रम लोक संगीत का प्रसारण यहीं संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब आपको सुनवा रहे हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज सुनिए अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाए गीत और भजन। तो आइए सुनते हैं ये पहला भजन।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण कार्यक्रम सुगम संगीत में। आइए अब आपको सुनवाते हैं अखिलेश द्विवेदी द्वारा गाया ये अगला भजन।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। वक्त हो रहा है दोपहर के 3:30। अब प्रस्तुत है चित्रपट संगीत। श्रोताओं, चित्रपट संगीत में आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं फिल्म अब के बरस का ये गीत। इस गीत को गाया है सुखविंदर सिंह और ऋचा शर्मा ने। सुनिधि चौहान और साथियों की आवाज़ें हैं। समीर के लिखे बोलों को संगीत दिया है अनु मलिक ने।

कुमार सानू की आवाज़ में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को लिखा समीर ने और संगीत था नदीम श्रवण का। डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है और आप आनंद ले रहे हैं चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म मैंने दिल तुझको दिया से। जलीस रशीद के लिखे बोलों को

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ में सुनिए इब्राहिम अश्क का लिखा यह गीत। राजेश रोशन का संगीत है और फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे और यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की देविका सिहाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं।

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं चित्रकार एवं बाल साहित्यकार श्रीमती अनीता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम इनसे मिलिए में आप

0: डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं चित्रकार एवं बाल साहित्यकार श्रीमती अनीता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम इनसे मिलिए में आपका स्वागत है। कार्यक्रम आपसे ये कहता है कि हम आपकी मुलाकात किसी एक शख्सियत से कराते हैं और देते हैं उनका एक परिचय। पर यहाँ मेरे लिए एक बहुत छोटा सा संकट ये मौजूद हो रहा है कि हमारे साथ जो शख्सियत स्टूडियोज में मौजूद हैं उन्हें मैं चित्रकार कहूँ, रचनाकार कहूँ, समाज सेवी कहूँ, शिक्षाविद कहूँ या मित्र कहूँ, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। हमारे साथ स्टूडियोज में हैं अनीता सक्सेना, आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: अनीता जी, बहुत सारे आयाम हैं आपके जीवन के और जीवन का एक लंबा अनुभव आपके साथ मौजूद है जिसे लेकर आप लगातार चल रही हैं। पारखी दृष्टि आपकी न केवल चित्रों पर है बल्कि प्रकृति पर कुछ इस ढंग से है कि जब उन फोटोग्राफ्स को देखा जाए जो आपकी कैमरे की आँख से होकर गुजरते हैं तो वो कुछ एक अलग ही दृश्य खींच देते हैं। मोटे तौर पर यदि पूछा जाए या जानना चाहूँ तो इन सारी चीज़ों की प्रेरणा कहीं से आपको मिली या ये स्वतः कदम दर कदम होता चलता चला गया सिलसिला?
2: दरअसल क्या होता है ना कि आपका बचपन जहाँ बीता होता है वो बहुत सारी बातें आपके मन में बैठी हुई होती हैं। मेरा बचपन गांव में बीता, हालांकि गांव में पूरा नहीं बीता, छुट्टियाँ वहाँ होती थी तो गांव का जो माहौल मिला
1: जी
2: वो बाग बगीचे नदी कुआं खेत, तो वो मन में ऐसे बैठ गए कि वो आज तक भी वहाँ से वो दृष्टि हटती नहीं है। वही मेरी कविताओं में आए और वही मेरी चित्रों में आए, मेरे मन के अंदर बैठे हुए हैं वो सब।
1: मुझे लगता है कि गांव में रहने वाला या बचपन की चीज़ों को जीने वाला हर एक इंसान होता है क्योंकि सबका जीवन बचपन से होकर ही गुजरता
2: सही बात
1: है।
2: सही बात है।
1: लेकिन सब उसे अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं, कहीं कोई बात, कोई शौक, कोई चाहत, कोई इंक्लिनेशन भी कह सकते हैं ज़रूर आपके भीतर होगा जिसने आपको प्रकृति को महसूस करने के लिए मजबूर किया। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बात या कोई घटना या कोई चीज़ रही होगी?
2: शुरू की तो नहीं कह सकती, शुरू तो जो बचपन जैसा मैंने बताया वहाँ बीता, लेकिन हाँ जब थोड़ा सा मैं शायद 7th 8th में रही होंगी तो मेरे पड़ोस में रहने आए थे प्रोफेसर चंद्रेश सक्सेना जी। वो ग्वालियर आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे और वो जो चित्र बनाते थे तो मुझे ये लगता था कि मेरे बनाए हुए चित्र भी ऐसे होने चाहिए। उनसे मैंने काफ़ी कुछ देखा, सीखा तो नहीं देखा, और वहाँ से शायद मेरे मन में ये आया कि ये विषय, तब मुझे ये भी नहीं पता था कि ये एक विषय होता है। मैं तो सोचती थी चित्र बनाए जाते, उन्होंने ही बताया कि ये एक विषय है और तुम चाहो तो क्लास 9 से इसको ले सकती हो। तो शायद वो प्रेरणा मेरी रही हो
1: जी
2: जिसने मेरे को चित्रकला की तरफ प्रेरित किया।
1: बिल्कुल।
2: और एक और घटना थी इसी के साथ, जब मैंने एडमिशन ले लिया था चित्रकला में तो मेरे मामा जी की लड़की थी डॉक्टर प्रभा पवार जी, वो लखनऊ आर्ट्स कॉलेज की चित्रकला विभाग की डीन थी और उनके हस्बैंड मतलब अवतार सिंह पवार जी जीजा जी वो स्कल्पचर डिपार्टमेंट के डीन थे, तो वो भी आती थी छुट्टियों में, तो वो बाटिक बहुत अच्छा बनाती थी।
1: अच्छा।
2: तो उनको भी जब मैंने देखा तो उनसे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि उनसे भी मैंने सीखा कि कला जो है वो कितनी, देखिए खूबसूरती क्या होती है कि इंसान को अट्रैक्ट करती है चाहे वो किसी रूप में हो, चाहे आप उसको चित्र में देख रहे हो चाहे आप साक्षात प्रकृति में देख रहे हो। तो शायद वो सब भावनाएं मेरे अंदर जो भरी कि मुझे भी इनको बनाना चाहिए, मुझे भी इनको सीखना चाहिए, तो वहां से हो सकता है ये शुरुआत हुई हो।
1: यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि आपकी 9वीं कक्षा की बात यदि की जाए तो ये शायद 40 साल पुरानी बात होगी या और भी,
2: और भी ज्यादा, और भी ज्यादा।
1: उस समय में, उस दौर में लड़कियों का पढ़ना ठीक है, बहुत घरों में पढ़ा जाता था और बच्चे पढ़ भी रहे थे, लेकिन कुछ खास विषय के लिए सोच नहीं पाते थे।
2: सच बात
1: तो
2: है।
1: चित्रकला का विषय चुनना और उसमें आगे की भी पढ़ाई करने को लेकर किसी तरह की कोई कठिनाई या कोई बाधा आई या आपको बहुत सहर्ष इसके लिए
2: नहीं,
1: आज्ञा भी
2: मुझे
1: मिली?
2: लगता है ये सब ना मतलब एक जो तीसरी शक्ति होती है, या मैं ये मान के चलती हूँ कि ईश्वरीय जो वो रहता है कि घर में कहीं ऐसा वातावरण भी नहीं था। मुझे लेखन का एक शौक जरूर हो गया था। 7th 8th में मेरी एक कविता प्रकाशित हो गई थी।
1: अच्छा।

0: भारती करके पत्रिका आती थी, तो लोगों को ये लगने लगा था कि मेरी रुचि इसमें है। और जब नाइन्थ में चंद्रेश चाचा जी से बात हुई तो मेरे बड़े भैया तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा रहे थे और दीदी मेडिकल की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रही थी, तो मेरे बड़े भैया ने ही जाके मेरा एडमिशन कराया था। मैं गई भी नहीं थी, गजरा राजा स्कूल ग्वालियर का, वहाँ जाके उन्होंने कराया और बोले तुम्हारा हो गया एडमिशन। घर में किसी ने ये भी नहीं कहा कि तुम ये क्यों ले रही हो, इसका कोई फ्यूचर है कि नहीं है, भविष्य है कि नहीं है। पर चूंकि मेरा शौक था, मुझे अच्छा लगता था, सबने प्रेरित किया, ना पिताजी ने कभी ये कहा कि तुम ये विषय क्यों ले रही हो, सब खुश थे जी इस चीज को लेकर।
1: तो ये तो स्कूल के समय की बात हो गई। फिर जब आगे की पढ़ाई की बात आती है तो उस समय उसी विषय पर टिके रहना, उसको और आगे बढ़ाना या उसमें स्पेशलाइजेशन करना, ये आपकी स्वतः स्फूर्त भावना थी या किस तरह से आप उस कदमों को लेके बढ़ें?
0: समय के साथ अपने आप धीरे धीरे धीरे, जब नाइन्थ में आई, नाइन्थ से टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ आते आते काफ़ी कुछ समझ चुके थे उसको। हालांकि जो उम्र होती है वो उम्र ऐसी नहीं थी कि हम बहुत ज़्यादा जाने, लेकिन एक मन का जो होता है ना, हर बच्चा सोचता है कि मुझे तो बहुत कुछ आता है। तो ट्वेल्थ तक आते आते ये लगने लगा था कि हाँ ये तो बहुत बड़ा विषय है, मतलब बहुत ऐसा विषय है कि लोग आपको मुड़ कर देखते हैं कि अरे वाह ये चित्र तुमने बनाया, इतना सुंदर बनाया। तो जब ट्वेल्थ मैंने पास किया तो ग्वालियर में दो कॉलेज थे, आर्ट्स कॉलेज था और एक केआरजी कॉलेज। केआरजी कॉलेज में डिग्री थी और आर्ट्स कॉलेज में डिप्लोमा था। तो मेरे ही जो गुरु थे उन्होंने बोला तुम आर्ट्स कॉलेज भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि उस समय ये बंदिश नहीं थी। तो सुबह 7 बजे से आर्ट्स कॉलेज जाती थी मैं, वहाँ से 11-12 बजे जैसी फ्री होती थी तो डायरेक्ट के अर्जी चली जाती थी। और मैं ही नहीं, मेरी और भी 2-3 सहेलियाँ थी हम लोग मिलकर। तो वो दोनों जगह से जो हम कर रहे थे तो एक अलग भावना मन के अंदर पैदा हो रही थी कि हम एक बड़े आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं। हालांकि ये आज तक भी मैं नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनी, लेकिन हाँ वो जो एक आत्मविश्वास पैदा हुआ कि आर्ट्स कॉलेज में भी हमने पढ़ा और बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे, हमारे टीचर्स ने कभी हमको ऐसा नहीं कहा। क्योंकि उस समय जो पढ़ते पढ़ते कालिदास अकादमी जो उज्जैन की है वहाँ हम लोग पेंटिंग्स भेजने लगे थे, हमारी पेंटिंग सिलेक्ट होने लगी थी, तो सर भी हमें प्रोत्साहन देते थे। और केआरजी में तो चूंकि केवल चित्रकला नहीं था और भी विषय थे तो उनको भी पढ़ रही थी, वहाँ भी चूंकि टॉपर्स में थी तो वहाँ भी किसी टीचर को कभी प्रॉब्लम नहीं हुई कि तुम दो कॉलेज में क्यों पढ़ रही। तो इस तरह से वो चलता रहा, वो सहज भाव से चला जी। उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुई।
1: और चित्रकार ही क्यों, किसी भी कलाकार के लिए मुझे लगता है कि आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास दो बहुत बड़ी पूंजी होते हैं, जो उसके लिए किसी वैलिडेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। और यदि ये हम ईमानदारी से अपने भीतर महसूस करते हैं तो आगे बढ़ने की प्रेरणा या जरिए या माध्यम हमें यूं भी मिलते चले जाते हैं। उस दौर में जब आप ये सब काम कर रही थी, सीख रही थी, पढ़ रही थी, पेंटिंग्स अपनी बना रही थी, तो वो कौन सा वर्ष था और उस समय आपने अपने उस क्षेत्र की क्या किसी खास चीज़ों को भी उकेरा अपने चित्रों में?
0: जी जी हाँ, ये 71 में मैं आई थी इस कॉलेज में, शायद आर्ट्स कॉलेज में पहला टर्निंग पॉइंट था मेरा
1: जी।
0: क्योंकि घर में माँ बनाती थी दीवारों पर चित्र पूजा से संबंधित, नौमी बनती थी हमारा, नागपंचमी पे बनता था, दिवाली पर ज्योति बनती थी, तो वो जो चित्र बनाती थी तो वो मुझे बड़े प्रभावित करते थे कि वो सिर्फ ऐसी आड़ी टेढ़ी रेखाएं और उसमें आदमी नहीं पहचान पाएगा, लेकिन हम उसमें पहचान रहे हैं कि हाँ ये लक्ष्मी जी हैं, तो ये कृष्ण जी हैं, तो ये राम हैं, तो इस तरह के वो चित्र बनाती थी, तो वो चित्र मुझे बहुत प्रभावित करते थे। तो मैंने आर्ट्स कॉलेज में, हमारा एक विषय हुआ करता था कॉम्पोजिशन, उसमें मैंने एक विषय में उन चित्रों को लेके एक पेंटिंग बनाई
1: जी।
0: तो वहाँ हमारे एक सर थे दुर्गा प्रसाद शर्मा जी, जो हमें ये कॉम्पोजिशन और सिखाते थे
1: जी।
0: उन्होंने जब उसको देखा तो बोले तुमने ये कहाँ से सीखा? मैंने कहा माँ बनाती हैं घर में, तो बोले तुम इसको और आगे बढ़ाओ
1: जी।
0: और उन्होंने मुझे कई जगह उसमें नई चीज़ें ऐड करवाई और उस तरह से मैंने वो पेंटिंग बना। बाद में पता चला कि ये लोक कला है, लोक कला है और इस कला को मैंने अब वर्तमान में मैं उसी पर काम कर रही हूँ। और वो जो वहाँ से बढ़ना शुरू हुआ, तो वो जो पेंटिंग्स बनाई उन्हीं को मैंने बनाकर बड़े चित्र फिर कालिदास अकादमी में भेजे। अच्छा। और वहाँ से वो पुरस्कृत हुए।
1: तो आपके फाइन आर्ट में जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी या ग्रेजुएशन जब कर रही थी, तो इसमें बहुत विस्तृत पाठ्यक्रम होता है।

0: लेकिन उसमें कौन सा विषय या कौन सी चीज ऐसी थी जिसकी तरफ आपका सबसे ज्यादा रुझान था या जो आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी?
1: विषय तो सच में कई होते हैं, लैंडस्केप भी है, पोर्ट्रेट भी है, लाइफ भी होती है, फुल लाइफ भी, पर मेरे को ये कॉम्पोजिशन ही ज़्यादा पसंद था, जो एक विषय के ऊपर एक चित्र बनाना। तो उस विषय को जब अपन, विषय तो एक छोटा सा बोलते हैं कि यह विषय है, लेकिन जब उस विषय को अपन चित्र में बनाने बैठते हैं, विस्तार देते हैं, तो उससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। जैसे हम बोलते हैं कि गाँव का चित्र है, लेकिन गाँव में कितनी चीज़ें, झोपड़ी भी है, मकान भी है, नदी भी है, पेड़ भी है, जानवर भी है, सब कुछ है। तो उसी तरह से कोई कॉम्पोजिशन में जब एक विषय पर हम चित्र बनाते हैं तो वो चित्र बहुत विस्तार लिए होता है, तो मुझे उनको बनाना बहुत अच्छा लगता था।
0: शायद यही वजह रही कि आपकी एक मांडना पर बहुत चर्चित पुस्तक भी आई है
1: जी।
0: ये किस चीज से संबद्ध है और क्या है, हम जानना
1: चाहेंगे आपसे। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बीज अंकुरित हो गया था मेरा कॉलेज लाइफ में, जो शर्मा सर ने मेरे को कर दिया था, और उसी पर फिर मैं चित्र बनाती गई
0: जी।
1: वो समय के साथ साथ वो चित्र रूप बदलते गए, मतलब जैसे उन्होंने मुझे ये प्रेरित किया था कि हमेशा आगे बढ़ना, पीछे मत हटना, लेकिन उसमें सबसे बड़ी शर्त थी कि लोक कला को आप विकृत नहीं करेंगे, मतलब उसका मूल रूप रहने देना है। तो उस मूल रूप के साथ मुझे चित्र बनाने थे
0: जी।
1: तो वो मूल रूप के साथ जब चित्र बनाती थी तो समय बहुत लगता था मुझे, लेकिन मैंने इन पे चित्र बनाना कभी नहीं छोड़ा। हालांकि बहुत साल मेरे बीच के ऐसे भी थे, शादी हुई और हम लोग चूंकि कोल इंडिया लिमिटेड में थे मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों को बहुत दूरस्थ जगहों में रहना पड़ता था जहाँ दुकानें भी नहीं होती थी, सामान नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी जैसा भी मौका मिलता था तो मैं लाके चित्र बनाती थी। और दूसरा, कालिदास अकादमी में भेजना भी नहीं छोड़ा, जैसा भी मेरे से बनता था मैं करती थी, और मैं लगातार वहाँ कई सालों तक भेजी, हालांकि बाद में बंद हुआ वो। तो वो जो चित्र मैं बनाती रही
0: जी,
1: वो चित्र दूसरे रूप में तब विकसित हुए जब मैं शादी के बाद राजगढ़ पहुंची। राजगढ़ मेरी ससुराल है, और वहाँ मैंने देखा कि मेरी सासू माँ, मेरी माता जी, जमीन पर बहुत सुंदर मांडने बनाती थी, मतलब विस्तार लिए हुए बड़े बड़े मांडने। तो मैं तो चकित रह गई क्योंकि ये मैंने कभी देखा ही नहीं था। दीवार पर चित्र वहाँ भी बनते थे, माँ भी बनाती थी, लेकिन राजगढ़ में बनाए जाने वाले मांडने और वो चित्र, ये कला कहलाती है मालवी लोक कला। ग्वालियर में वो मालवी लोक कला नहीं है। तो ये जो माता जी के जब बनाए हुए मैंने मांडने देखे और दीवार पर बनाए हुए चित्र देखे, तब फिर मेरी दिशा फिर बदली।
0: अच्छा,
1: मैं जो वो चित्र बना रही थी उन चित्रों में अब मैंने मांडनों को जोड़ दिया। और ये मांडना जो होता है कि जमीन पर गोबर से लीप कर और उसके ऊपर छुई मिट्टी से, वो भी हाथ से बनाया जाता है, हाथ में रुई, या पहले तो बोलते हैं कि बालों का गुच्छा लेके महिलाएं उससे बनाती थी, पर रुई से या कपड़ा लेके उससे बनाती थी। तो धीरे धीरे धीरे समय जैसे जैसे बदलता गया, मैंने ये भी देखा कि एक तो माता जी और माता जी की उम्र की लोग उम्र दराज जब होते गए तो उनसे वो बनना बंद हुए, दूसरी जो नई पीढ़ी आई, नई पीढ़ी वो मेहनत नहीं करना चाहती थी, और विकास के नाम पर जमीन जो है वो पक्की होती चली गई, वो कच्ची मिट्टी खत्म होती गई, वहाँ पर सीमेंट के और मार्बल या ये टाइल्स लगने लगे, दीवारों पर जो चित्र बनते थे वो चित्र भी कम हुए, और कम होने के बाद में तो मैंने देखा कि यंग जनरेशन बोलती है, जो हमारे बुजुर्ग थे उनसे, कि आप तो हमें कागज पर बना के दे दो, हम दीवार पर लगा लेंगे और पूजा कर लेंगे, क्योंकि वो दीवार नहीं खराब करना चाहते। और ये सबसे बड़ा दुख का कारण था कि जो हमारी लोक विरासत है, जो हमारी लोक कला है, वो खत्म हो रही थी। तब यहाँ से मैंने दूसरा काम शुरू किया
0: जी।
1: मैंने कोशिश की कि जो मांडना और जो दीवार पर बनाए हुए चित्र हैं जो खत्म हो रहे हैं उनको एकत्रित किया जाए, संग्रहित किया जाए
0: जी।
1: क्योंकि वो हमारी एक धरोहर है। लोक कला वहां से है जहाँ इंसान बोलना भी नहीं जानता
0: जी,
1: था
0: जी।
1: तब वो चित्रों के माध्यम से अपने भावनाओं को बताता था। तो वही चित्र धीरे धीरे धर्म के साथ जुड़ते गए, पूजा पाठ से जुड़ते गए, और वो हर विषय को लेकर एक चित्र दीवार पर बनाया जाता था। तो उस तरह के वो चित्र मैंने एकत्रित किए
0: जी।
1: हालांकि बहुत आसान नहीं था,
0: निश्चित रूप से
1: जी, लेकिन धीरे धीरे ये काम किया
0: और उसे फिर पुस्तक का रूप दे दिया।
1: हाँ, पुस्तक का रूप देने में बहुत समय लगा, 25 साल तो मेरे को लगे चित्र एकत्रित करने में।
0: अच्छा, अच्छा।
1: क्योंकि राजगढ़ में जो चित्र बनते थे वहां से आगे बढ़ो तो नरसिंहगढ़ में उनका रूप बदल जाता था, और आगे बढ़ो तो काकरवाल, पचोर, जितनी जगमंडावर, जहां मैं जाती थी वहां थोड़ा बहुत चेंज हो जाता था। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं हर जगह जाऊं, पहले

0: हर जगह जाऊं। अच्छा, जब अपन किसी चीज के पीछे गहन अध्ययन करते हैं तो मुझे ये भी लगा कि ये चित्र केवल चित्र नहीं है, ये तो पूरी एक कहानी है। मतलब हर चित्र के पीछे किसी ना किसी त्योहार का वो जुड़ा हुआ था। जैसे राखी पर जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा, संक्रांत पे जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा, क्योंकि संक्रांत में सबको तोहफे दिए जाते हैं, गिफ्ट दी जाती है ना। होली पर जो मांडना बनेगा वो अलग बनेगा, उनके पर्टिकुलर नाम थे उस तरह से बनते थे। दीवाल पर जो चित्र बनेंगे वो भी हर त्योहार के अलग चित्र बनते थे। तो फिर मुझे चैत्र से लेके वैशाख तक के, फिर मैंने वहाँ से शुरू किया कि चैत्र में कौन कौन से त्योहार आते हैं, उन त्योहार में कौन सा मांडना बनता है, जमीन पर क्या बनता है और दीवाल पर क्या बनता है।
1: अच्छा,
0: तो इस तरह पूरे 12 महीने के जब मैंने एकत्रित किए तो मेरे पास अच्छा खासा एक संग्रह हो गया। फिर मुझे लगा कि अब इसका मैं क्या करूँ। तो एक दिन मेरी मुलाकात हुई महेश श्रीवास्तव जी से, जो यहाँ के विख्यात पत्रकार हैं, हमारे आदरणीय हैं। तो उनको मैंने अपनी फाइल दिखाई तो बोले, अरे तुमने इतना काम किया है मालवा पे, तुम इसकी किताब छपवाओ। तो मैंने कहा किताब इतनी बड़ी मेरे बस की बात नहीं है
1: जी।
0: तो बोले तुम मानव संग्रहालय जाओ।
1: अच्छा,
0: इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय जाओ। और उन्होंने मुझे वहाँ पर अरुण श्रीवास्तव जी थे उनसे मिलने को कहा
1: जी।
0: मैं मानव संग्रहालय गई, अरुण जी से मिली। तो किस्मत कहते हैं इसको सारी, कि एक भगवान जो रास्ता दिखाता है। तो महेश जी ने जब बोला और मैं वहाँ पहुँची तो अरुण जी फाइल देख के वो भी चकित रह गए, बोले चलिए डायरेक्टर साहब से मिलाते हैं आपको। सरित चौधरी जी डायरेक्टर थे, वो उसी समय मेरे को वहाँ ले गए। सरित जी ने फाइल देखी तो वो भी बोले कि ये तो आपने बहुत अद्भुत काम किया हुआ है। तो बोले आप एक काम करिए, कल हमारी मीटिंग है।
1: अच्छा,
0: जिसमें हम लोग जो प्रकाशन होता है उस पर निर्णय लेते हैं, आप मुझे इसका एक पांडुलिपि बना के दीजिए।
1: अच्छा,
0: तो वो पूरा दिन मैंने उनकी फोटोकॉपी करवा के वो पांडुलिपि बनाई, दूसरे दिन जाके उनको दी। और तीसरे या चौथे दिन मेरे को फोन आ गया कि इसको तो हम छापेंगे और ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय से प्रकाशित होगी, आप इसमें जो भी काम कर सकते हैं पूरा करिए, हमारी टीम आपके साथ रहेगी
1: जी।
0: और मुझे लगा कि मेरी मेहनत सफल।
1: बिल्कुल, ये सिर्फ मेहनत के सार्थक होने का ही समय नहीं था बल्कि बहुत गौरव की भी बात थी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय उस मेहनत को, उस प्रयास को एक बहुत बड़ा सम्मान दे रहा था। जब किताब की बात आई है तो हम आपसे ये भी जानना ज़रूर चाहेंगे कि एक बहुत विस्तृत विषय में डूब कर जब अपन काम करते हैं तो दूसरे विषय की तरफ या दूसरी दिशा की तरफ, दूसरे आयाम की तरफ देख पाना बहुत आसान तो नहीं होता। फिर लेखन की तरफ कैसे आप लगातार काम करती रहें लेखन को लेकर भी?
0: ये बात सही है कि हम एक साथ दो नाव में सवारी नहीं कर सकते। जिस समय मांडना की बुक बन रही थी, किताब का पूरा काम चल रहा, तो करीबन एक साल चला वो काम। तो लेखन एक्चुअली क्या है, लेखन कहीं भी नहीं किया जा सकता, कभी भी नहीं किया जा सकता। ये मन के अंदर से जब तक वो भाव आपके अंदर नहीं आएंगे, और ये भाव तब आते हैं जब आप या तो बहुत ज़्यादा अवसाद में हो, दुखी हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया हो, या वो मौसम बहुत खूबसूरत हो, आप ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ प्रकृति अपना पूरा सौंदर्य दिखा रही है आपको, ऐसे बहुत सारी जगह होती हैं या बहुत सारे कारण होते हैं तब आप लिखते हैं। तो ऐसा नहीं कि लेखन रुका, ऐसे अवसर बहुत आए कि जब मन दुखी हुआ या मन ने कुछ और सोचा, और ऐसा नहीं कि दुख होता तभी हम लिखते हैं, हम खुश होते हैं तब भी लिखते हैं। तो मन को हल्का करने का एक साधन है लेखन। तो ये जो लेखन है, ये डायरी मैं बचपन से ही लिखती हूँ, तो ये सारा लेखन उसके साथ साथ चलता रहा। बस ये बात अलग है कि उस लेखन को एक दिशा देने का काम उस समय नहीं हुआ जिस समय यह किताब छप रही थी, क्योंकि कोई भी लेखन जब तक उसको 25 बार पढ़ा ना जाए, जब तक मांझा नहीं जाए, तब तक वो एक कविता पूर्ण रूप नहीं लेती है। तो वो लिखता गया लेकिन वो सामने बाद में आया।
1: यानी बीज मन के भीतर पड़ा हुआ था, लगातार उसको अनुकूल मौसम मिल रहे थे,
0: बिल्कुल,
1: वो
0: बिल्कुल।
1: पुष्पित पल्लवित अपने समय से हुआ और उसकी खुशबू हम सब तक पहुंची। हम चाहेंगे कि आपकी कविताओं की कुछ खुशबू क्यों ना हमारे सुनने वालों तक भी पहुंचे। यदि कोई एक वानगी आप पेश करेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा।
0: शुक्रिया। मैंने जैसे पहले बताया कि मैं प्रकृति से बहुत प्रभावित रहती हूँ, मेरी रचनाएं भी प्रकृति से ही जुड़ी हुई हैं। सारी हवा, बादल, चांद, सूरज सब मेरे रचनाओं में है। और एक छोटी सी कविता आपको सुनाती हूँ
1: जी।
0: ये कविता भी आप सिर्फ एक कल्पना कर सकते हैं कि जो प्रकृति है वही इंसान है, जो भाव इंसान के होते हैं वही प्रकृति में दूसरे तरीके से आते हैं। तो ये कविता का शीर्षक

0: ठीक है, हवा और बादल
1: जी,
0: कि हवा और बादल में दोस्ती बड़ी थी, हवा और बादल में दोस्ती बड़ी थी और हवा कब से बादल के पीछे पड़ी थी कि संग संग हमारे हमेशा ही रहना, धरा पर कहीं भी जरा ना बरसना।
1: अच्छा,
0: समंदर से उठकर आया था बादल और हवा संग नभ पर छाया था बादल।
1: वाह,
0: हवा ये समझती कि उसका है बादल और बादल का कहना कि जग का है बादल।
1: ओहो
0: बादल ने देखी थी कमजोर काया, वो पिंजर से बेलों के नीचे की छाया, हल्को संभाले वो नजरें गड़ाए, तकता था नभ को कि बादल कब आए।
1: वाह,
0: करोड़ों की आशाएं बादल पे ठहरी कि बरसेगी बरसेगी अब जल लहरी, करोड़ों की आशाएं बादल पे ठहरी कि बरसेगी बरसेगी अब जल लहरी, बादल के आंसू छलकने ही वाले कि हवाओं ने तोड़े बंधन के ताले। जाओ रे मेघा, जाओ रे मेघा, तुम जम के बरसो, न खुद को जलाओ न यूं आज तरसो, जो तुम जम के बरसे तो भीगेगा कण कण, भीगेगी धरती और भीगेगा तन मन, भीगेंगी शाखें वो पत्ते वो डाली, हरी होगी धरती और झूमेगी बाली, उतर कर पहाड़ों से नदियां बहेंगी।
1: वाह,
0: उतर कर पहाड़ों से नदियां बहेंगी, धरा भी हरी हो के सबसे कहेगी कि बरसी है जम के, कि बरसी है जम के नहीं रुकने वाली, हवा और बादल की जोड़ी निराली।
1: वाह वाह, बहुत खूब। हम उम्मीद करते हैं कि ये कविता सभी सुनने वालों को बहुत बहुत पसंद आई होगी, और हम ये चाहेंगे कि कला की, सृजन की और आपके मन की जोड़ी भी यूं ही बरकरार रहे और कुछ बेहतर सृजन हम सब तक पहुंचते रहें। जब भी कला की बात होती है, हम आसपास की या हमारे पृष्ठभूमि की बात करना नहीं भूलते हैं, क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि जितना हमें देती है उतना हमसे मांगती भी है
0: जी।
1: तो घर परिवार में जब तक माता पिता के घर से एक अलग तरह का माहौल होता है, शादी के बाद अपने पति के साथ, जैसा आपने कहा कि कोयले खदानों की, कोल माइंस के उधर उनका काम था, वहाँ फिर उनका काम भी बहुत अलग तरह का था, वो एक ख्यात चिकित्सक हैं, तो इन सारे पड़ाव को आपने किस तरह पार किया या किस तरह महसूस किया?
0: मेरा मानना है कि समय के साथ आपको चलना चाहिए तो आपको तकलीफ नहीं होती।
1: जी,
0: ग्वालियर जैसे शहर से निकलकर मैं राजगढ़ जैसी जगह पर जब आई जो एक गांव से थोड़ा ऊपर था, तो वहाँ ये नहीं लगा मुझे कि मैं ऐसी जगह पर आई हूँ एक शहर से। वहाँ भी मैंने मांडना पर काम किया, मतलब मैं उस रूप में ढल गई
1: जी।
0: और जहाँ हम जब कोयला खदानों में पहुँचे, जहाँ पर मतलब आप सोचिए कि दूर दूर तक सिर्फ खदानें होती हैं, जंगल भी कम होते हैं, नए पौधे होते हैं, और वहाँ शहर जाने के लिए आपको कम से कम आधा घंटा दूरी पर है, घर आने के लिए आपको कम से कम 4 ट्रेन बदलनी होती थी उस समय।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उस समय बड़ी ट्रेनें नहीं चलती थी
1: जी, जी।
0: तो वहाँ मैंने उस वातावरण में अपने आप को ढाल लिया। वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ करने को मुझे वहाँ मिला। हम लोगों का वहाँ एक महिला मंडल हुआ करता था जो समाज सेवा के कार्य करता था, और उसके साथ मैं जुड़ गई थी यूनिसेफ से, यूनिसेफ के ग्रीटिंग कार्ड फंड रेंडिंग कैंपेन से। तो हम लोगों ने गांव-गांव में जाकर टीवी पेशेंट और कुष्ठ रोगी पेशेंट्स का एकत्रित किया। चूँकि मेरे हस्बैंड डॉक्टर थे और मेडिकल फील्ड में थे, तो उनकी सहायता से हम लोगों ने उन पेशेंट्स का इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद जरूरी ये होता है कि हम किसी को ठीक तो कर दें, लेकिन वो जीवन यापन कैसे करेगा, तो उस पे ज़्यादा हम लोगों ने ध्यान दिया। फिर उनको हमने हमारे महिला मंडल से बकरियाँ दिलाई, करघा लगवाया कि भाई आप ठीक हो गए हो, अब आप अपना कमाइए और अपना जीवन यापन कीजिए। तो इन सब कामों में बहुत आनंद आया
1: जी।
0: अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है उनको एक पौष्टिक भोजन देना। तो हम लोग एक पाउडर बनाते थे, शक्ति पाउडर, ये यूनिसेफ की तरफ से हमें सिखाया गया था। तो वो शक्ति पाउडर में प्रोटीन बराबर हो, तो गेहूं, चना, मूंगफली, सोयाबीन को मिला के हम लोगों ने एक चक्की भी डाल ली थी।
1: अच्छा,
0: महिलाओं ने उसमें पिसवाते थे हम, और उनके पैकेट बना के सुबह 5 बजे दूध के साथ हम उनको देने जाते थे।
1: अच्छा,
0: हाँ जी, भीगा हुआ चना,
1: हाँ हा।
0: वो पैकेट
1: जी,
0: एक ग्लास दूध,
1: हाँ।
0: और उन सबको वहाँ अपने सामने खिला के फिर हाँ। आते थे। तो इस तरह से ये बिलासपुर में किया। सिंगरौली में रहे तो वहाँ हम लोगों ने करघा डलवा दिया था, तो करघे पे चादरें, टॉवल ये बनती थी। तो इस तरह से जहाँ रहे वहाँ बहुत खुशी खुशी ये सारे काम किए, तब ये सब दिमाग में नहीं आया कि लिखना भी

0: है या चित्र भी बनाना है जहाँ रहे वैसे
1: काम मतलब जीवन के चित्र बन रहे थे, वो कागज पर थे, लोगों के मन में थे, उनकी स्वास्थ्य के साथ बेहतर स्वरूप में आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं सृजन तो हो रहा था अपने विविध रूपों में,
0: रूप बदल गया
1: जी। इसीलिए मुझे भी ये संशय था कि मैं आपका परिचय किस रूप में दूं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके नजदीक रहकर जानी सुनी और समझी हैं। यहाँ पर आपने जिक्र किया राजगढ़ का, नरसिंहगढ़ का, सिंगरौली का, बिलासपुर का, कोल माइंस जहाँ जहाँ है लगभग मुझे लगता है वो सारा एरिया देखा होगा। ग्वालियर आपका घर था, भोपाल से नाता कैसे जुड़ा?
0: ये भी एक प्रारब्ध कहते हैं ना, भगवान जो एक आपकी किस्मत का लिखता है हम लोग नहीं जानते। ये मेरे हस्बैंड जब रिटायर हुए तब हम लोग धनबाद में थे, धनबाद का जो कोल माइंस और वो सबसे कठिन माना जाता है
1: जी,
0: वहाँ से ये रिटायर हुए। चूँकि ये गांधी मेडिकल कॉलेज से पढ़े हुए हैं तो यहाँ पर कैंसर हॉस्पिटल में उस समय डॉक्टर पंड्या जी थे
1: जी
0: और मदन मोहन जोशी जी थे, तो उन्होंने कभी इनको बोला होगा या परिचय इनका था तो उन्होंने बोला कि तुम आफ्टर रिटायरमेंट यहाँ आके ज्वाइन करोगे। तो बस रिटायरमेंट के तीसरे दिन हम लोग भोपाल में थे, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था, भोपाल आ गए। भोपाल की गली सड़कें मैं कुछ भी नहीं जानती थी। फिर मेरा ये नया दौर शुरू हुआ कि मैंने भोपाल को पहचानना शुरू किया, तो धीरे धीरे भोपाल से जो परिचित हुई
1: जी,
0: फिर मुझे मिल गया यहाँ हिंदी लेखिका संघ। हिंदी लेखिका संघ ने फिर मुझे एक नई दिशा दी, जहाँ मेरा परिचय हुआ भोपाल की जो बड़ी शख्सियत हैं जिनको विश्व पूरा जानता है, ऐसी लेखिकाओं को, मालती जोशी जी, मैरुनिसा परवेज जी, तो उनके साथ जब मैं जुड़ी तो मेरा लेखन नेचुरली बहुत अलग तरह से प्रभावित हुआ और मैंने लिखना शुरू किया। जो पहली पुस्तक मेरी आई 2009 में कविताओं की
1: जी,
0: और 2011 में उसको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल गया
1: जी,
0: तो ये ईश्वर की कृपा मानती हूँ मैं। और दूसरी पुस्तक मेरी आई 2016 में जिसको 2017 में साहित्य अकादमी का अखिल भारतीय पुरस्कार मिला
1: जी,
0: तो ये भोपाल की ही देन मानती हूँ मैं कि यहाँ आके मैं एक साहित्यिक संसार से मेरा परिचय हुआ और चित्र भी चलते रहे, मांडना भी हुआ। मांडना की पुस्तक आई मेरी जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ने प्रकाशित की और ये कविताओं की पुस्तक भी आई, तो दोनों तरह से काम करती रही।
1: तो हमारा ये भोपाल आपको यूं ही फलता रहे, आप हमारे भोपाल को अपने चित्रकला, साहित्य और सेवा से समृद्ध करती रहें। बहुत विस्तार है इस विषय में और उसके हर आयाम पे सीमित समय में बात कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमें ऐसा लगता है कि आज की इस बातचीत को तो हम यहाँ विराम देते हैं, लेकिन जल्दी ही फिर कोशिश करेंगे कि आपके मांडने पर विस्तार से बात की जाए और उसके उस मर्म को समझने की कोशिश की जाए कि वो चित्र क्या बोलते हैं और कैसे वो हमें अपनी ओर बुला लेते
0: हैं। आपकी बात बहुत बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मांडना में इतना कुछ है बताने के लिए और बहुत ज़रूरी है सबको बताने के लिए कि वर्तमान में हम जितना ये पर्यावरण और इन चीज़ों कर रहे हैं तो हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज उसको पहले कितना सोच चुके हैं। मतलब उसमें आपको पेड़ पौधे, धरती, आकाश, वायु सबके लिए है, हमारे जो पंच तत्व हैं उन पंच तत्वों का पूरा उसमें समावेश है
1: जी।
0: और इसलिए ये लोक कला जो है ना, जो बनी वो शायद इसी से प्रेरित होकर बनी, पर आज हम उसको भूल रहे हैं, तो उसको वापस में उतना ही संग्रहित करके उसका प्रदर्शन होना चाहिए, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए
1: जी।
0: तो ये मेरा प्रयास है, अभी चल रहा है।
1: आपका प्रयास निर्बाध आगे बढ़ता रहे, लेकिन हमारी और सभी सुनने वालों की तरफ से ये आग्रह जरूर करना चाहूंगी कि कलाओं का ये प्रदर्शन आपकी तरफ से भी हो, यदि तो हम सब लाभान्वित होंगे, उन्हें देख पाएंगे, समझ पाएंगे। और फिर आपसे एक मुलाकात का वादा है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम इनसे मिलिए मैं, अब हम आपसे और सभी सुनने वालों से इजाजत चाहते हैं। नमस्कार
0: जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कार्यक्रम इनसे मिलिए में अभी आप सुन रहे थे चित्रकार एवं बाल साहित्यकार श्रीमती अनीता सक्सेना से अमिता त्रिवेदी की बातचीत।

डीटीएच के ऑडियो चैनल पर यह आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं रेडियो धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां भाग।

0: धारावाहिक भुवन मोहिनी की अब तक की कड़ियों में आपने जाना कि राजकुमार विजय श्रवा से प्रेम करने के कारण धारा नगरी के राजा द्युम्न सेन ने नर्तकी भुवन मोहिनी को देश निकाला दे दिया था। कुछ दिनों बाद भुवन मोहिनी की तलाश में राजकुमार इंद्रप्रस्थ पहुंच गया, जहां की राजा आदित्य सेन के यहाँ भुवन मोहिनी आश्रय में थी। आदित्य सेन अपनी पुत्री का विवाह विजय श्रवा से कराना चाहता था। चंद्रहासिनी की ओर आकर्षित होने के बावजूद विजय श्रवा भुवन मोहिनी से ही प्रेम करता था। चंद्रहासिनी ये जानकर भी विवाह करने को तैयार थी। इंद्रप्रस्थ के मेले में विजय श्रवा के पिता सम्राट द्युम्न सेन ने सभी भारतीय खंड राज्यों की सभा बुलाई, जिसमें हूणों से लड़ने के लिए भारतीय सेनापति के रूप में विजय श्रवा का चयन हुआ। धारा की सभा में हूणों के अपमानजनक प्रस्ताव को पढ़ा गया। आमात्य ऋषभ देव ने कहा कि युद्ध टालने के लिए चंद्रहासिनी को समर्पित कर दिया जाए। ये सुनकर भुवन मोहिनी ने क्रोध में आकर ऋषभ देव का सिर काट दिया। उसके इस कार्य की सर्वत्र प्रशंसा हुई। राजकुमार के सेनापतित्व में हूणों से युद्ध हुआ, जिसमें भारतीय सेना विजयी हुई। विजय के बाद विजय श्रवा ने चंद्रहासिनी से विवाह किया और वो सम्राट बना। अब आगे क्या होता है, सुनिए धारावाहिक भुवन मोहिनी की 9वीं कड़ी में।
1: चंद्रहासिनी के साथ मेरा विवाह संपन्न हो गया। धारा नगरी लौटकर सम्राट ने स्वयं संन्यास ले लिया और मुझे सम्राट की गद्दी सौंप दी। आज मेरे पास सब कुछ है। भारत समस्त खंड राज्यों के नरेशों का एक सुदृढ़ संघ बन चुका है और मैं भारत का सम्राट हूं। सत्ता और शक्ति की अविरल धारा बहने लगी है, परंतु फिर भी एक रिक्तता है। भुवन मोहिनी चंद्रहासिनी को साम्राज्ञी बनवाकर राष्ट्र की सुप्त नारियों को जगाने के कार्य में संलग्न हो गई। स्वप्रेरणा से या मुझसे दूर जाने के लिए, नहीं जानता। यद्यपि मैं प्रजा के हितार्थ कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मेरी आंखें सदैव भुवन मोहिनी को ही खोजती रहती हैं। प्रत्येक क्षण लगता है कि वो द्वार पर आकर खड़ी हुई है और कहती है,
2: आपने याद किया सम्राट विजय श्रवा?
1: इस ध्वनि को सुनने के लिए मैं तड़प रहा हूं। कब आओगी भुवन मोहिनी, तुम कब आओगी मुझसे मिलने?
2: मैं आपके ही कक्ष में हूं देव।
1: आहा, भुवन मोहिनी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरे कक्ष में मेरे सामने हो। ना जाने कितने दूत मैंने तुम्हें खोजने के लिए भेजे, सब लौट कर यही बताते रहे कि तुम नहीं मिली। क्यों क्यों भुवन मोहिनी,

0: तुम मुझे भूलकर मुझसे इतनी दूर कैसे चली गई? क्यों चली गई? वो तुम ही हो ना जिसने राजकुमारी चंद्रहासिनी को मेरे जीवन में बलात् प्रवेश कराने की अनवरत चेष्टा की? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमको खोना होगा। मैं दृष्टि फाड़ फाड़ कर सूने पथ पर तुम्हारे बढ़ते चले आने वाले महायान की प्रतीक्षा करता रहता हूं। अपने अंतर की उस विवश आकुलता को दबाकर, किंतु जब तुम्हें नहीं देख पाता तब एक पश्चातापपूर्ण भावना जीवन में घुलकर कहती है, सब व्यर्थ है, मेरे जीवन के कर्म सब व्यर्थ हैं, मेरी दहकती हुई वक्ष भूमि ज्वालामुखी का उद्गार बन जाती है।
1: सम्राट, जिस तरह से आप अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हो चुके हैं, वैसे ही मैंने भी अपने जीवन का उद्देश्य निश्चित कर लिया है।
0: बिना मेरी आज्ञा के?
1: सर्व कल्याण के लिए आप जैसे कल्याणकारी सम्राट की आज्ञा आवश्यक नहीं है सम्राट।
0: मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं चाहता भुवन मोहिनी।
1: आपकी उद्विग्नता साम्राज्य की निकटता समाप्त कर देगी सम्राट। आप उन्हें अवसर तो दें। चंद्रहासिनी आपकी पूजा करती हैं, आपको देवों से भी बढ़कर मानती हैं। मेरा क्या है, मुझे आपकी दया ने एक नर्तकी से राष्ट्रभक्त नारी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। मेरे लिए यही आशातीत है। इससे अधिक की ना तो मुझे कोई अभिलाषा है और ना ही कामना। मुझे आज्ञा दें सम्राट, मेरे सामने बहुत कार्य हैं। आपसे प्रार्थना है कि बिना किसी प्रयोजन के मुझे ना बुलवाया करें। प्रणाम
0: भुवन मोहिनी।

क्या भुवन मोहिनी को सम्राट ने बुलवाया था? मेरी प्रियतम, क्या मैं अपना समस्त प्रेम दान देकर भी उस आग की ज्वलनशीलता को कम नहीं कर पाई जिसे भुवन मोहिनी की स्मृति ने दहका रखा है? आह स्वामी, मैंने भूल की है। मैंने अपने सुख के लिए आपके और भुवन मोहिनी के जीवन की होली जला दी है।

0: अरे देखिए ना, ये नन्हे कुंवर के गालों पर ये लाल लाल क्या हो गया है?
1: छोटे बच्चों को ऐसा हो जाया करता है साम्राज्ञी, इसमें परेशान मत हो।
0: अरे अरे रे रे रे, चुप हो जा मेरा बच्चा, चुप हो जा। अरे नहीं, चुप हो जा बेटे।
1: आज भुवन मोहिनी आ रही है।
0: अच्छा,
1: हाँ, मैंने बुलवाया है, आती ही होगी। 5 वर्ष बाद आज उसके दर्शन होंगे।
0: मैं भी अपनी सखी को देखने के लिए आकुल हूं सम्राट।
2: सम्राट की जय हो।
1: अरे भुवन मोहिनी, आओ, तुम्हारी ही चर्चा। कितना परिवर्तन हो गया है तुम में, तुम तो साक्षात योगिनी बन चुकी हो।
2: अरे कितना नन्हा देवोपम, कोमलता का प्रतिरूप। बधाई हो बहन चंद्रहासिनी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए।
0: अरे छोड़ो सखी, इतना ही दुलार था तो पुत्र जन्मोत्सव में क्यों नहीं आई?
2: मेरा रोम रोम इन्हें आशीर्वाद दे रहा था, परंतु मैं अपने कार्यों में इतनी व्यस्त रही कि समय ही नहीं निकाल सकी। मेरी त्रुटि को क्षमा करना बहन। आ आ हाँ, मेरे पास आएंगे, आइए ना।

0: दो ना बहन।
1: हाँ हाँ ये लो जा, तू भी भुवन मोहिनी की गोद में ही रहा कर। ना जाने कब से तेरे पिता इनके नाम की माला जपते रहे हैं, अब तू भी पिता की भांति मेरा तिरस्कार कर।
2: साम्राज्ञी,
0: ऐसा ऐसा मत कहो बहन। सुना भुवन मोहिनी, ये वही राजकुमारी है जिसको सुखी बनाने के लिए तूने अपनी प्रेम आकांक्षाओं को होम कर दिया। फिर भी राजकुमारी तेरी प्रति कृतज्ञ नहीं है।
1: लाओ मुझे दो, मेरा कुमार है, कहीं इसे भी तुम्हारी गोद की आदत ना पड़ जाए। चलेगा दूध पीने? चल तुझे दूध पिला दूं। मैं तेरी माँ हूं सम्राट पुत्र। मैं तेरी माँ हूं। आ चल।
2: क्षमा मांग सकता हूं तुमसे भुवन मोहिनी?
0: कुछ मत बोलिए आप, बहुत कड़वी घूंट पी चुकी हूं, अब इनका प्रभाव नहीं पड़ता। सम्राट अभी तीर्थाटन पर गई थी।
2: कभी अपनी तूलिका से तुम्हारा चित्र बनाया था।
0: नारी सेवा के काम में लग गई हूं।
2: निर्वासित होते समय तुम्हारा वो मुखड़ा अभी भी मुझे याद है।
0: मैंने मैंने अब तक 8 आश्रम आरंभ करा दिए हैं सम्राट।
2: भुवन, कहीं नहीं जाना है तुम्हें।
0: क्यों?
2: इसलिए कि राजकाज से अवकाश मिलने पर जब कभी तुम्हारी पागल स्मृति कौंधती है, तब मेरा हृदय चीत्कार कर उठता है और कहता है, क्या इसीलिए तुमने मुझे विवश करके चंद्रहासिनी को स्वीकार करने की प्रेरणा दी थी कि तुम मुझसे विलग रहो?
0: तो इसमें बुराई क्या है मेरी सम्राट? आपके दाम्पत्य जीवन में मेरी उपस्थिति सर्वदा बाधक होती और हमारी सम्माननीय साम्राज्ञी समझती कि मैं उनके सरस जीवन में अपनी उपस्थिति से विष घोल रही हूं। आज मुझे संतोष है कि निरंतर 5 वर्षों तक आपसे दूर रहकर मैंने अपने को अपराधिनी बनने से बचा लिया है।
1: ये झूठ है, मुझे फुसलाने का एक विषैला षड्यंत्र है।
2: चंद्रहासिनी,
0: राजकुमारी क्षमा करो, पिछले 5 वर्षों में धारानगरी में मेरी उपस्थिति अधिक से अधिक मात्र 1 माह की हुई होगी। तब मैं अपने पागल मन को नहीं रोक पाती थी, सबके दर्शन के लिए 2-4 दिन रुक जाती थी। किंतु किंतु मुझे आश्चर्य हुआ सुनकर कि मैंने आप दोनों के दाम्पत्य जीवन में विष घोलने का षड्यंत्र किया। आज भी अपराधिनी सिद्ध होने पर मैं सहर्ष कठोर से कठोर दंड स्वीकार करूंगी।
1: जिसके शीश पर भारत सम्राट का वरद हस्त हो, उसे दंडित करने का अपराध कौन मोल लेगा?
0: असत्य है राजकुमारी, जिस अपराध का संदेह तुम मुझ पर आरोपित कर रही हो, उसे हृदय चीर कर दिखला सकती तो अवश्य दिखलाती कि तुम्हारे प्रियतम को अपनी ओर मिलाए रखने का मैंने कोई कुचक्र कोई षड्यंत्र नहीं रचा। हाँ, मैं सम्राट को नहीं रोक पाती कि वो अपनी ममता की धारा मुझ पर ना उड़े ले।
1: यही यही तो काटा है जिसे दूर होना चाहिए।
2: पा लिया ना तुमने भुवन मोहिनी वो परिणाम जिसके लिए मैंने तुम्हें सावधान किया था। चंद्रहासिनी आज भारत की साम्राज्ञी है, वो तुम जैसी तुच्छ नारी के प्रति कभी कृतज्ञ नहीं हो सकती। उसे वो क्षण भूल गए जब दीनहीन याचक की भांति तुम्हारे सम्मुख नेत्रों में आंसू भरे हुए प्रणयदान के लिए अपना आंचल फैलाए हुए थी। आज तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर वो मुस्कुरा रही है।
1: भुवन मोहिनी, मेरी बातें जितनी तुम्हें असहाय नहीं होंगी, उससे कहीं अधिक भारत सम्राट को दुखा रही हैं। अरे अरे मुझे क्षमा करो, कहीं इन बातों का बदला मुझसे चुकाया गया तो मैं किसका सहारा खोजूंगी? कम से कम तुम्हारा पक्ष तो भारत सम्राट ग्रहण कर रहे हैं ना भुवन मोहिनी? उन्होंने अभी अभी स्वीकारा है कि तुम्हारे दया के कारण मैं साम्राज्ञी बनी हूं। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि मैं तुम्हारी दया ना लेती? राजकुमारी होने के कारण

0: किसी न किसी राजकुमार की जीवन संगनी तो होती ही ना। किंतु ऐसा नहीं हुआ। आज सम्राट भी मुझ पर कृतज्ञता का बोझ लाद कर कह रहे हैं, यदि तुमने मेरे साथ सदैव व्यवहार ना किया होता तो वो संभवतः मुझे स्वीकार ना करते।
1: हाँ हाँ, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, इसमें कोई संदेह भी मत रखना चंद्रहासिनी।
0: देख लिया ना भुवन मोहनी, क्या मैंने झूठ बोला था कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से किस प्रकार हमारे दाम्पत्य जीवन में भयानक प्रहार होते हैं? कहा था ना मैंने,
2: साम्राज्ञी मैं तुमसे हाथ जोड़कर।
1: साम्राज्ञी से क्षमा याचना करके मुझे अधिक लज्जित मत करो भुवन मोहिनी। तुमने तुमने कोई अपराध नहीं किया, सारा दोष मेरा है। मैंने तुम्हारे अतुल स्नेह के प्रति भयानक अपराध किया है। मैंने ही तुम्हारे समर्पित जीवन को कुचलकर नीरस बनाया है। मैं ही तुम्हारे मरु जीवन में झंझावात पैदा करने वाला भयानक स्वार्थी और लोलुप व्यक्ति से धुआ हूं। चलो, आज से मैं अपने पूर्व पापों का प्रायश्चित करूंगा। चंद्रहासिनी साम्राज्ञी रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु मैं स्वयं सम्राट पद का परित्याग कर तुम्हारे साथ राह राह का भिखारी बनूंगा। मुझे नहीं चाहिए ऐसा उद्धत प्रेम जो हमारी दृष्टि में हमारा अपमान करने पर तुल जाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो, अंततः साम्राज्ञी भी एक नारी है, सर्वदा अवध अदंडनीय। अस्तु, मैं आज से ही साम्राज्ञी से दूर रहूंगा ताकि उन्हें किसी प्रकार हमारे प्रति क्षोभ न उत्पन्न हो। चलो भुवन मोहिनी।
2: सम्राट,
1: मैं तुमसे कुछ नहीं सुनना चाहता भुवन मोहिनी, चलो।

हम राजप्रसाद के इस खंड में रहेंगे, याद है ना? यहीं पर मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था। किशोरावस्था से लेकर सम्राट होने तक मेरा आवास यही प्रखंड था। कोलाहल से दूर एकांत में, और तुम्हें मेरी सौगंध है भुवन मोहिनी, तुम इस योगिनी स्वरूप का परित्याग करो। एक बार फिर से मुझे उस स्नेह वारुणी से उन्मत्त हो लेने दो, जिसे पीकर मेरा जीवन हरा भरा हो जाए। मैं अनुभव कर रहा हूं कि मेरे जीवन में भयानक शून्यता आ रही है, और मैं अपने को उसी नीरव शून्यता में विलीन करता जा रहा हूं। राजकुमारी चंद्रहासिनी अपने सौंदर्य मद में प्रतिपल पागल हो रही हैं, और वो समर्पण का ढोंग रचकर प्रतिक्षण मेरे समर्पण की उपेक्षा करती जा रही हैं। मैंने किसी प्रकार 5 वर्ष अपने दाम्पत्य जीवन के नाम पर व्यतीत कर डाले हैं, किंतु चंद्रहासिनी कभी भी सौंदर्योन्माद के विषैले नशे से बच नहीं सकी। वो महानता की उपासिका हैं, जबकि मैं अस्तित्वहीनता का। भुवन मोहिनी, आह, तुम्हारे स्पर्श में अभी भी वही मादकता है, वही विद्युत तरंगों से चपल भावनाओं का मायावी उन्माद, वही प्राणों में कंपन और सिहरन पैदा करने वाली प्राकृतिक वासना का स्फुरण। प्रिय, तुम्हें ये रूप राशि इसलिए नहीं प्राप्त हुई है कि मैं उसे देखकर आत्मविभोर हूं, अप्राप्य की भांति तुम्हें ना प्राप्त कर सकने की छलना में निरंतर जलता रहूं। बोलो भुवन मोहिनी, मैं चंद्रहासिनी के रूप की उत्पत्त गरिमा को बुझा दूंगा यदि तुम्हारा संबल प्राप्त हो। यदि एक बार तुम इस असमय के वैराग्य को ठुकरा सको, अन्यथा ये अतृप्त अनंत जीवन की वासना बनकर मुझे क्षुब्ध करती रहेगी, और मैं लुप्त मधुप की भांति तुम्हारे रूप की यश गाथा को मन ही मन गुनगुनाते हुए उद्भ्रांत

0: अंत बना रहूंगा। मुझे चाहिए तृप्ति, तुम्हारे अक्षय यौवन के उपभोग की पूर्ण स्वीकृति, अन्यथा मैं माननी चंद्रहासिनी के साम्राज्य को ठुकरा दूंगा। चंद्रहासिनी को चाहिए सत्ता और शक्ति, वो उसे मैं स्वेच्छा से प्रदान कर विरक्त हो जाऊंगा। आज चंद्रहासिनी की गोद में साम्राज्य के सिंहासन का प्रतिनिधि खेल रहा है, वो उसके रंग में रंगकर मुझे भूल सकती हैं और मेरी उपेक्षा भी कर सकती हैं, किंतु तुम बोलो, क्या तुम भी मेरी उपेक्षा करना चाहती हो? क्या तुम भी मेरे जीवन में मात्र छलना सिद्ध होना चाहती हो? बोलो भुवन मोहिनी, बोलो, तुम मुझसे घृणा करती हो?
1: नहीं
0: तुम मुझसे दूर भागना चाहती हो?
1: नहीं
0: क्या तुम्हें मेरी वासनात्मक वृत्तियों के प्रति रोष है?
1: नहीं
0: क्या कभी तुमने अंतर के निगूढ़तम प्रकोष्ठ में मेरी मूर्ति बिठाकर कभी पश्चाताप करना चाहा है?
1: नहीं
0: क्या कभी तुमने मेरे लिए सर्वस्व उत्सर्ग ना करने की शपथ ली है?
1: कभी नहीं।
0: तो क्या कभी मेरी आसक्ति पर तुम्हें भय या रोष उत्पन्न हुआ था?
1: कभी नहीं।
0: क्या तुम सदैव मुझे देवत्व पर प्रतिष्ठित रखने के बोझ से दबी रही हो?
1: कभी नहीं देव।
0: तो क्या कभी तुम्हें चंद्रहासिनी के जीवन संगिनी बनाने का आंतरिक क्षोभ हुआ है?
1: कभी नहीं।
0: तब मायावनी, तब सच सच कहो, मेरी छाया से ही भयभीता बनकर मुझसे दूर क्यों भागती रही हो? क्या मुझसे प्रेम करने का तुम्हारा हार्दिक उल्लास अब मर चुका है?
1: नहीं, किंतु
0: तुम्हें मेरी सौगंध है, मुझसे गोपनीय बनकर रहने की धृष्टता ना करना। मैंने तुम्हारे सम्मुख अपना अंतरपट खोल कर रख दिया है। मैं तुम्हें पाप पुण्य की भावना से विलख रख कर प्यार करता रहा हूं, और आज मैं प्यार के बदले प्यार ही चाहता हूं।
1: आप तो प्यार पा ही रहे हैं सम्राट। भुवन मोहिनी आपकी गोद में अल्लड़ बाला सी मचल जो रही है।
0: ऐसी ही बैठी रहो भुवन मोहिनी। साम्राज्ञी, तुमने मेरे एकांत में पहुंचकर भीषण अपराध किया है। सावधान, अब तुम्हें अपने किए का दंड भोगना ही पड़ेगा। देखो, नेत्रों में आग भर के देखो, आज से मेरी गोद में प्रणय लीला रचाने वाली भुवन मोहिनी पुनः प्रतिष्ठित हो चुकी है। तुमने मुझसे जो प्रणय दान चाहा था, वो भी भुवन मोहिनी का उच्छिष्ट था। भुवन मोहिनी की अनिच्छा देखकर भी मैं उसे अपने प्रेम दान से विभूषित करूंगा।
1: सम्राट,
0: भुवन मोहिनी, भुवन मोहिनी, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ भुवन मोहिनी।

हे मेरे जीवन के शत शत सहस्त्र लक्ष विद्रोह के स्फुलिंगो, तुम एक बार एकाकार होकर प्रलयंकारी महाज्वाल बनकर धधक उठो। असीम वेदनाएं, अगणित निराशाएं, तीव्र जलन और घोर हाहाकार जीवन को इतना रुला चुका है कि अब आंसू सूख गए हैं। विद्रोह प्रबल हो उठा है, हमारी रग रग में एक ज्योति जलने लगी है। जीवन चाहता है कि उसी में भस्म हो जाए, मुट्ठी भर राख के अतिरिक्त कोई अवशेष न बचे। अपने भौतिक अस्तित्व पर अभिमान करने वालों को मैं बता जाऊं कि कैसे मरना होता है। आत्महनन करके मैंने जो पुण्य कमाया था वो तो मानो आत्मछल था, वो सर्वदा अपने आप को धोखा देती रही। किंतु आज अंतर तारों से जो चीत्कार प्रतिध्वनित हो रहा है वो मानो करुणा सागर में जीवन की समाधि लगा देगा। चंद्रहासिनी के लिए मुझे अपने सुख का परित्याग करना पड़ा था, चंद्रहासिनी के लिए दान कर डाला था अपने प्रीतम प्रणय के अनंत बसंतों को। यदि यदि मैं समझ पाती कि उस प्रतिदान का परिणाम आंसुओं में जीवन को विगलित कर देना है तो क्यों अपने मिलन भरे वसंत में पतझड़ लाती। काश काश मैं ना समझती कि प्रेम की पीड़ा से छटपटाने वाली एक सुंदरी राजकुमारी ने मेरे ऋतुराज को छीनकर अपना वसंत मनाया है। आज आज मैंने चंद्रहासिनी

0: की दृष्टि में प्रेम की असहिष्णुता का दर्शन किया। वो तो मानो मेरे प्रणय की प्रतिस्पर्धिनी बनकर उग्र प्रतिकार के लिए तत्पर है। किंतु दूसरी ओर मेरे प्रियतम विजय श्रवा की आकुलता घुन सी मेरे जीवन की सुख शांति और समृद्धि को चूर चूर कर रही है। अब मेरे सामने मात्र दो रास्ते हैं। या तो मैं चंद्रहासिनी की सर्वत्र उपेक्षा करके विजय श्रवा के जीवन को मधुमेह वसंत के मादक हिलोरों से भर दूं, या अपने जीवन का अंत करके चंद्रहासिनी के लिए सर्वस्व उत्सर्ग कर जाऊं। परंतु यदि मैं उत्सर्ग करती हूं तो मेरे प्रिय का क्या होगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं देव के जीवन में सरस वसंत अनुप्राणित करने का एक बार प्रयास अवश्य करूंगी, भले ही मुझे चंद्रहासिनी की कोपाग्नि में भस्म ही क्यों ना होना पड़े।
1: कहाँ है साम्राज्ञी? साम्राज्ञी के महल के सभी दासों और परिचारिकाओं सुन लो, अब तुम्हें साम्राज्ञी की सेवा में लगे रहने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रहासिनी, मैं आज तुम्हें दंड देने आया हूं। बोलो, तुम्हें क्या दंड दिया जाए?
2: सम्राट,
1: मैं तुम्हें शारीरिक दंड न देकर मानसिक दंड दूंगा। मैंने तुम्हें साम्राज्ञी पद पर प्रतिष्ठित करके भयानक भूल की है। एक अकृतज्ञ नारी हो तुम। जाओ, आज से तुम साम्राज्ञी पद से वंचित की जा रही हो।
2: नहीं,
1: मैं आज ही आदेश देता हूं कि समस्त साम्राज्य की प्रजा तुम्हें राजकुमारी चंद्रहासिनी के नाम से संबोधित करे, ना कि साम्राज्ञी।
2: नहीं सम्राट,
1: तुम्हें मेरे राज प्रासाद को भी त्यागना होगा।
2: परंतु सम्राट,
1: तुम्हें अपने राजकुमारी होने पर गर्व है ना? तो जाओ, महाराज आदित्य सेन की लाडली बनकर इंद्रप्रस्थ के राजमहल को सुशोभित करो। तुम जैसी माननी के लिए धारा नगरी के राजप्रसाद में कोई स्थान नहीं है।
2: नहीं, सम्राट।
1: मैं इस अंतापुर की संरक्षिका को आदेश देता हूं कि 24 घंटों के अंदर चंद्रहासिनी धारा नगरी के अंतापुर का परित्याग कर दे।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आपने सुना धारावाहिक भुवन मोहिनी का 9वां एपिसोड। ये आकाशवाणी भोपाल है। हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। 188.32 मीटर्स यानी 1593 किलोहर्ट्स के साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर शाम के 5 बजने वाले हैं। अब हमारी संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत हैं इस घंटे की खास

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविंद्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने

0: एमएसएमई इकाइयों को 225 करोड़ 19 लाख और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए हैं। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। और यूएस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की देविका सहवाग और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कैलिफोर्निया के फुलटर्न में महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका ने जापान की रिको गुंजी को हराया। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें। मीडिया वेव डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का। अब प्रस्तुत है युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी की। मैं आपकी रेडियो दोस्त इशिका, नमस्कार। दोस्तों, हम हर साल जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी परिणामों के साक्षी हैं, जो विश्व भर के समाजों को तबाह कर रहे हैं। नदियां घरों को बहा ले जाती हैं, फसलें नष्ट हो जाती हैं और लोग वर्षों की मेहनत से अर्जित संपत्ति को खो देते हैं। यानी जलवायु परिवर्तन हमारे अस्तित्व के लिए खतरा बन गया है। इसकी गति को धीमा करने के लिए टिकाऊ जीवन शैली की आवश्यकता है। इस टिकाऊ जीवन शैली के प्रति जागरूकता में हरित कौशल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, हरित कौशल का तात्पर्य उन ज्ञान, क्षमताओं और दृष्टिकोणों से है जो पर्यावरण के संरक्षण और एक स्थायी संसाधन कुशल अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को ऐसे व्यवहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना है जिससे वो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार या स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत वनों की रक्षा, वन्य जीव संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे कार्य आते हैं। हरित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ऊर्जा की बचत करना, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा के उपयोग और कम कार्बन उत्सर्जन वाली तकनीकों को बढ़ावा देना। दोस्तों, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कौशल भारत मिशन के तहत हरित कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। दोस्तों, हरित कौशल विकास के लिए कई कोर्सेज भी कराए जाते हैं। इसमें युवाओं को पौधों की पहचान, वन अग्नि प्रबंधन, जैविक खेती और जल बजटिंग जैसे अल्पकालिक कोर्स कराए जाते हैं। दोस्तों, अब करते हैं थोड़ा सा मनोरंजन और सुनते हैं ये गीत सिर्फ तुम फिल्म से उदित नारायण की आवाज में।

0: दोस्तों आइए अब हम हरित विकास के विषय में जानते हैं युवा श्रोता राहुल द्विवेदी से।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल। अक्सर जब भी हम तरक्की या विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, गाड़ियाँ और कंक्रीट के जंगल आने लगते हैं। सालों से हमें यह लगता आया है कि अगर प्रगति करनी है तो प्रकृति की बलि देनी ही पड़ेगी, लेकिन आज हरित कौशल यानी ग्रीन स्किल्स इस पुरानी सोच को पूरी तरह बदल रहा है। ग्रीन स्किल्स का मतलब है एक ऐसी सोच और ऐसा हुनर विकसित करना जहां विकास भी हो और हमारी नदियां, हवा और मिट्टी भी सुरक्षित रहे। आज सस्टेनेबल आर्किटेक्चर से लेकर इको फ्रेंडली कोडिंग तक हर फील्ड में इसकी भारी डिमांड है। अगर हम आज ग्रीन स्किल्स नहीं सीखेंगे तो हमारे पास डिग्रियां तो होंगी लेकिन जीने के लिए एक साफ सुथरी हवा नहीं होगी। जी हाँ, आज पूरी दुनिया हरित कौशल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र हो, वेस्ट मैनेजमेंट यानी कचरा प्रबंधन, या फिर सस्टेनेबल फार्मिंग। इन सभी क्षेत्रों में एक्सपर्ट्स और कुशल युवाओं की भारी कमी है। कंपनी अब सिर्फ युवाओं को ढूंढ रही है जो ना सिर्फ अपने काम में माहिर हो बल्कि यह भी जानते हो कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए। एक युवा होने के नाते अगर हम हमारे इन स्किल्स को सीख लेते हैं तो हम ना सिर्फ अपने करियर को एक नई ऊंचाई देंगे बल्कि अपने इस खूबसूरत पृथ्वी के प्रति अपना फर्ज भी निभाएंगे। सिर्फ नौकरी पाने का एक जरिया नहीं है बल्कि भविष्य को सुरक्षित करने का एक आंदोलन है। असली समझदारी इसी में है कि हम ऐसी तकनीक सीखें जो हमारे बिजनेस को बढ़ाए और हमारे पर्यावरण को भी। याद रखिए, प्रगति वही है जो प्रकृति को साथ लेकर चले, वरना वो प्रगति विनाश में बदलते देर नहीं लगाती। इस बारे में जरूर सोचिए। शुक्रिया
0: दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत गुरु फिल्म से श्रेया घोषाल की आवाज में।

बापू, मैं जा रही हूँ। जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है। चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

दोस्तों, भारत सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी पहल है जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश को अनुसंधान विकास और नवाचार में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाना है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के विषय में। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित ये मिशन सुरक्षित संचार, उन्नत कंप्यूटिंग और सटीक नेविगेशन के विकास पर केंद्रित है। ये एक 8 वर्षीय मिशन है, 2023 से 2030-31 तक। क्वांटम तकनीक के 4 प्रमुख क्षेत्रों क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग और क्वांटम सामग्री में अनुसंधान के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान और विभिन्न आईआईटी संस्थानों में विशेष हब स्थापित किए गए हैं। 5 से 8 वर्षों में 50 से लेकर 1000 भौतिक क्यूबिट तक मध्यम स्तरीय क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य है। इसका उद्देश्य उपग्रहों के माध्यम से 2000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तक भारत के भीतर ग्राउंड स्टेशनों के बीच पूरी तरह से सुरक्षित क्वांटम संचार स्थापित करना है। दोस्तों, वर्तमान में पारंपरिक एन्क्रिप्शन सिस्टम क्वांटम कंप्यूटरों के हमलों से असुरक्षित हो सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग प्रणाली को हैक प्रूफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, आप सुनते हैं ये गीत नमक हलाल फिल्म से आशा भोसले की आवाज में।

दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे अगले स्तंभ रोजगार सूचना की ओर। भारतीय नौसेना ने एसएससी अधिकारी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। ये भर्ती 275 पदों के लिए है। प्रारंभिक तिथि 25 जून 2026 और आखिरी तिथि 27 जुलाई 2026। उम्मीदवारों का जन्म 2 जुलाई 2002 से 1 जुलाई 2008 के बीच का होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता बी या बीटेक 60% अंकों के साथ। अगली भर्ती है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद के लिए। कुल 1500 पद हैं। आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 18 जून 2026, आखिरी तिथि 8 जुलाई 2026। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, अधिकतम आयु 30 वर्ष। शैक्षणिक योग्यता है किसी भी स्ट्रीम में स्नातक। दोस्तों, अब सुनते हैं ये गीत आंधी फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में।

0: दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगता है हमें जरूर बताइएगा। आप अपनी शिकायतें और अपने सुझाव हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है yuvvaniriva@gmail.com। तो फिर मिलने के वादे के साथ अपनी रेडियो दोस्त इशिका, यानी मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं के लिए कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी रीवा की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।
2: न सनसनी, न सनसनी, न सनसनी, न उत्तेजना, न उत्तेजना, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न शोर दिन रात, न ही अहंकार, केवल मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और सच्चे समाचार। जी हां, यही बिखेरता है आपके जीवन में आकाशवाणी परिवार।

0: अये वो भी ऐप से, वाह। फसा
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और आप सभी से गुजारिश करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश। अब पेश है फिल्म संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में संघर्ष फिल्म का गीत। इस गीत को लिखा था समीर ने और संगीत बनाया था जतिन ललित ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है प्यार तो होना ही था इस फिल्म से। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने, गीत के बोल लिखे हैं विनोद महेंद्र ने और संगीत है जतिन ललित का।
1: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। अब तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

श्रोताओं, जतिन ललित के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे विनोद महेंद्र का लिखा हुआ, माफ़ी चाहती हूँ, मैं मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ गीत कुमार सानू की आवाज़ में। फिल्म का नाम था कभी हाँ कभी ना। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर और कुमार सानू ने। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है जतिन ललित ने। फिल्म है जब प्यार किसी से होता है।

श्रोताओं, भी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर। यह है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब आपसे मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल के रविन्द्र भवन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ और स्टार्टअप को लगभग 39 लाख रुपए की राशि अंतरित की। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 29 जून को नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के 43 जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। पेश है फिल्म संगीत।

भाग मिल्खा भाग, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म में श्रेया घोषाल और जावेद बशीर को। प्रसून जोशी का गीत था और संगीत था शंकर एहसान लॉय का। अब सुनते हैं सनम तेरी कसम फिल्म में हिमेश रेशमिया को। समीर रंजन का गीत है और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

अभी आप सुन रहे थे कबीर सिंह फिल्म का गीत सचेत टंडन की आवाज़ में, इरशाद कामिल का गीत था और संगीत था सचेत परंपरा का।

सुनते हैं नमस्ते लंदन फिल्म का गीत, जिसको गाया है हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान ने। गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और संगीत है हिमेश रेशमिया का।

श्रोताओ, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला नगमा जिसे हमने लिया है थप्पड़ फिल्म से, इस गीत को गाया है राघव चैतन्य ने। शकील आजमी और सोना मोदत्ती का गीत है और अनुराग शेक्या का संगीत है।

सनम रे इस फिल्म में आप सुन रहे थे मिठू अरिजीत सिंह और अनिरुद्ध भोला को। इस गीत को संगीत दिया था और गीत भी लिखा था मिठू ने। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जिसे हमने लिया है रंग दे बसंती फिल्म से। इस गीत को गाया है मधुश्री और नरेश अय्यर ने। गीत के बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने और संगीत है AR रहमान का।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है राजनीति फिल्म से। इसे गाया है आदेश श्रीवास्तव, रोजाली निकोलसन और शशि ने। समीर का गीत है और संगीत है आदेश श्रीवास्तव का।

कार्यक्रम के आखिर में आइए सुनते हैं ओमकारा फिल्म का गीत श्रेया घोषाल और विशाल भारद्वाज की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत बनाया है विशाल भारद्वाज ने।

0: श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत का। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर यह प्रसारण है आकाशवाणी मध्य प्रदेश का।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: नई घटना स्वयं ही घट पड़े।
1: भारतीय सेना।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

सेशेल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मेनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हर्मेनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए प्रवासी भारतीय समुदाय को भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि प्रवासी समुदाय ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति को जिस तरह से विदेशों में संरक्षित और संजोए रखा है वह सराहनीय है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

0: ने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा, यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा,

0: करते हुए श्री शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
1: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। ट्रस्ट ने पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामले में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET से संबंधित प्रश्नपत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्नपत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। बहरीन ने आज ईरान पर आरोप लगाया है कि उसने देश पर ड्रोन से हमले किए। बहरीन के विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया कि ईरान के कई ड्रोनों ने देश को निशाना बनाया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC ने कहा कि उसने अपने दक्षिणी तट पर अमरीकी हवाई हमलों के जवाब में अमरीकी सेना से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, न्यूज वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आइए सबसे पहले हम आपको आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रम बता दें। आकाशवाणी भोपाल से शाम 7:21 पर आप सुन सकेंगे ग्रामीण श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा। शाम को 7:45 पर होगा प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान। प्रायोजक होंगे विकास दर्शन। रात 8 होगा कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 8:15 पर सुनिए पॉडकास्ट सीरीज में प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इसका एपिसोड नंबर 7। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:35 पर। रात 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से सुनिए कार्यक्रम विज्ञान भारती। रात्रि 10 होगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम रिले। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे प्रभात मुखोपाध्याय से संतूर वादन। श्रोताओं, ये तो थी जानकारी आज शाम की सभा के शेष कार्यक्रमों की। आइए अब आपको कल की तीनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें। सुहावने मौसम में चाय की चुस्कियों के साथ सुबह 7:20 पर हमले कराते हैं हमारा दैनिक सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। सुबह 8:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा। लोक संगीत का आनंद आप ले सकेंगे सुबह 9:15 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे बुंदेली लोकगीत, कलाकार होंगे अर्जुन सिंह ध्रुवे और साथी। 9:30 पर सुनिए सिंधी कार्यक्रम सिंधी अच्छी सुरहान। 10 वक्त होगा जिले की चिट्ठी का।

सामुदायिक गान शिक्षण पाठ सुनिए 10:05 पर, और 10:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। कल सुबह 11 बजे सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात कार्यक्रम। दिन में 12 बजे सुनिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम संग्रहालय से आप सुन सकेंगे दोपहर में 12:30 पर। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे धारावाहिक भुवन मोहिनी का 10वां एपिसोड, महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 1 बजे। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। दिन में 1:30 पर सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम, और 1:45 पर होगा सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी के सौजन्य से होंगे। दोपहर 2 बजे आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का। बच्चों का कार्यक्रम सुनिए 2:30 पर। प्रस्तुति आकाशवाणी जबलपुर की होगी। शाम 5:02 पर सुनिए युवा धड़कनों को तरंगित करने वाला कार्यक्रम युववाणी। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। शाम 5:33 पर आप आनंद ले सकेंगे फिल्म संगीत का, और शाम 6 बजे पुनः आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

0: शाम 6:30 पर आकाशवाणी से सीधा रिले होगा आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य लंदन में खेले जा रहे महिला टी20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। रात्रि 10:45 पर सुनेगा फिल्म संगीत। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव डीटीएच और न्यूज़ ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही देर में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राणा शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगे शामिल। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान करेगा स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशल्स की राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों

0: देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशेल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा का उत्सुकता प्रकट की। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। वह सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविन्द्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ रुपए की विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा वृद्ध उद्योगों के लिए 1274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करेगा।
1: आने वाले पूरे 5 साल के होते होते हम निश्चित रूप से 3 प्रमुख राज्यों में से शामिल होंगे। जिस प्रकार से हमारी गति चल रही है हर एक क्षेत्र में, और केवल यहाँ नहीं, कनाडा, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, ये सबको मिला लूं तो जो हमने एमओयू किए थे और वो लगभग 9300 करोड़ से अधिक का निवेश अब ग्राउंड ब्रेकिंग में पहुंच। हमारे पास कनाडा की मैकमैन फूड कंपनी आगरमालवा में 3800 करोड़ का काम कर रही है। ये एग्रीकल्चर के सेक्टर में बड़ा काम कर रही है।
0: केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देशभर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित तथा किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: मैं आज इस मंच से कह देना चाहता हूं, हम तो 1.5-2 साल में 500 से ज्यादा शहर में पहुंच जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। हर जगह हम पहुंच जाएंगे। हम नागपुर पहुंचेंगे, पुणे पहुंचेंगे, मुंबई पहुंचेंगे, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, कोलकाता, 31-7 के पहले 7 स्थान पर भारत टैक्सी पहुंच जाएगी। और 2 साल के अंदर छोटे बड़े मिलाकर हम 500 शहरों के अंदर, कस्बों के अंदर हमारी 2-व्हीलर, ऑटो और 4-व्हीलर का कंसेप्ट लॉन्च करने जा रहे हैं।
0: संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट कर उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधरोपण किया। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधोसंरचना विकास, विभिन्न विभागों की कार्ययोजना व समन्वित तैयारियों पर व्यापक मंथन किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए उज्जैन में विकास कार्य निरंतर

जारी है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लिए आज विशाल रैली आयोजित की गई। कटनी जिले में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का व्यापक आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। भिंड जिला टीकाकरण अधिकारी ने बताया कि इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें 5 वर्ष तक के लगभग 2,70,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। शिवपुरी जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान को लेकर आज जन जागरूकता रैली निकाली गई। नरसिंहपुर जिले में इस अभियान के अंतर्गत 1,58,945 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मंदसौर में अभियान के प्रति जागरूकता के लिए शहर के प्रमुख मार्गों से रैली निकाली गई। प्रदेश में मानसून की दस्तक के बाद इसकी रफ्तार फिलहाल थम गई है। अगले 2 से 3 दिनों में इसके फिर सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा, ग्वालियर, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में बारिश होने का अनुमान जताया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर में पंचायत सांवेर की ग्राम पंचायत कदवाली बुजुर्ग में जल गंगा संवर्धन अभियान 2026 का समापन समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। जबलपुर के 2 प्रमुख कृषि उत्पाद मटर और सिंगाड़ा को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के अवसर पर खंडवा जिले के ग्राम बलखड़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिवपुरी जिले में कल श्रमायुक्त संदीप GR ने माधव चौक का भ्रमण कर श्रमिकों से सीधे संवाद किया। आयरलैंड और भारत के बीच 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का 2रा और अंतिम मैच कल खेला जाएगा। राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा ICJS कार्यान्वयन और डिजिटल एकीकरण विषय पर कल 1 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में किया जाएगा। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अंतर संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली के तहत पुलिस अभियोजन न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य विभाग के मध्य डिजिटल समन्वय और डेटा इंटर ऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ बनाना है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 188.32 मीटर, साथ ही डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। शाम के 7:21 हुए हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम। भैयाओं, ग्राम सभा कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हुए हैं और विशेष रूप से आप सभी आज इंतजार करते रहिए कि महेश भैया आज ग्राम सभा में क्या सुने हैं। भैयाओं, बिल्कुल देखो, सुनवाई की तो ऐसी है कि बहुत कछु है, मनो सभी खास है। और आज जो सबसे खास दिन है उनकी हम बात करें, पहले तो आज है MSME दिवस, यानी कि लघु, मध्यम, छोटे और सभी तरह के जो उद्योग हैं उनके लाने आज को दिन बड़ो खास है। और फिर भैया देखो, उद्योग कोई

0: भी हो, व्यवसाय कोई भी हो, न छोटे होते न बड़े होते, बस वो करवे के अपने जो मन में जो भाव होते हैं वो बड़े होने चाहिए। और फिर आज को दिन भी जय लाने जो है महत्वपूर्ण रहो। और एक बात हम आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस जो मनावे के पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की मंशा है थी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को खास महत्व दे जाए और सतत विकास लक्ष्यों को बिनके योगदान के प्रति जागरूकता बढ़ावे के लाने जो दिवस मनाओ जाते। तो अब आप समझ गए हुए कि अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस की क्या खासियत है। और फिर बात सही भी है भैया रो, कैसे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में छोटे छोटे लघु उद्योगों की खास भूमिका होती है ना। और फिर आर्थिक विकास में जे उद्योग धंधे भी अपनों भरपूर योगदान से देते हैं। अब अपने देश की बात अपन करें तो देश की जीडीपी में 30% हिस्सेदारी एमएसएमई यानी कि जे लघु छोटे उद्योगों की होते हैं ना। निर्यात की हिस्सेदारी की अगर बात करें भैया रहूँ तो आप भरों को हम बता देंगे कि एमएसएमई देश के निर्यात में लगभग 40% हिस्सेदारी को योगदान कर रही है। और फिर देश में 11 करोड़ लोगों को एमएसएमई के जरिए रोजगार यानी कि उनको कमाने का जरिया बन रही है एमएसएमई है ना। तो बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो छोटे लघु उद्योग हैं इनको जो है चाहे सरकारी संरक्षण मिल रहा हो या कोई भी कारण हो, मनोहा जी जब से आए हैं तब से जो है आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है लोगों की और कई लोगों को जो है रोज़गार भी जो है उपलब्ध हो रहा है। और हम तो जी कहते हैं कि हम भी जो है जागरूक बने। और जागरूकता तब है जब हम उद्योगों के प्रति अपनी समझ बढ़ाएँ और कोशिश करें कि हम रोज़गार सृजित करें, रोज़गार देवे वाले बने, ताकि जो है एक छोटी इकाई भी आप अगर लगाओ तो उनमें 1, 2, 4 लोगों को आप आसानी से रोज़गार दे दें। और फिर भैया नो देखो कई बार क्या होते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो है जगह होते वहाँ पर जो है छोटे छोटे लघु उद्योग होते मनो लोगों को जानकारी नहीं होते। तो आजकल जो है जानकारी देवे के लाने कई तरह के प्लेटफॉर्म हैं, उनसे आप जुड़ें ताकि जो है आपके जो छोटे छोटे उत्पाद हैं वे जो है ग्लोबल स्तर पर पहुंच जाएं। और आजकल अपन देख ही रहे हैं कि तरह तरह के जो है लोग बाग जो है प्रचार सामग्री को इस्तेमाल करके अपनी छोटी छोटी वस्तुओं को दूर दूर बड़ी बड़ी जगह पहुंचा रहे हैं। हमने देखो है कि कई जगह जो आज ही जो है हमने देखो सरकारी स्तर पर कार्यक्रम भव रविंद्र भवन में उनमें जो है कई तरह के उत्पाद लेकर लोग आए हैं। उनमें छोटी छोटी बाँस की डलिया, बाँस से बने हुए हाथ की जो है सजावटी वस्तु हैं, इनसे लेकर जो है बड़ी बड़ी मशीनें तक आई थी कृषि की, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है और पता नहीं काका ऐसी ऐसी मशीन के बिनके तो नाम भी याद नहीं रहा है अभी तो। तो केवे का मतलब जो है कि चाहे छोटी मशीन से अपन उत्पादन करें चाहे बड़ी मशीन से, मनोहा उनसे अगर को भला हो रहा है, देश को विकास हो रहा है तो वो काम बड़ो महत्वपूर्ण है। तो एमएसएमई से जुड़े और उत्पादन को जो है अपने उत्पाद को जो है विश्व में दुनिया में जरूर पहुंचाए। और भैया टेम हो रहा है बुंदेली समाचारन को।
1: बुंदेली समाचार
0: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। बुंदेली समाचार के संगे हम हैं महेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशेल्स यात्रा पे विक्टोरिया पहुंच गए हैं। सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी ने बिनको हार्दिक स्वागत करो है। प्रधानमंत्री ने कही है कि सेशेल्स हिंद महासागर में भारत को महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। प्रधानमंत्री सेशेल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि हुई हैं। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हुई हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 को संकल्प विषय पर आधारित कार्यशाला को शुभारंभ करो। कार्यशाला में सिंहस्थ 2028 के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन के लाने साधु संरचना विकास, कई विभागों की कार्ययोजना और समन्वित तैयारियों पर बृहद रूप से मंथन करो जा रहा है। ई मौका पे मुख्यमंत्री ने कही है कि सिंहस्थ 2028 को भव्य दिव्य और सुव्यवस्थित बनावे के लाने उज्जैन में विकास कार्य लगा

0: हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस पर आज प्रदेश में कई जगह कार्यक्रम आयोजित करे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट में सहभागिता करी है। ई मौका पर विभिन्न एमएसएमई इकाइयों को लगभग 225 करोड़ विभिन्न स्टार्टअप्स को लगभग 39 लाख तथा बृहद उद्योगों के लाने 1,274 करोड़ की प्रोत्साहन राशि अंतरित करी। मुख्यमंत्री ने कही है कि देश विदेश की अग्रणी कंपनियां मध्य प्रदेश में लगातार निवेश कर रही हैं। हमें विश्वास है कि आने वाले कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश देश के शीर्ष 3 अग्रणी राज्यों में अपनी महत्वपूर्ण पहचान स्थापित करे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा कर रहे हैं, जो मासिक रेडियो कार्यक्रम को 135वो एपिसोड हुई है। कार्यक्रम को प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पे करोजे हैं। इसके संगे AIR न्यूज, DT न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसको सीधो प्रसारण हुई है। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम को प्रसारण हुई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कही है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार करोजे हैं। आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया है। बिन ने कही है कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना सुई है। बिन ने कही है कि इसे चालकों को बिन के पारिश्रमिक को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा मिले हैं और यात्रियों को भी सुरक्षित और किफ़ायती यात्रा को लाभ मिल सके हैं। संचार और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से गुना जिले के 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान भी कई कार्यक्रमों में भाग ले हैं। श्री सिंधिया ने आज सर्किट हाउस में लोगों से भेंट करके बिन की शिकायतें सुनी। बिन ने एक पेड़ माँ के नाव अभियान के अंतर्गत कंजा गांव में पौधारोपण करो। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत कल 5 साल के सभी बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई है। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन समुदाय में इस अभियान के प्रति जागरूकता के लाने आज विशाल रैली आयोजित करी गई है। कटनी जिला में भी कल राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान को व्यापक आयोजन करो जे है। अभियान के दौरान जिले के 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी 1,73,700 से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई है। और जय के संगे बुंदेली समाचार संपन्न है।
1: बुंदेली समाचार।
0: और भैया अब फिर ग्राम सभा में हम आपरों को लेकर चले के बाद बुंदेली लोकगीतन की तरफ और शुरुआत करते हैं जो देवी गीत से। मनकीम सिंह और बिन के साथ ही जो देवी गीत सुना रहे हैं अपन सभी मिलकर सुनते हैं।

तो जो देवी गीत आपने सुनो मनकीम सिंह और इनके साथियों को गाओ है तो। और भैया रहो एक बात हम आपसे जो कहना चाहते हैं कि ये वक्त देखो मानसून जो है धीरे धीरे सबई दूर पैर पसार गओ है ना। तो अब जो है आप बस अपनी बोने की तैयारी करो, कई जगह खूब पानी बरस गओ है, कई जगह जो है अभी बारिश होबे बारी है, कई जगह अगर बारिश नहीं भई है तो वे चिंतित ना हों, कैसे कि अब जो है एक दो चार दिना में सबई दूर जो है भरपूर पानी गिर व्यवहार हो। मनो बस एक बात को ध्यान रखें कि जैसे ही मौका मिले अपने बीजन की तैयारी करके रखें। और हाँ, बीज आप बोएं चाहे खरीफ की फसलों में सोयाबीन हो या मक्का हो, मूंग हो या दूसरी जो फसलें हैं वो आप लगाएं, मूंगफली हो, तो बीजों को बीजोपचार करके ही बोएं ताकि जो कई तरह की जो बीमारियां हैं जिनसे हमारी फसल बची रहे। तो ये बात को ध्यान रखें। और अब ग्राम सभा में अगलो लोकगीत हम आपरों को सुनवा भी जा रहे हैं। जी हैं अनरतलाल बैरसिया, इनसे अपन सुना थे जो श्रृंगार गीत।

और भैयारों, आप ग्राम सभा में सुन रहे हैं ये बुंदेली गीत। और अब जो है अगलो एक लोकगीत हम आपके आने लेके आए हैं, जगदीश सिंह यादव के स्वर में। जो लोकगीत आप सभी मिलकर सुने, जो चौकड़िया है, बुंदेली चौकड़िया।

तो भैया नो आपने जो लोक गीत सुनो चौकड़िया है तो जगदीश सिंह यादव के स्वर में, और अब चलवे की विरिया हो रही है। मनो चलवे से पहले आप लोगों को एक बात बता दें कि अगर आप अपने फरमाइशी लोक गीत सुनना चाहते हैं तो सोमवार के दिन होते कार्यक्रम लोक रंग उनमें आप चिट्ठिया डालें, अपनी फरमाइश भेजें, हम आपको पता बता दें। कार्यक्रम ग्राम सभा लोक रंग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी भवन शामला हिल्स भोपाल पिन 462002 ई पते पर आप हमें चिट्ठियाँ डालें, अपनी फरमाइश हम तक जरूर पहुँचाएं और आपकी फरमाइश हम जरूर पूरी करें, है ना भैया। और विशेष तौर से आपसे जो कहना चाहते हैं कि आपकी अगर फरमाइश के अलावा फिल्मी गीतें सुनने की मंशा हुई है तो शुक्रवार के दिन जो है आपकी पाती आपके फिल्मी गीत भी होते, पतो वही है, बस आपको जो है कार्यक्रम को नाम बदलना है नहीं। तो चिट्ठियाँ आप जरूर डालें ताकि वे चिट्ठियाँ आपकी हम तक पहुँचें, हम आपकी फरमाइश पूरी करें। और अब चलवे की ब्रिया सभी किसान भैया बहनों को महेश भैया की राम राम।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण श्रोताओं के लिए ग्राम सभा कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही लम्हों में होगा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है प्रायोजक कार्यक्रम उड़ान। प्रायोजक हैं विकास दर्शन।
1: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। हेलो नमस्कार, मैं एनकर्मा उड़ान कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमेशा की तरह आप सबसे पहले हमारा नंबर लिख लें, क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है
2: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
1: श्रोताओं, छोटी छोटी गलत फहमियों से हो रहे हैं रिश्ते खत्म। इन गलत फहमियों को मिटाकर रिश्ते बचा लीजिए। जी हाँ, ऐसे ही रिश्तों की डोर को टूटने से बचाने के लिए पहले सामने वाले की बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। जी हाँ, बिना सुने ही अगर आप अपने विचारों को दूसरों को सुनाने लगे तो यकीन मानिए आप अपनों से दूर हो जाएंगे। श्रोताओं, कभी कभी सामने वाला हमारे फायदे की बात या फिर हमारे फायदे का काम करता है। जी हाँ, परंतु हम उसकी बात या हम उसके काम के मतलब को सुने व समझे बिना ही अपनी नकारात्मक सोच से उसको गलत समझ लेते हैं और अपने शुभ चिंतक को खो देते हैं और बाद में पछताते हैं। जी हाँ, बाद में पछताने से अच्छा है कि समय रहते ही हम सामने वाले के कहे गए या किए गए कार्यों के बारे में पूछ लें। जी हाँ, पूछ लें कि उसने ऐसा क्यों कहा। तो श्रोताओं, आज मैं आपको कार्यक्रम शुरू

0: होने से पहले इसी विषय पर एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक केकड़ा समुद्र के किनारे घूमने निकला। वो समुद्र के किनारे घूमकर बहुत ही खुश हो रहा था। जी हाँ, अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा कि उसके पैरों के निशान, जो कि गीली रेत पर बने थे, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। ये देखकर वो केकड़ा बहुत खुश हो गया। अरे वाह, मेरे पैरों के निशान कितने प्यारे लग रहे हैं। परंतु उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक ना रह सकी। जी हाँ, समुद्र की एक लहर आई और उस केकड़े के पैरों के निशान को मिटा गई। अब ये देखकर तो केकड़े को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में समुद्र की लहर से बोला, अरे ओ लहर, तुम तो मेरी सबसे अच्छी और प्यारी मित्र हो, फिर तुमने मेरे इतने सुंदर पैरों के निशान क्यों मिटा दिए? ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत से मुझे कितना दुख पहुंचा है? ये सब सुनकर लहर ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, भाई मैं जानती हूँ तुम्हें मेरी इस हरकत से बहुत गुस्सा आया है और बहुत बुरा भी लगा है, परंतु जरा नजर उठाकर दूर देखो, वहां कुछ मछुआरे आ रहे हैं और वो केकड़ों का शिकार करते हैं। तुम्हारे पैरों के निशान देखकर वो यहाँ जरूर आ सकते हैं। वो मछुआरे यहाँ ना आए इसीलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान को मिटा दिया, जिससे तुम्हारी जान बच सके। जी हाँ, समुद्र की ये बात सुनकर केकड़े को अपनी बात और अपनी सोच पर पछतावा हुआ और अपने मित्र पर बहुत ही गर्व हुआ। जी हाँ, कुछ ऐसी ही घटना पर आधारित है हमारा आज का नाटक।
1: यह एक पारिवारिक नाटक है जिसमें सभी मिलकर एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। आइए सुनते हैं कि इस नाटक में कब और क्यों एक गलतफहमी ने जन्म ले लिया और उसको कैसे दूर किया गया।

0: अरे अंजलि, देखो तो दरवाजे पर कोई आया है।
1: जी माँ जी। अरे महक दीदी, आप कैसे हो?
2: ठीक हूँ भाभी।
1: आओ दीदी आओ, अंदर आओ, लाओ सामान मुझे दे दो।
2: भाभी, माँ कहाँ है?
1: दीदी वो तो अपने कमरे में है।
2: ठीक है, मैं माँ के कमरे में ही जाती हूँ।
1: ठीक है दीदी, मैं आपके लिए वही चाय और पानी लाती हूँ।
2: ठीक है भाभी। माँ, माँ जी नमस्ते, कैसे हो?
0: अरे महक बेटा, आओ आओ।
2: क्या बात है माँ, बहुत आराम हो रहा है, तबीयत तो ठीक है आपकी?
0: हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू सुना, तेरे सास ससुर और रमेश सब ठीक है ना?
2: हाँ माँ, सब ठीक है।
0: और सुना, कैसे आना हुआ?
2: अरे माँ, रमेश को कहीं कुछ काम था और मेरी ननद सुदेश आई हुई थी। मैंने माँ जी से पूछा कि मैं अपनी मम्मी को मिलने जाऊंगी और कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगी। तभी मम्मी जी ने बोला, हाँ हाँ चली जाओ, सुदेश तो आ ही गई है, सब काम देख लेगी। तो मैं यहाँ आ गई तुमसे मिलने के लिए।
0: अच्छा किया बेटा।
3: तभी अंजलि चाय और कुछ गरम गरम पकौड़े लेकर आती है, जो महक को बहुत पसंद थे। पकौड़े को देखकर महक बहुत खुश हो गई।
2: अरे वाह भाभी, मजा आ गया पकौड़े खाकर।
0: अरे अंजलि बेटा, तू भी बैठ हमारे साथ, पकौड़े खा।
1: अरे मम्मी जी, किचन में काम पड़ा है बहुत।
0: अरे हो जाएगा काम, दो घड़ी हमारे साथ भी तो बैठ।
1: पर मम्मी जी।
0: पर वर कुछ नहीं।
1: ठीक है माँ जी।
2: भाभी, सच में पकौड़े बहुत स्वाद थे, पेट भर गया पर मन नहीं भरा।
1: कोई बात नहीं, कल फिर बना दूंगी।
2: ओहो भाभी, आप बहुत अच्छी हो।
0: बस बस, अब मेरी बहू को नजर मत लगाओ।
3: ऐसे ही बात करते करते पूरा दिन निकल जाता है और शाम के समय अंजलि डिनर की तैयारी करने लगती है। तभी वहाँ महक आ जाती है।
2: अरे भाभी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है।
1: तुम्हारे पसंद के राजमा चावल और साथ में आलू का रायता।
2: अरे भाभी, आज तो मजा ही आ जाएगा, मैं भी आपके साथ काम में हाथ बटाती हूँ।
1: अरे अरे नहीं, मैं कर लूँगी।
2: अरे भाभी, जल्दी काम करके आराम से बैठकर बातें करेंगे फिर।

0: ठीक है दीदी।
1: तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। महक दरवाजा खोलती है तो पास की एक आंटी जी आती है। महक उनको अपनी माँ के कमरे में ले जाती है। तीनों कमरे में खुश होकर बातें करते हैं। आंटी जी बोली,
2: अरे कमला जी, आप तो बहुत खुशकिस्मत हैं। आपके पास तो इतनी अच्छी बेटी और बहू है।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरी बेटी तो बहुत मीठी है और बहू नमक है नमक।
1: उनकी ये बातें सुनकर अंजलि चुप रहती है। उसको बहुत बुरा लगता है परंतु कुछ बोलती नहीं और अब पहले की तरह काम में लगी रहती। परंतु अब उसका मन काम में नहीं लग रहा था। वह सोचती है, मैं सारा काम बहुत अच्छे तरीके से करती हूँ और माँ का भी पूरा ध्यान रखती हूँ, उन्हें कोई परेशानी नहीं होने देती। फिर महक अपने घर चली गई पर अंजलि अभी भी चुप ही थी। कमला जी ने उसके बदले व्यवहार को देखकर उससे बात करने की सोची।
3: अंजलि, क्या बात है, आजकल बहुत चुप रहने लगी हो, कोई बात है क्या? तबीयत तो ठीक है?
0: ठीक है मम्मी जी।
3: फिर ऐसी चुप चुप क्यों हो?
0: मम्मी जी, एक बात पूछूं?
3: हाँ हाँ बेटा पूछ।
0: जब सरोज आंटी आई थी तब उनके सामने आपने महक को तो मीठा और मुझे नमक बताया, आखिर मेरी सेवा में क्या कमी रहेगी जो आपने मुझे नमक बताया?
3: हे भगवान, तुम बस इस बात से परेशान हो?
0: हाँ मम्मी जी, आपकी वो बात मुझे चुभ गई। तब से मुझे समझ नहीं आ रही आखिर आपने मुझे ऐसा क्यों बोला।
3: अरे बेटा, तुम मेरी बात को समझी नहीं।
0: क्या मतलब मम्मी जी?
3: सुन बेटा, महक मेरे लिए मीठा है। अब ये बात बता, मीठा क्या मैं रोज खा सकती हूँ? रोज मीठा खाकर मैं रह सकती हूँ क्या?
0: नहीं मम्मी जी।
3: अब ये बात बता, नमक के बिना मेरा एक दिन भी गुजर सकता है क्या?
0: नहीं मम्मी जी।
3: इसलिए तुझे नमक कहा, क्योंकि बेटी तो महीने दो महीने में आ जाए उतना ही बहुत होता है। मेरे लिए तो बेटा तू तो मेरा नमक है नमक, तेरे बिना तो मेरा एक काम भी नहीं हो सकता। तू ही तो है जो मुझ बुढ़िया का सहारा है, तू तो मुझे हर दिन हर पल चाहिए।
0: अरे मम्मी जी सॉरी, अब समझी कि आपने मुझे नमक क्यों कहा।
3: शुक्र है समय रहते तूने मुझसे पूछ लिया, नहीं तो मन ही मन ना जाने क्या क्या सोचकर मन खट्टा करती रहती।
0: अरे मम्मी जी वो मैं बस।
3: बेटा मन में कोई बात आए तो पूछ लिया कर, आखिर हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं।
0: मुझे माफ करना मम्मी जी।
3: बेटा जी माफी नहीं, तुम्हें तो सजा मिलेगी, तुझे मेरे लिए चाय बनाने की सजा मिलेगी।

0: तो श्रोताओं, आपने सुना कि कमला जी ने अपनी बहू को नमक क्यों कहा। सच है, सच है, एक सास के लिए उसकी बहू नमक की तरह ही होती है, जो उसके अंतिम समय तक उसकी देखभाल करती है।
1: तो श्रोताओं, सुना आपने किस तरह से कमला जी की कही हुई नमक और मीठे वाली बात का अंजलि ने कुछ और ही मतलब निकाल लिया। इस कारण अंजलि मन ही मन अपनी नकारात्मक सोच में उलझने लगी और अपनी सास से भी इसके विषय में नहीं पूछ पा रही थी। परंतु सास कमला जी ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को देखकर उसकी उदासी का कारण पूछा। पहले तो बहू आनाकानी करने लगी, परंतु सास के बार बार पूछने पर बहू ने सास से पूछ ही लिया, मेरी सेवा में कहाँ कमी रह गई जो आपने मुझे नमक कहा। और सास कमला ने भी बात की नजाकत को समझते हुए उसकी शंकाओं को दूर किया और बहू ने भी उनकी बात को समझा और अपनी गलत फहमी को स्वीकार करते हुए सास से माफी भी मांगी। तो श्रोताओं, बहुत से घरों में ऐसी घटनाएं हो

0: जाती हैं। सामने वाला आपसे कुछ और कहना चाहता है, परंतु आप उसके शब्दों के मूल्यों को ना समझकर उसका अपने विचार अनुसार मतलब निकाल लेते हैं, या सामने वाला आपकी बात को सही से समझ नहीं पाता, जिससे कि रिश्तों में दरार पड़ जाती है और दो और सालों के रिश्ते एक पल में टूट जाते हैं। तो श्रोताओं, गलतफहमियों को अपने रिश्तों से दूर करें, और इसका एक ही उपाय है। जी हाँ, आपस में बैठें और बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के कहे हुए बातों को सुने। आपस में बातचीत करने से बहुत बड़े बड़े मसले हल हो जाते हैं। श्रोताओं, ये समय है कि हम अपने कुछ श्रोताओं के नाम कार्यक्रम में साझा करें। जी हाँ, हमारे श्रोता हैं कृपाल सिंह उर्फ मंत्री जी सीतापुर यूपी से, गंगूरदास जी समस्तीपुर से, नसरुद्दीन सिद्दीकी जी यूपी से, डॉक्टर शिव प्रसाद प्रतापगढ़ से। तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। और श्रोताओं, अब ये समय है कि आप अपने प्रश्नों को या फिर आज की कहानी से संबंधित अनुभवों को हमसे साझा करें। तो वक्त जाया ना करें, अपना फोन उठाएं और हमें कॉल करें। जी हाँ श्रोताओं, हमारा नंबर है
1: 8860088827। जी हाँ, 8860088827।
0: और हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। जी हाँ, कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। तो श्रोताओं, मुझे एना कर्मा को दीजिए अनुमति, आपसे हम जल्द मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजक कार्यक्रम उड़ान। प्रायोजक थे विकास दर्शन। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया।
2: नमस्कार, सुर्खियों में आपका स्वागत है, मैं हूं विशाल दहिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमेनी ने उनका स्वागत किया और एक शीर्ष वार्ता वहां के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के गोल्डन जुबली नेशनल डे समारोह में भी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे, जो कि ऐसा पहला मौका किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए होगा। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की यह सेशल्स की पिछले 12 साल में दूसरी यात्रा है। इससे पहले सन 2015 में प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स गए थे। भारत और सेशल्स के संबंध बहुत ही मधुर रहे हैं और दोनों ही देश 50 वर्ष भी मना रहे हैं अपने राजनयिक संबंधों को लेकर। तो आज हम चर्चा करेंगे ना केवल भारत और सेशल्स के संबंधों की, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के महत्व की भी, खासतौर पे जो इस वक्त वैश्विक स्थिति है उसके चलते, और भारत के लिए सेशल्स कितना महत्वपूर्ण है और सेशल्स के लिए भारत की क्या अहमियत है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं एम्बेसडर अशोक सज्जनहार। एम्बेसडर सज्जनहार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: सबसे पहला सवाल जो मन में आता है जब हम सेशंस की बात करते हैं, और मैं सीधा वहीं से शुरुआत करूंगा, वो है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर। हालांकि भारत और

0: सेशल्स के जो संबंध हैं उसमें कई और पहलू भी हैं, लेकिन सबसे पहले मैरीटाइम सिक्योरिटी से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जब नई दिल्ली से रवाना हुए थे तो उन्होंने अपने वक्तव्य में इस मुद्दे को लेकर काफी जोर शोर से अपनी बात रखी थी। कहा था महासागर जिसकी हम बात करते हैं मिस्टर सज्जनहार, तो महासागर से क्या इंडिकेशन मिलती है और उसमें सेशल्स का क्या महत्व है?
1: देखिए, आपने बिल्कुल ठीक जगह से शुरू किया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिपेक्ष में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व वो जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दो है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो सेशल्स का क्या महत्व है महासागर के परिपेक्ष में, क्योंकि हमें देखना है न केवल भारत और सेशल्स के द्विपक्षीय संबंध कैसे हैं, परंतु इसको अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष में देखने की बहुत आवश्यकता है। और हम देख रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय परिपेक्ष ऐसा है, बहुत बदलाव आया है, बहुत उथल पुथल हो रही है। और अगर हम इंडियन ओशन का क्षेत्र देखें तो उसमें भी हम देखते हैं बहुत ही, भारत तो कहता है ये भारत यहाँ पर मेजर सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, परंतु और भी यहाँ पर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि आने लगे हैं और बहुत ही अपना यहाँ पर प्रभुत्व वो जमाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 2015 में जब वो मॉरिशस गए थे तो उन्होंने सागर का जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया था, जिसका मतलब है सागर है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो मतलब सभी की सुरक्षा, सभी का जो वृद्धि है, जो भी उनका आगे ले जाना है, ग्रोथ है, प्रगति है, सभी को साथ में लेकर यहाँ पर चलने की आवश्यकता है। परंतु उसका परिपेक्ष केवल इंडियन ओशन था। फिर उसके बाद पिछले साल उन्होंने महासागर को भी मॉरिशस में ही लॉन्च किया, और उसका है म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। मतलब इसको और ज्यादा व्यापक बना दिया गया है। अगर सागर केवल इंडियन ओशन भारतीय भूसागर से ही मिलता जुलता था, उसके परिपेक्ष में आता था, तो महासागर है इसका जो दायरा है कहीं और बढ़ गया है। और सेशल्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जो हमारे सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो ट्रेड है, जो कनेक्टिविटी है, उसमें बहुत ही उसका ज्यादा महत्व हो गया है। और इसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है जो आगे चलते हुए दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, मैरीटाइम डिफेंस है सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से, और इसके ऊपर पहले भी दोनों देशों में बहुत अच्छी सहमति है। जब डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी भारत आए थे इस साल फरवरी में, तब भी इसके बारे में बहुत बातचीत हुई थी, तो अब इसको आगे इसमें ले जाया जाए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने एमएस सज्जनहार, क्योंकि जो भारत है उसने सेशल्स के कई मुख्य द्वीपों पर कोस्टल सर्वेलेंस राडार सिस्टम भी स्थापित किए हैं, यानी कि तटीय रक्षा प्रणाली जो है उसको मजबूत करने में दोनों देशों के बीच जो मधुर संबंध हैं, जो गहरे संबंध हैं, वो काम आते हैं। उसके अलावा अगर हम पायरेसी की बात करें, यानी कि जिन जिन शिपिंग लेन्स की आपने बात की, समुद्री सुरक्षा की बात की, तो एंटी पायरेसी जो स्टेप्स हैं, जो एंटी पायरेसी कैंपेन जो है, उसमें भी दोनों देशों के बीच काफी गहरा समझौता है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास भी गाहे बगाहे कई बार दोनों देश कर चुके हैं। तो ये इस इतिहास से देखा जाए तो पहले सागर और उसके एक दशक बाद अब महासागर, यानी कि एक और कदम हम आगे बढ़ रहे हैं सेशल्स के साथ जो हमारे संबंध हैं और हमारा जो समझौता है, खासतौर पे तटीय सुरक्षा को लेकर और जो समुद्री सुरक्षा जिसे कहा जाए उसको लेकर भी। लेकिन इसके अलावा एक और पहलू है मिस्टर सज्जनहार, और हम उस पर भी चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि भारत ने बड़ा दिल रखते हुए कई बार कई तरह से सेशल्स की मदद की है, चाहे हम علاوہ اگر کووڈ 19 کے دنوں سے دیکھیں, جس طرح سے ہم نے پینڈیمک کے دوران کئی اور دیشوں کے ساتھ ساتھ سیشلز کی بھی مدد کی, ہم نے ویکسینز پہنچائی, اس کے علاوہ خادیہ سامگری پہنچائی, اور حال فی الحال میں کچھ مہینے پہلے ایک 175 ملین یو ایس ڈالر کا آرتھک پیکج بھی سیشلز کو دیا گیا تھا. تو وہاں سیشلز میں اس کو کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ بھارت کی جو امیج کی اگر ہم بات کریں تو کس طرح کی امیج بھارت کی ہے؟
1: دیکھیے, بھارت کی امیج میں کہوں گا بہت ہی اچھی ہے, کیونکہ جیسے آپ نے شروعات میں ہی بتایا ہے, جو بھارت کے سمبندھ ہمارے بہت ہی ایتہاسک ہیں, بہت ہی پرانے ہیں. وہاں پر 1770 میں ہمارے پانچ وہاں پر جسے کہا جائے ورکرز گئے تھے, لیبر گئے تھے, کام کرنے کے لیے گئے تھے, کوئی فرینچ کالونیلسٹ ان کو وہاں پر لے گئے تھے, اور وہ پہلے بھارتیہ لوگ تھے جو وہاں پر ہیں, اور ہمارا بہت ہی تب سے بہت ہی سمبندھ ان کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں. اس سمے دیکھا جائے تو قریب 6,000 ہمارے پرسنز آف انڈین اوریجن ہیں, ہمارا جو ڈائسپورا ہے اس میں بھارتی مول کے جو لوگ ہیں قریب 6,000 ہیں, قریب 10,000-11,000 وہاں پر پروفیشنلز ہیں, کنسٹرکشن ورکرز ہیں وغیرہ. آپ نے بالکل ٹھیک کہا, دیکھیے بھارت نے ہمیشہ سیشلز کی مدد کی ہے, سہایتا کی ہے, اور اس کے لیے بہت ہی آبھاری ہے سیشلز اپنے کو مانتا ہے, کیونکہ پہلے ہم سرکشا کی بات کر رہے تھے, میری ٹائم سیکیورٹی

0: पार्टी की बात कर रहे थे, उसमें अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं ये भी कहूंगा,
1: जी
0: जो देखिए हमने बहुत वहां पर पेट्रोल वेसल्स दिए हैं उनको, जिससे कि वहां पर अपनी वो पेट्रोलिंग कर सके। आपने रेडार सिस्टम्स का तो बताया ही है, जो कोस्टल तटीय इलाकों में हमने उनको स्थापित किया है। अभी हमने 6 वहां पर तटीय इलाकों पर हमने ये स्टैब्लिश किए हैं, स्थापित किए हैं, जिससे कि जो कोई वहां पर अगर उनकी संप्रभुता के ऊपर कोई वहां पर आते हैं तो उनको पहले ही पता चल जाए उसके बारे में। फिर दूसरी बात है, हमने 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उनको। इस प्रकार के बहुत सारे उनको हमने सामान दिया है, जिससे कि अपनी सुरक्षा को वो बड़ी अच्छी तरीके से निभा पाए। उसके साथ हमारी एक्सरसाइजेस चलती हैं, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो लिमातीय एक्सरसाइजेस हर 2 साल में एक बारी होती हैं। तो मैं कहूंगा बहुत वहां पर काम किया गया है। हमारी जो नेवल शिप्स हैं, INS सुनैना है, INS शारदा है, उन्होंने वहां की उसके एरिया के लिए, तटीय इलाकों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने बहुत वहां पर पेट्रोलिंग वगैरह की है। तो बहुत काम दोनों देश एक साथ करते हैं, और इसमें वहां के जो लोग हैं वो भारत के बहुत ही आभार मानते हैं। हमारा व्यापार भी बहुत अच्छा है, हालांकि उसको और बढ़ सकता था, तो परंतु आपने जो अभी जिक्र किया है $175 मिलियन का, वो जब डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी आए थे यहाँ पर फरवरी में,
1: जी बिल्कुल
0: तो तब उन्होंने उस समय ये पैकेज लोन भी है और ग्रांट का पैकेज है जो कि दिया था हमने उन्हें, और उसमें जो बहुत सारे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे वहां पर कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए, वहां पर स्वास्थ्य क्षेत्र में, वहां पर शिक्षा क्षेत्र में, ऐसे बहुत से क्षेत्र थे जिसमें दोनों देशों ने कहा जो वहां पर काम किया जाएगा। आपने COVID-19 का विशाल जी अभी जिक्र किया,
1: जी
0: और वो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव था दोनों देशों के बीच के संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि सेशेल्स मेरे विचार से दुनिया में करीब सबसे पहला देश रहा होगा जहां पर कि हमने 50,000 अपने वैक्सीन डोजेज वहां पर भेजे, क्योंकि हमारे यहाँ आपको याद होगा करीब 2021 में, बिल्कुल शुरुआत में जनवरी में, 16 जनवरी को हमने अपना टीकाकरण शुरू किया, और फिर 21 जनवरी 4-5 दिन बाद ही हमने सेशेल्स के लिए भी करीब 50,000 डोजेस भेज दिए थे। उनकी जनसंख्या ही अगर देखा जाए तो करीब 1 लाख के आसपास है, छोटा देश है, छोटी जनसंख्या है,
1: जी
0: परंतु भारत उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देता है, अपने संबंधों को बहुत ध्यान से उसको आगे लेकर जाता है, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मैरिटाइम पार्टनर है, और उस क्षेत्र में सुरक्षा के लिए जैसे हम बात कर रहे थे पायरेसी की, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत करीब 90% हमारा जो व्यापार है
1: जी
0: वो हम इन्हीं समुद्र से ही हम उसको आगे लेकर चलते हैं।
1: जी
0: विशाल
1: बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर सज्जनहार, केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं, केवल सैन्य उपकरण नहीं, बल्कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो बुनियादी ढांचा है उसको विकसित करने में भारत का काफ़ी योगदान रहा है सेशल्स में, चाहे वो वहाँ की मजिस्ट्रेट कोर्ट बिल्डिंग हो, वहाँ पर ऊर्जा संयंत्र हो, या फिर और कम्युनिटी डेवलपमेंट की जो स्कीम्स हैं जिनका आपने जिक्र किया। एक आखिरी सवाल और मिस्टर सज्जनहार, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहाँ मौजूद हैं, उनका 50वां स्वतंत्रता दिवस है, यानी कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है, उसके बाद वो नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और शीर्ष स्तर पर वार्ता भी होगी, तो इस यात्रा से आपको क्या लगता है कि दोनों देशों के लिए क्या वो 2 या 3 बड़ी बातें हैं जो उभर कर सामने आ सकती हैं?
0: देखिए, एक तो मेरे विचार से भारत न केवल सेशेल्स को अपने द्विपक्षीय संबंधों के लिए, परंतु पूरे जो इंडियन ओशन रीजन है, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, उसमें ये एक संदेश भेज रहा है, जो भारत का यहाँ पर जो संबंध है, जो प्रभुत्व है, वो बिल्कुल ही बरकरार है, और उसको वो बिल्कुल भारत जो है उसको पूरी तरीके से प्रिजर्व करके रखेगा। तो कोई ये जैसे हम देख रहे हैं चीन की तरफ से इतना ज्यादा यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो मालदीव्स के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहा हो, श्रीलंका के साथ आगे बढ़ा रहा हो, तो किसी को ये शक, चाहे वो ग्वादर में आ गया हो, जिबूती में आ गया हो, तो किसी को ये शक शुभ नहीं होना चाहिए जो भारत और देशों को यहाँ पर अपने इस क्षेत्र में आकर

0: किसी ना किसी प्रकार की कुछ ऐसी कार्रवाई करने का की अनुमति देगा। तो इसका भारत के यहाँ पर जो भी देश हैं उनके साथ संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है, बहुत ही अटूट है, बहुत ही पुराना है, बहुत ही गहरा है।
1: जी
0: एक तो ये संदेश बिल्कुल सीधा है, दूसरा है चाहे देश छोटे हों परंतु भारत उनके साथ, जो भारत के मित्र हैं उनके साथ वो बिल्कुल मिलकर काम करेगा और उनकी सब पूरी तरीके से सहायता करेगा। आखिर में यही कहना है, जब भारत बढ़ता है, भारत की प्रगति होती है, भारत समृद्धिमान बनता है, तो ये केवल भारत के लिए फायदा नहीं है परंतु जो हमारे क्षेत्र के देश हैं इन सभी के लिए फायदा है। और भारत सभी के साथ मिलजुल के काम करना चाहता है, उसी को हमने सागर का पहले रूप दिया और उसी को हमने फिर और बढ़ाकर महासागर का रूप दिया है।
1: जी
0: कुशल जी,
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिस्टर सज्जनहार। जो प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सेशल्स की, और भारत और सेशल्स के बीच जो प्रगाढ़ संबंध रहे हैं पिछले 50 सालों से, उनकी समीक्षा करने के लिए और श्रोताओं को ये बताने के लिए कि किस मार्ग पर, यानी कि किस दिशा में भारत और सेशल्स के संबंध अब आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों दोनों देश एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं।
0: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की सेशेल्स यात्रा विजन महासागर के अंतर्गत सुदृढ़ द्विपक्षीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और पत्रकार विशाल दहिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: सुर्खियों में
4: श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत प्रकृति की बात, आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम का 7वां एपिसोड।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ,
6: ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। इसके अंतर्गत सुनिए छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल, गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे हैं इस विशेष पहल के पीछे काम करने वाले रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आलोक शुक्ल।
7: श्रोताओं नमस्कार। आजकल आप आम देख रहे हैं कि हर चीज में पानी की बोतल लेना हो या कोई भी अन्य पदार्थ लेने हो तो प्लास्टिक की बोतलों में होते हैं या किसी इसी प्रकार के रैपर वाले में उन्हें पैक किया जाता है। तो इससे होने वाला प्रदूषण जो है वो एक बड़ी समस्या है, लेकिन भारत देश के एक छोटे से शहर अंबिकापुर में इस प्रदूषण से निपटने के लिए एक अनोखा उपाय किया गया। इस उपाय में एक अपील की गई कि जो भी यहाँ पे आए हम उनके लिए रेस्टोरेंट खोल रहे हैं, प्लास्टिक के जो कचरे हैं, प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो अवशिष्ट पदार्थ हैं प्लास्टिक के जिससे प्रदूषण फैलता है, वो उसे अंबिकापुर के बस स्टैंड में वहां पे लाएं, गौरव पथ पे जो बना हुआ है, और उसके बदले 1 किलो यदि वो कचरा लाते हैं तो उसके बदले उन्हें भरपेट खाना मिलेगा, 1/2 किलो लाते हैं तो उन्हें नाश्ता मिलेगा, खाने में भी क्वालिटी अच्छी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे की गई एक पहल है जो पूरे देश में प्रचारित हुई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंबिकापुर शहर की ये जो पहल है इसका उल्लेख हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में किया। तो हम बात कर रहे हैं रितेश सैनी जी से। तो सैनी जी, आप ये बताइए कि नगर निगम में जिस तरीके से ये हुआ, तो ये क्या, इसके पीछे की अवधारणा क्या थी, कैसे ये विचार आया?
8: जी देखिए, अंबिकापुर नगर निगम में हम लोग वर्ष 2014 से ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्य कर रहे थे। इसके अंतर्गत अंबिकापुर नगर निगम में हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज मॉडल अपनाया, मतलब शहर में जो कचरा उत्पन्न हो रहा है उसको किसी एक स्थान पे ला करके प्रोसेसिंग करना एक कठिन काम था, तो अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में हम इस काम को करें। इसके तहत SLRM प्रोजेक्ट अंबिकापुर में लगाया गया। वहां पे दीदियां जो है वो घरों से डोर टू डोर कचरा संग्रहण करती है। कचरा को संग्रहण करने के बाद

0: एसएलआरएम सेंटर में आता है, जहां पे कचरे का अलग अलग श्रेणी में पृथक्करण करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेपर हो, कार्डबोर्ड हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या हजार्डियस वेस्ट हो, तो सबको वहां सेग्रीगेशन होता है और सेग्रीगेशन होने के बाद उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए उसको वेंडर्स को सेल किया जाता है। प्लास्टिक वेस्ट एक जो बहुत बड़ी समस्या थी, तो अंबिकापुर नगर निगम में जो एसएलआरएम सेंटर है उनसे जो प्लास्टिक संग्रहित होकर के आ रहा है उसको हम लोग प्रॉपरली अलग अलग जो श्रेणी होती है प्लास्टिक की उसमें पृथक्करण करते हैं। पृथक्करण करने के बाद उसकी वॉशिंग होती है, वॉशिंग होने के बाद उसका दाना बनाने की मशीन जो प्लास्टिक का ग्रेनुअल्स बनता है, ताकि हम उस प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकें। प्लास्टिक को जितना ज्यादा अपन रिसाइकल कर पाएंगे वो सर्कुलर इकोनॉमी की ओर एक हमारा अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। वो प्लास्टिक रिसाइकल होने के लिए दाने का मशीन हमने लगाया, दाना बनने के बाद जो प्लास्टिक के उत्पाद बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो हमसे उस दाने को खरीद रही हैं। तो इतनी व्यवस्था जब बन गई तो उस प्लास्टिक की एक वैल्यू आई। जैसे ही हमने दाना बनाना शुरू किया, दाना बनाने के बाद हमको जब जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनसे जब रेट्स मिलना शुरू हुए, तब हमको ये समझ में आया कि इस प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट करने के बाद 30 रुपये से लेकर 60-70 रुपये किलो तक बेचा जा सकता है। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है। गार्बेज कैफे में ये होता है कि लोग अपने घरों में या दुकानों में जो काम करने वाले वर्कर हैं या जो रैक पिकर्स हैं वो अच्छी साफ क्वालिटी की प्लास्टिक इकट्ठा करके ला रहे हैं, तो हमारा पृथक्करण का खर्चा बचा। जो हम लेबरों से अलग अलग प्लास्टिक को कराते, वो प्लास्टिक को अच्छे से इकट्ठा करके हमारे पास ला करके दिया, तो साफ सुथरी अलग की हुई प्लास्टिक हमको मिल गई, तो वो जो प्रोसेसिंग कॉस्ट था वो हमारा खत्म हो गया। चूंकि हमारे पास प्लास्टिक के एंड पॉइंट तक का मैकेनिज्म है, वो प्लास्टिक को हमने सीधे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, हमारा जो दाना बनाने की फैक्ट्री है वहां पर डाल दिया, जो दीदियां काम करती हैं, दाना बन गया, उसकी वैल्यू लगभग 20 रुपये के आसपास हमारे पास आ जा रही है। अब हमने अंबिकापुर में ये गार्बेज कैफे स्टार्ट किया, क्योंकि ये बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे है। बस स्टैंड परिसर में गार्बेज कैफे होने के कारण क्या होगा कि अधिकतर लोगों के अप्रोच में है, बस स्टैंड के जस्ट सामने में हमारा एक एसएलआरएम सेंटर है। क्योंकि प्लास्टिक घरों से लाया हुआ है या सड़कों से लाया हुआ है, गंदा हो सकता है, रेस्टोरेंट में हाइजीन को भी मेंटेन करना है, तो प्लास्टिक लेके रेस्टोरेंट में नहीं आना होता है। जस्ट रेस्टोरेंट के सामने में रोड के उस साइड हमारा एसएलआरएम सेंटर है, वहां पे जाते हैं, वो प्लास्टिक को डिपॉजिट करते हैं, उसका वजन होता है, वजन होने के बाद उनको दीदियां टोकन इशू कर देती हैं, उस टोकन को लेकर के आपको गार्बेज कैफे में आना है। ये जो टोकन है उसकी वैलिडिटी 7 दिन की होती है, ऐसा नहीं कि आप आज लिए तो आज ही आपको उसको खाना ही है, आप 7 दिन के अंदर कभी भी आकर के उस टोकन को यहाँ जमा करिए और यहाँ पे ये जो रेस्टोरेंट जो चला रहे हैं वो उसके बदले में उनको भरपेट भोजन कराएंगे।
1: ये इस योजना की गार्बेज कैफे की जो शुरुआत हुई वो हुई 2019 में।
2: Yes.
1: उस समय कुछ दिक्कतें आई शुरू करने में, या लोगों के जो विचार थे वो कैसे थे, उन विचारों को आपने सकारात्मक रूप में कैसे परिवर्तित किया, ये बताएंगे सैनी जी आप।
0: इसमें देखिए क्या हुआ था कि 2019 में इसका जो शुरुआत करने का प्रक्रिया हुआ था, तो एक हम लोग एक आईसी एक्टिविटी के अंतर्गत बस स्टैंड परिसर में ही साफ सफाई का एक महाअभियान का आयोजन हम लोगों ने उस दिन किया था। तो जब साफ सफाई का महाअभियान किया गया तो उसमें हमारे महापौर हो गए, नगर निगम के अधिकारी गण हो गए, सारे लोग यहाँ पे थे और सफाई कर्मचारी लोग उसमें स्वीपिंग करके प्लास्टिक के कचरे को, अन्य सभी कचरों को इकट्ठा कर रहे थे। तो वहाँ पे एक बात आई कि क्या इस कचरे के बदले में हम लोगों को कुछ इंसेंटिव मिल सकता है क्या। तो उस समय जो अधिकारी गण थे उन लोगों ने कहा कि यदि आप इस जो सबसे अच्छा प्लास्टिक इकट्ठा करके लाएगा उसको आज मेरी ओर से खाना। तो इस तरह से एक चीज समझ में आई कि नहीं, ऐसा भी कुछ किया जा सकता है। फिर दूसरा, इसको आगे बढ़ने का हमने इसलिए उम्मीद किया क्योंकि प्लास्टिक की वैल्यू हमको ये समझ में आ गई कि जब अगर प्लास्टिक का प्रॉपर आपके पास सेग्रीगेशन है, आपके पास दाना बनाने की मशीनें हैं और आपके पास वेंडर हैं, आप प्लास्टिक को कहाँ बेच सकते हैं, सही मूल्य अगर अपने को मिल रहा है तो हम इसको सस्टेन कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए 1 किलो प्लास्टिक जो सामान्य रूप से कोई 2 रुपये किलो में बेच रहा होगा, हमारे पास आके प्रोसेस होकर 30-40 रुपये किलो में जा रही है, सारे खर्चों को काट करके अगर 1 किलो प्लास्टिक में 20 रुपये भी मेरा बच रहा है तो उस 20 रुपये मैं इस रेस्टोरेंट वाले को दूंगा। ये रेस्टोरेंट प्राइम लोकेशन पे है, यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो खाने आते हैं उनके अलावा अन्य जो यात्रीगण आते हैं उनको भी ये खिला सकें, इसलिए उनकी ओर से भी क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता
1: है। ये माने ऐसा नहीं है कि खाली जो कचरा लेके आ रहे हैं उनके लिए, ये सभी के लिए है।
0: जी बिल्कुल,
1: तो उसके लिए भी एक रेट है,
0: उसके लिए यहाँ पे रेट है, आप पैसा देके भी खा सकते हैं और जो गार्बेज कैफे में जो प्लास्टिक जमा करके टोकन ला रहे हैं वो भी खा सकते हैं। अब यहाँ पे टोकन वालों के साथ कोई भेदभाव ना हो, कि ऐसा ना हो कि इनको हमने दे दिया और ये केवल जो पैसा दे रहा है उसको पहले दें, टोकन वालों को बाद में दें, तो इसके लिए हम लोगों ने इनके साथ एग्रीमेंट में ही लिखा हुआ है कि 2 सीट हमेशा, 2 टेबल मतलब 8 व्यक्तियों के बैठने की जो अरेंजमेंट है वो हमेशा रिजर्व रहेगा। क्योंकि ये संभावना है, हो सकती है ऐसी संभावना कि वेंडर ने तो कम रेट पर ले लिया इसको और उसने कहा कि 20 रुपये मेरे को आप टोकन का रिडीम आप करेंगे, बाकी कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा, तो उस समय ऐसी परिस्थिति ना बन जाए कि केवल बाहर वाले लोगों को ही वो खिला रहे हैं। जो टोकन लेकर के आ रहे हैं वो या तो सड़क से कचरा बीनने वाले होंगे या कुछ होंगे, तो उनके साथ भेदभाव हो, ऐसी स्थिति ना बने, तो इनको ये कहा गया कि आपको 2 टेबल रिजर्व रखना है, आप कभी भी मतलब उनको वापस नहीं भेजोगे।
1: आप ये बताइए कि इसमें से प्रतिदिन कितना आय हो जाता है यहाँ पे।
0: जब देखिए हमने इस गार्बेज कैफे की शुरुआत की थी तो शुरुआत के 1-2 महीने में तो दो तीन लोग आ रहे थे, उसके बाद फिर काफी अच्छा लोगों यहाँ आना शुरू किया, 15-20 टोकन 30 टोकन 40-50 टोकन तक पर डे जाना शुरू हुआ। अभी भी मतलब हर दिन लगभग 8-10 टोकन कंटिन्यूअसली आते जाते हैं। कई बहुत अच्छे इसमें आप एग्जाम्पल भी देखेंगे कि एक रैक पिकर है जो दुकानों से

0: मार्केट जब बंद होता है तो प्लास्टिक इकट्ठा करता है, वो प्लास्टिक इकट्ठा करके आता है यहाँ पे, जमा करता है जैसे 1 किलो 2 किलो 3 किलो, और टोकन इकट्ठा करता है। तो उसने एक बार रिक्वेस्ट किया था कि सर एक टोकन मिलता है मान लीजिए मेरे को, तो मैं अकेले खाना जाता हूँ, क्या मैं 3-4 दिन इकट्ठा करके 5-7 टोकन कर लूँ और अपने परिवार बच्चे लोगों को लेकर के आ जाऊँ, तो मेरे बच्चे लोगों को मैं कभी रेस्टोरेंट नहीं ले जा पाता है ना, तो ऐसा क्या मैं कर सकता हूँ। तो उसके लिए फिर आयुक्त महोदय का बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, 7 दिन टोकन की वैलिडिटी वाला जो कॉन्सेप्ट आया, पहले तो एक ही दिन था कि आज आप लोग जाओ खाओ चले जाओ, फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं 7 दिन तक आपका टोकन वैलिड रहेगा।
1: जो गरीब परिवार है, खासकर जो कचड़े का जो संग्रह करते हैं, जो प्लास्टिक को बीनते हैं, जो हमें प्रदूषण मुक्त समाज की एक मुख्य अवधारणा है, जो गरीब तबके के लोग जो संग्रह करते हैं, उनके लिए देखिए कितनी अच्छी पहल है।
0: होटल वाला भी ये करता है कि आप बच्चे का यदि चाउमीन खाने का मन है, इडली खाने का मन है, तो जरूरी नहीं कि आलू बंडा समोसा ही आप खाइए, आप 2 टोकन दे दीजिए तो उसके बदले में, तो ये हो गया कि मतलब वो भी अब अपने फैमिली को रेस्टोरेंट लेकर के आ सकता है और सम्मान से बैठ करके खा सकता है। तो ये इस तरह के भी कुछ एग्जांपल्स इसमें निकल करके आए हैं। तो ये एक अच्छा हमको हुआ कि प्लास्टिक तो आ ही रहा है, ऑलरेडी हम लोग घरों से भी प्लास्टिक कलेक्ट करते हैं, डोर टू डोर कलेक्शन में प्लास्टिक मिल रही है, सारे की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। एक मोड ये भी है कि इसके माध्यम से प्लास्टिक भी हमको मिल जा रहा है, और साफ सुथरी प्लास्टिक जहाँ प्लास्टिक को जाना चाहिए, जो उसका वैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में हम डिस्पोजल कर पा रहे हैं।
1: ये जो पानी भी आप देते हैं तो स्वच्छ पानी
0: जी
1: वो लोगों को उपलब्ध कराते हैं,
0: स्वच्छ पानी उपलब्ध कराते हैं, यहाँ पे आरओ भी लगा हुआ है इनके पास, इसके अलावा ये वाला बॉटल भी, मतलब कि ऐसा कोई अनहाइजीन सिचुएशन यहाँ ना क्रिएट हो, उन सब चीजों का स्पेशल ध्यान भी इनके द्वारा।
1: सनी जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि इस पहल को प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में पूरे देश के समक्ष किया, प्रभाव ये पड़ा कि विदेशों में भी इसकी चर्चा हुई, और कोई शहर महानगर इस अवधारणा को स्वीकार करते हैं और आपसे सहयोग चाहते हैं,
0: बिल्कुल,
1: या ऐसा कोई मामला सामने आया, ऐसा कोई विषय सामने आया कि जो और कोई शहर के भी लोग आपसे कांटेक्ट किए हैं?
0: जी बिल्कुल, दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, और दिल्ली में शायद 27 से 28 गार्बेज कैफे आज के डेट में हो चुके हैं। तो 2019 में जब हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था, तो 21 दिसंबर के आसपास दिल्ली से यहाँ एक्सपोजर विजिट के लिए भी आए थे, वहाँ पे दिल्ली में भी उन्होंने गार्बेज कैफे चालू किया है। इसके अलावा और भी कुछ कुछ ऐसे शहर हैं जो गार्बेज कैफे के बारे में बहुत सारी डिटेल्स हमसे ली, यहाँ तक कि जो हमारे CAG होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वो जब इस डिपार्टमेंट को पता चला कि ऐसा कोई इनिशिएटिव चल रहा है तो फाइनेंशियल इसके क्या सिचुएशन है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा, कि या इसको सब्सिडाइज करके करना है और जगहों पर लागू करना, तो CAG ने भी इस पर विस्तृत हम लोगों से पूरा जानकारी लिया और पूरा ऑडिट किया इन सारे चीज़ों का, कि कैसे कैसे होता है, कैसे टेंडर किया गया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे। तो CAG ने भी इन सब चीज़ों को ऑडिट करके आगे लोगों के लिए एक मॉडल के रूप में, गाइडलाइन के रूप में गार्बेज कैफे का दिया हुआ।
1: गार्बेज कैफे का जो सबसे अधिक लाभ, या कहें कि ये जो पहल आपने की, सबसे अधिक लाभ किस वर्ग को मिला, किसे मिला, समाज के किस तबके को मिला?
0: समाज के उस तबके को मिला जो ऑलरेडी प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं, अब पहले भी करते थे, रैक पिकर लोग अभी भी दुकानों से ले रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन उनको ये समझ में आया कि मैं दिन भर इकट्ठा करके, क्योंकि 1 किलो बोलने में बहुत हमको हल्का लगता है, लेकिन जब आप प्लास्टिक की बात करेंगे, 1 किलो लोहा और 1 किलो प्लास्टिक में बहुत अंतर होता है। 1 किलो प्लास्टिक जब हम इकट्ठा करने जाएंगे तो पता चलेगा आधा बोरा भर गया, और साफ सुथरी प्लास्टिक लानी है। इसमें हम लोग एक ये भी करते हैं कि प्लास्टिक आपको कौन सी लानी है कि आप यूज़ करें, मेन हमारा ये इनिशिएटिव है कि सड़कों से उठाना या नालियों से उठाना वो नहीं है, प्लास्टिक को आप फेंकें ना, आप प्लास्टिक का यूज कीजिए, आप प्लास्टिक को स्टोर कीजिए, 1 किलो हो गया, गार्बेज कैफे में डिपॉजिट कीजिए, टोकन लीजिए, खाना खाइए।
1: तो ये दिन पे दिन ये जो प्लास्टिक संग्रह है बढ़ रहा है?
0: नहीं,
1: क्या है,
0: प्लास्टिक संग्रहण तो बढ़ रहा है, देखिए प्लास्टिक कचरे में वृद्धि भी हो रही है, प्लास्टिक के अल्टरनेट भी अब आते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम ये देख रहे हैं मार्केट में हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचरे का हम लोग प्रोसेसिंग कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों में हम देख रहे हैं कि डिस्पोजेबल आइटम जो है वो अल्टरनेटिव आना शुरू हो गए, जैसे जो कागज की प्लेट्स आती थी अब वो प्रेस मड की प्लेट आ रही है, मतलब वो गन्ने से बना हुआ प्रेस मड है जो डिस्पोजेबल हो सकता है, जिसका हम लोग खाद बना सकते हैं,
1: जैविक है,
0: जैविक है वो, ऑर्गेनिक है वो।
1: और बड़ी बात सामने आ रही है कि जो प्लेटें जो पहले प्लास्टिक की रहे या थर्मोकोल की रहती थी, अब लेकिन वो जो गन्ने के छिलके से बनी प्लेटें हैं, ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा आ रही हैं, और वो क्या होती हैं कि वो नष्ट भी हो जाती हैं प्राकृतिक रूप से, क्यों, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक होती हैं। क्या क्या चीज आप यहाँ पे देते हैं?
0: यहाँ पे गार्बेज कैफे में जो आते हैं उनके साथ साथ जो पब्लिक बस स्टैंड में आ रहे हैं यात्रीगण, उन यात्रीगणों के लिए भी यहाँ पे सुविधा है, तो यात्रीगणों के आधार पे वेंडर को जो लगता है कि यहाँ पे जैसे गर्मी का सीजन है तो लस्सी होना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक होना चाहिए, या लंच में और कुछ कुछ आइटम है, तो सारे आइटम ये बनाते हैं। तो जो गार्बेज कैफे का मेनू है तो फिक्स है कि उसमें आपको खाने में क्या क्या देना है, नाश्ते में क्या क्या देना है, उसके अलावा जो अलग से आ रहे हैं यात्रीगण वो जो यहाँ अवेलेबल है उस ऑर्डर देकर के ले सकते हैं।
1: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया
0: जी,
1: उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा गार्बेज कैफे में?
0: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। कुछ पहले भी चल रहा था अंबिकापुर में, लेकिन मन की बात में आने के बाद और लोगों को पता चला कि गार्बेज
1: कैफे पड़ा,
0: बिल्कुल असर
1: वृद्धि हुई है,
0: उससे भी वृद्धि हुई है। दूसरा, इनके प्रति सपोर्ट भी पड़ा कि एक हमारे शहर की का जो एक सम्मान की बात है कि शहर के बारे में प्रधानमंत्री जी अगर चर्चा कर रहे हैं, तो उससे लोगों के मन में भी

0: आया कि नहीं, ये अच्छी इनिशिएटिव, इसको और बढ़ाना चाहिए। ये भी बात आई कि शहर के और दूसरे हिस्सों में भी हम चाहें तो अगर स्पेस अवेलेबल हो तो चालू कर सकते हैं इसको। ना केवल प्लास्टिक, अगर और भी कुछ इनिशिएटिव करना चाहे तो उस पर भी हम लोग विचार कर सकते हैं आगे चल करके।
1: मैं देख रहा हूँ कि अगल बगल भी होटल हैं, कई जो पुराने होटल हैं, बड़े होटल, वो स्थापित हैं, उसके बाद भी आपका ये अच्छे से चल रहा है होटल, तो जनता का जो भरोसा है, जो एक कई सामाजिक जो मेहनत कश लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन्हें भी एक भरपेट भोजन मिल जाता है कि या कहें कि एक ऐसे शहर में आके कि कचरा इकट्ठे कर लो, तो उन्हें खाने के कम से कम दिक्कत नहीं होती।
0: सबसे बड़ी बात यह होती है कि उनके मन में एक तो जो हेजिटेशन रहता है, ये रेस्टोरेंट में कैसे जाएंगे या क्या करेंगे, जब उनको पता चला कि ये रेस्टोरेंट हमारे ही लिए बना है, गार्बेज लाना है, गार्बेज देकर करना है, तो एक उनका भी हेजिटेशन भी वो हो रहा है। दूसरा चीज, रेस्टोरेंट को मेंटेन रख रहे हैं वेंडर, नगर निगम से भी निरीक्षण हो रही है, पूरा हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं, साफ सफाई मेंटेन रखना है सारा चीज, तो यहाँ पे खाने में किसी कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो रहा है कि किसी प्रकार की कोई गंदगी है, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे समस्या आ रही हो, तो वो सब चीजें नहीं।
1: तो अब एक चीज और कहना चाहूंगा कि देखिए, एक आजकल इकोनॉमिक युग है, तो दिन पे दिन इससे लाभ बढ़ रहा है, उसका क्या अनुपात है आप बताएंगे पहले में और अब में?
0: इसका जो इकोनॉमिक व्यू है, गार्बेज कैफे संचालन का एक तो ये दृष्टिकोण है कि प्लास्टिक हमारे पास आ जाए और रिसाइकलिंग हो जाए और उसको व्यक्ति को भोजन मिल जाए। शुरू में तो हम इसको सब्सिडी में चलाने का हम लोग को लग रहा था कि इसमें नगर निगम को हर टोकन पे कुछ पैसा हम लोग को पे करना पड़ेगा, तो इसमें हमने क्या किया कि एक तो ये प्राइम लोकेशन है, यदि इसको हम लोग बिड करते, टेंडर करते, कोई बड़ा व्यापारी इसको लेता तो काफी पैसे में ये बिक्री हो सकती थी, तो इसका एक सब्सिडाइज रेट हमने रखा कि जो गार्बेज कैफे लेगा उसमें सबसे ज्यादा हमको ये लिख करके कौन देगा कि से मैं कितना कंट्रीब्यूशन दे सकता हूं। अगर मान लीजिए एग्जांपल लूं कि 40 रुपए की प्लेट है, तो 40 रुपए की प्लेट में मैं कितना छूट दे सकता हूं, ये बिड का आधार था, ना कि ये बिड का आधार था कि मैं 5 लाख की दुकान को 15 लाख में लूंगा। ठीक है, तो वो हम लोगों ने फिक्स किया था कि भाई यहां पे आपको केवल और केवल 5 लाख रुपए का ये जो प्रीमियम है वो देना होगा, और जो मंथली रेंट है ना, क्योंकि आर्थिक नुकसान भी निकाय को नहीं होना चाहिए, तो जो मंथली रेंट है वो दूंगा, लेकिन प्रीमियम बिड को हमने फिक्स कर दिया था, उसकी जगह हम लोगों ने ये बिड रखा था कितना डिस्काउंट देंगे। तो जैसे इन्होंने 50% का डिस्काउंट दिया कि यदि मेरी भोजन की प्लेट 50 रुपए की है तो 25 रुपए का कंट्रीब्यूशन मेरा रहेगा। इसने मैक्सिमम लिमिट भी दिया कि एक दिन में अधिकतम 30-40 लोग तक का मैं करूंगा, उसके ऊपर होगा तो आपको फुल पे करना होगा, ये उन्होंने दे दिया। दूसरा, प्लास्टिक जो हमारे पास आ रहा है, हम उसकी वैल्यू देख रहे हैं कि अगर साफ सुथरी प्लास्टिक मेरे पास आती है जिसमें मेरा कलेक्शन का जो खर्च है, छांटने का जो खर्च है, लेबर कॉस्ट, उन सारे खर्च को काटने के बाद सीधा प्लास्टिक मेरे पास ऐसा आ रहा है कि उसको उठा करके सीधे दाना बनाने वाले सेंटर में भेजना है और वो सीधे दाना बन जाएगा, तो दाना बनाने के बाद मेरी जो वैल्यू आ रही है प्लास्टिक की, वो भी लगभग 20-22 रुपए आ जा रही है। अगर साफ सुथरी प्लास्टिक हमको मिल रही है तो 20-22 रुपए वहां से बच गया, कुछ इन्होंने सबमिट कर दिया, तो ये जो टोकन हमको जमा कर रहे हैं उसका 50% हम पे कर देते हैं, 50% ये डिस्काउंट कर दे रहे हैं।
1: तो संक्षेप में ये बताइए कि एक जो अनुपात है, लाभ का अनुपात दिन पे दिन बढ़ रहा है?
0: नहीं, लाभ और नुकसान दोनों इसमें नहीं है, मतलब ये एक अच्छी योजना चल रही है। नगर निगम को लोगों के टोकन पे कोई ना लाभ है ना कोई नुकसान है, बिल्कुल बराबर पहुंच चुके हैं हम लोग। निगम को लाभ क्या है, जो प्रति माह ये किराया दे रहे हैं, क्योंकि अपना रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, तो निगम को जो प्रति माह ये किराया पे कर रहे हैं वो निगम की आय है, राजस्व इस गार्बेज कैफे का।
1: और सबसे बड़ी बात है कि जो आम जन है, आम यात्री हैं, हाँ, उनके बल पे ये
0: बिल्कुल चल रहा है,
1: बस चल रहा है, बस स्टैंड है। तो ये जो योजना है, ये जो एक पहल है, एक छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली में बता रहे हैं अनुकरण करके वहां पे 21
0: यहाँ 21 लोकेशन पे ऐसा
1: 21 लोकेशन पे गार्बेज कैफे दिल्ली में हो गए, और भी जगह ये धीरे धीरे फैल रहा है।
0: बिल्कुल जानकारी।
1: छत्तीसगढ़ में कितनी जगह है?
0: छत्तीसगढ़ में तो अभी अंबिकापुर में।
1: तो आप देख रहे हैं कि जो रितेश सैनी जी हैं, जो इसके इंचार्ज हैं, ये बता रहे हैं कि ये अंबिकापुर जो छोटे से शहर से 2019 से ये पहल शुरू हुई, आगे और इसे उन्नत रूप देने के लिए और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी?
0: अभी हम लोग इसमें जैसे जैसे रिसाइकलिंग बढ़ती जा रही है, हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट पे इतने साल से काम कर रहे हैं, तो नगर निगम अंबिकापुर एक अनुभवी नगर निगम हो गया है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर। और सबसे बड़ी बात जो है, यहाँ की स्वच्छता दीदियां हैं, उनका जो योगदान है, मतलब वो घर घर जाकर डोर टू डोर कलेक्शन कर रही है और इस गुणवत्ता के कचरा को लेकर के आ रही है कि एकदम साफ सुथरा। सपोज दैट अगर अभी हम और आप एक बॉटल में पानी पिए और वो बॉटल इतना फ्रेश है कि हम लोग पानी पी रहे हैं मुंह लगा करके, और उसको अगर हम एक सही ढंग पे सही तरीके से रख देंगे तो उतना ही साफ स्वच्छ रहेगा जितना खाते वक्त था। तो उस स्तर का कचरा अब हमारे पास आ रहा है दीदियों के माध्यम से। तो अब हम लोग ये एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं कि क्या और ऐसा कचरा क्या है जिसकी वैल्यू अच्छी हमको मिल सकती है, तो हम सिटीजन्स के लिए भी कुछ ऐसा और ला सकते हैं कि अगर इस कचरे को आप स्टोर करके साफ सुथरा अगर हमको दे रहे हैं तो हम उसके बदले में कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, ना केवल खाना ही, कुछ और भी इंसेंटिव दे सकते हैं, कुछ हम कूपन इशू कर सकते हैं, कुछ टोकन इशू कर सकते हैं जिसके माध्यम से आप कोई यदि सरकारी योजना का लाभ लेना चाहें, या हम ऐसा टोकन इशू कर दें कि आप टॉकीज में जाकर के फिल्म देख सकें। इस तरह से हम लोग और भी
1: इनिशिएटिव में जाकर फिल्म देख सकें,
0: इस तरह की योजना कैसे से बच्चों का, सपोज दैट कि बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि जैसे प्लास्टिक पेट बॉटल है उसकी वैल्यू अच्छी हो, वो 40-45 रुपए किलो तक बिकती है, तो हम ये कर सकते हैं कि उनको कुछ टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं बच्चों को कि आप कैसे इसको अपने घर में कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे एक प्लास्टिक की बॉटल है उसमें यदि हम डेली छोटे छोटे पाउचेस हैं सॉस के, या उसको हम डालते जाएं फिर प्रेस करते जाएं, डालते जाएं, वो एक भर के इतना कंप्रेस्ड हो जाएगा कि कुछ दिन बाद ये पता चलेगा कि वो एक लीटर की प्लास्टिक की बॉटल में आपने 2 किलो प्लास्टिक, और वो छोटा प्लास्टिक है जो नालियों में चला जाता है जिसको सेग्रीगेशन बड़ा करना कठिन है।

0: इस तरह के बच्चे अगर इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हम उनमें उनको कुछ इंसेंटिव बच्चों को, चाहे वो फिल्म मूवी देख सके कोई बच्चों से रिलेटेड, या उनको कुछ उनके एजुकेशन से रिलेटेड अपन कॉपी देना चाहें, कंपास देना चाहें, इस तरह की चीजों पर भी कुछ।
1: तो उससे कई अच्छे परिवार के भी जो बच्चे हैं वो भी जुड़ेंगे, मध्यम वर्गीय हैं वो भी जुड़ेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पहल है ये हर वर्ग के लिए अनुकरणीय हो सकती है, जो छोटी सी पहल इस शहर से निकली।
0: जो मैंने बच्चों के इनिशिएटिव की बात करी तो मन की बात में एक एपिसोड भी आया था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट भी किया था। अंबिकापुर में एक स्कूल है होली क्रॉस स्कूल, होली क्रॉस स्कूल के बच्चों ने क्या किया कि स्कूल में जितना भी वो लोग चॉकलेट या जो भी लेकर के जाते हैं
1: उसके रैपर्स
0: को इकट्ठा करके और अलग अलग कंपनी के कोरियर बनाए और कंपनी को कोरियर कर दिया कि ये आपका कचरा आपको वापस। बच्चे लोगों के दिमाग में ये बात आई कि जब कंपनी हमसे 10 रुपए का 15 20 रुपए का हम चिप्स खा रहे हैं तो उसके कचड़े को कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों नहीं है, उसकी भी रिस्पांसिबिलिटी उनको लेनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब ब्रांड वाइज अलग अलग किया, स्कूल में सेग्रीगेट किया और उस ब्रांड को कोरियर कर दिया।
1: एक तरीके से देखा जाए तो बच्चों ने एक प्रेरणा दी और एक समाज को और देश को आईना दिखाया कि यदि आप किसी चीज में कर रहे हैं तो कचड़ा निपटान की भी जिम्मेदारी बनती है। माने कहा जाए तो अब जो देश है वो बदल रहा है और गार्बेज कैफे की जो अवधारणा है वो वास्तव में देखा जाए तो वैश्विक होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है।
0: हैशटैग गार्बेज कैफे सर्च करिए तो आपको तमाम देशों के मिल जाएंगे, उसमें बांग्लादेश से लंदन इटली वगैरह सारे जगह,
1: जापान कोरिया यहां से भी
0: सभी जगह
1: प्रशंसा आई थी, इसकी
0: प्रशंसा आई थी। अंबिकापुर के ट्वीट को रिट्वीट किया गया, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने बताया कि ऐसा इनिशिएटिव यहां पे ले रहे हैं और ट्विटर में सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है।
1: दोस्तों आज इस महत्वपूर्ण विषय के साथ एक जो यहां से यात्रा शुरू हुई गार्बेज कैफे की, तो इस गार्बेज कैफे की जो यात्रा के सबसे प्रमुख जो व्यक्ति हैं रितेश सैनी जी से, उनसे हमने साक्षात्कार किया, इस यात्रा वृतांत के बारे में पूछा, इस रोचक यात्रा के बारे में पूछा और कई अनछुए पहलुओं का भी इन्होंने पूरा विवरण दिया जो काफी रोचक है। तो आज मुझे यानी आलोक शुक्ल को अनुमति दीजिए। जय हिंद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक अनोखी पहल गार्बेज कैफे पर विशेष चर्चा। संवाद में भाग ले रहे थे इस पहल के पीछे काम कर रहे रितेश सैनी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आलोक शुक्ल। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे पॉडकास्ट सीरीज के अंतर्गत प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ, इस कार्यक्रम का 7वां एपिसोड। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आनंद फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने और संगीत से सवारा था सलील चौधरी ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं तकदीर फिल्म का गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल हैं और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब एक छोटा सा ब्रेक।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमेर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री

0: मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा, जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
3: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, MSME के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी MSME को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में MSME को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4

0: गांव के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्रों से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमेरिका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमेरिका ने ईरान के दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
2: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमेरिका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समय अनुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्र

0: राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और एवीसी मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने दो दो सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honor. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. Sri Ram Janmabhoomi Mandir Trust General Secretary Champat Rai and Trustee Anil Mishra resign on moral grounds following the donation embezzlement case. Ceasefire between the US and Iran under pressure after a series of retaliatory strikes between the two sides. And in US Open Badminton, India's Devika Sehar, Kidambi Srikant and Ronak Chauhan reach semi-finals in California. Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a three-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. A report.
2: Prime Minister Narendra Modi visited the Botanical Garden and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mar plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Ma Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the Botanical Garden. In a social media post, Mr. Modi said that Aldabra giant

0: की जान तलफ नहीं हुई है। वज़ीरे दिफा के बयान के तनाजुर की वजाहत पेश करते हुए वजारत ने कहा है कि जनाब सिंह के खिताब के वक्त मीडिया के कुछ हिस्सों और सोशल मीडिया पर एक मखसूस मुस्तकिल और पुर असर बयानिया उभरा, जिसमें दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय पायलट्स की जानें तल्फ हुई हैं। वजारत ने कहा है कि ये बयान कतई गलत था, इसके बावजूद इसे बहुत शिद्दत के साथ तूल दिया जा रहा था, जिसमें वाज़े तौर पर ऑपरेशन की कामयाबी को कम करने और अवामी जज्बात को मजरूह करने की नीयत कार फरमा थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया है कि जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने अपने इस्तीफे दे दिए हैं। इस सिलसिले में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के खजांची ने आज एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि अगली मीटिंग में इन इस्तीफों पर गौर व खोज किया जाएगा। इसमें इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि अकीदतमंदों की जानिब से दान में दी गई चांदी की ईंटें और जेवरात वगैरह का हिसाब किताब लिया जाएगा। ट्रस्ट ने अपने खत में कहा है कि अयोध्या राम मंदिर में पेश आए हालिया वाकयात से उसे इंतहाई अफसोस और सदमा पहुंचा है। इसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि SIT की अबूरी रिपोर्ट के मुताबिक अतियात से मुतालिक मामले में एक FIR भी दर्ज की गई है, जिसके तहत कानूनी कार्रवाई जारी है। महाराष्ट्र की टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET से मुतालिक पेपर लीक होने के एक बड़े वाकये का राज भिवंडी में फाश हुआ है। इम्तिहान के इनेकाद से एक दिन कबल इस बात का इल्म हुआ और पेपर लीक मामले में मुलव्वस 3 मुबैना अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि मुलजमीन TET के सवालनामे दिल्ली से लेकर आए थे और वो मुबैना तौर पर तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की मालियत के एक सौदे में उन्हें फरोख्त करने की तैयारी कर रहे थे। एक सुराग मिलने पर कार्रवाई करते हुए भिवंडी की पुलिस ने एक जाल बिछाया और लेन देन तय पाने से कबल ही 3 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया गया। इस वाकये के बाद महाराष्ट्र की स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने इतवार को होने वाले TET के इम्तिहान को मुलतवी कर दिया है। इम्तिहान की नई तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। इस वाकये के सबब महाराष्ट्र भर में लाखों उम्मीदवारों के दरमियान तशवीश पैदा हो गई है। मगरबी एशिया में 4 महीने से जारी महाजराई को खत्म करने की गरज से 2 हफ्ते पहले तय पाई कमजोर जंगबंदी को इंतहाई दबाव का सामना है। पिछले 48 घंटे में अमरीका और ईरान के दरमियान कई हमले और जवाबी हमले हुए हैं। हमलों ने जुमेरात के रोज उस वक्त जोर पकड़ा जब आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल जहाज पर किए गए ईरानी हमले के जवाब में अमरीका की जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। इसके बाद तेहरान के बकौल आज खत्ते में अमरीकी फौजी पोजीशन के खिलाफ उसका हमला एक दिफाई हमला था। दोनों ही मुल्क अबूरी माहदे की खिलाफवर्जी का एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि अमरीका और ईरान दोनों ही जैसे को तैसा मुहावरे पर अमल करते हुए फौजी कार्रवाइयों के एक सिलसिले में मुलव्वस हो गए हैं, जिससे 40 मुल्कों की सिफारती कोशिशों को खतरा लाहक हो गया है। अफगानिस्तान के हिंदुकुश खत्ते में आज शाम भारतीय वक्त के मुताबिक तकरीबन 7:04 पर 6.2 शिद्दत का जबरदस्त जलजला आया। जलजले के झटके भारत, पाकिस्तान, चीन, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमानिस्तान में महसूस किए गए। दिल्ली NCR, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा समेत शिमाली भारत के कई हिस्सों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, कुपवाड़ा और जम्मू जिलों समेत मरकज के जेर इंतजाम कई इलाकों में लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए। एहलकारों ने बताया कि किसी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी में साइंसदान संजय कुमार प्रजापति ने बताया कि यह जलजिला अपनी नौयत के एतबार से मोतदिल था और इसके मरकज के नजदीक तवक्को है कि नुकसान भी काफी कम हुआ होगा।
1: की जो गहराई है 215 किलोमीटर है और ये भूकंप काबुल से लगभग 478 किलोमीटर उत्तर में है और श्रीनगर से 512 किलोमीटर पश्चिम में है और ये दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में और इसके झटके जो है दिल्ली NCR, चंडीगढ़, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश कई हिस्सों में महसूस किए गए और रिपोर्ट के पास इसकी तीव्रता थी 4 और इसकी गहराई अधिक होने के कारण ये रीजन में महसूस किए गए, लेकिन इसकी इंटेंसिटी 4 ही है तो इसकी क्षति होने की संभावना बहुत कम है।
0: भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने कल के लिए आसाम, मेघालय, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश से लेकर इंतहाई शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल के लिए तेज गर्मी की पेशगोई की है। दिल्ली में कल आरजी तौर पर

अब आलूद रहने की भी पेशगोई की गई है। यूएस ओपन बैडमिंटन में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में टाइटन जिम में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। खवातीन के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में देविका सिहाग ने जापान की तीसरे दर्जे की खिलाड़ी रिको गुंजी को सीधे सेटों में 22-20, 21-19 से शिकस्त दी। कल सेमीफाइनल में उनका मुकाबला डेनमार्क की लाइन क्रिस्टोफरसन से होगा। मर्दों के सिंगल्स में साबिक आलमी नंबर एक खिलाड़ी किदांबी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जोफो को 21-9, 12-21, 21-8 से शिकस्त देकर मर्दों के सिंगल्स के फाइनल के लिए इस इम्कान को बरकरार रखा है कि फाइनल में दोनों भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगे। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी सेशेल्स के 50वें यौमे आजादी की तकरीबात में मेहमान आजादी के तौर पर शिरकत के लिए वहां पहुंच गए हैं। भारत ने सेशेल्स की तरक्की और सिक्योरिटी के लिए उसे तेज रफ्तार गश्ती जहाज, एम्बुलेंसेज और दीगर कामों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां और लेजर रेडियल कश्तियां तोहफे में दी हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अतियात में खुर्द बोर्ड से मुतालिक मामलों के बाद अखलाक की बुनियाद पर इस्तीफे दे दिए हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान दोनों तरफ से हमलों और जवाबी हमलों के बाद जंगबंदी दबाव का शिकार है। और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ प्रियंका जेना। विज्ञान भारती के माध्यम से हम विज्ञान से जुड़े विभिन्न विषयों, पहलुओं, उपलब्धियों और समाचारों को आप सबके साथ साझा करते हैं। आज के विज्ञान भारती के संक में भी विज्ञान से जुड़े हुए विषयों को आप तक पहुँचाएंगे। रहिए हमारे साथ। आज के कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत है भेंट वार्ता, भूकंप का विज्ञान, भूकंप क्यों आते हैं। इन विषयों पर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के निदेशक डॉक्टर विनीत गहलोत विज्ञान की इस घटना भूकंप के बारे में बातचीत कर रहे हैं रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर विनीत गहलोत, भूकंप है क्या? क्या भूकंप आने से पहले कुछ विशेष सिग्नल्स मिलते हैं जो भूगर्भवेत्ता है उन्हें, जिनके द्वारा हमारे लोग हैं उन्हें मैसेज हो सके?
2: जो हमारी प्रकृति है उसमें कई सारी ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो नेचुरल हैं, ना तो उनके ऊपर आपका कंट्रोल है और ना आपको उस पर कंट्रोल कर सकते हैं और ना आपको करना चाहिए। उनमें से एक प्रक्रिया है जिसको हम इंग्लिश में प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं, और वो प्लेट टेक्टोनिक्स ही है जिसकी वजह से आप जितना भी भूखंड देखते हैं, जितने भी महाद्वीप देखते हैं या जितने भी द्वीप देखते हैं समुद्र के अंदर, जो कुछ भी आप देखते हैं, जो भी संरचना देखते हैं आज की तारीख में, वो केवल प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से है। और वही एक प्लेट टेक्टोनिक्स है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। जो भूकंप है वो प्राकृतिक आपदाएं हैं, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसको आप ना तो रोक सकते हैं और ना इसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी बात सच है कि अगर भूकंप नहीं होंगे तो प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, और प्लेट टेक्टोनिक्स नहीं होगी, धरती को आप जीवित प्लैनेट कहते हैं, धरती को हम जो कहते हैं जीवित प्लैनेट, उसकी जो डेफिनेशन है वो खत्म हो जाएगी। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, इनको तो चलना ही है और ये चलती ही रहेंगी। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है एक सबसे बड़ा कारण है कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स जो प्रक्रिया है जिसके चलते ये सारे कॉन्टिनेंट बने हैं, हिमालय बना है, महासागर में जो आइलैंड बेल्ट है जिसे द्वीप कहते हैं वो बने हैं, वो सब कुछ प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से बना है। और वही प्लेट टेक्टोनिक्स है जो कि अर्थक्वेक को बुलाती है। तो भूकंप का सबसे बड़ा कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है। उसके अलावा हमारी कुछ अपनी गतिविधियां हैं, जैसे माइनिंग की एक्टिविटी, खनन का काम करते हैं, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। कई बार हम लोग आजकल जैसे ऑयल और गैस निकाल रहे हैं हम लोग, उसकी वजह से भूकंप आते हैं। तो कई बार कोई डैम बना दिया, उसकी वजह से भी कभी कभी भूकंप आते हैं। लेकिन जो सबसे बड़े भूकंप और सबसे असंख्या जो होती है वो प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से ही होती है। पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर है, उसके चारों तरफ के जितने कॉन्टिनेंट हैं उनको अगर आप ध्यान से देखें, वहां पे पैसिफिक प्लेट एक सिंगल प्लेट है, उसके चारों तरफ फिर ये कई सारी प्लेट हैं। जब भी दो प्लेट के बीच की बाउंड्री होगी उसको कहते हैं हम लोग कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन या डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन। जो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन जैसे कि हिमालय है, वहां जो कि सबडक्शन जोन जिसे कहते हैं, वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते हैं। तो जो रिंग ऑफ फायर है वहां पे कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन चारों तरफ है, यानी कि चारों तरफ आपके पास वहां पे बड़े बड़े भूकंप आने की जगह है। अगर हिमालय के उसमें कहें तो चारों तरफ आपके वहां पे हिमालय जैसी संरचनाएं हैं जिसकी वजह से वहां बड़े बड़े भूकंप आते हैं, जिसको हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। हमारा जो हिमालय है वो रिंग ऑफ फायर के क्षेत्र में नहीं।

0: नहीं आता है। हमारा जो हिमालय है उसको हम लोग अल्पाइड हिमालयन साइस्मिक बेल्ट कहते हैं, यानी कि आल्प से शुरू होके फिर वो जैग्रोस यानी कि ईरान इराक और फिर सुलेमान किरथार पाकिस्तान में होके फिर उसके बाद हिंदुकुश और उसके बाद फिर हिमालय, फिर उसके बाद अराकान योमा और उसके बाद फिर अंडमान सुमात्रा बांदा, ये वाली जो चेन है उसमें भी हिमालय आता है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कहती है कि सारी प्लेटें गतिमान है। अब उस प्लेट को चलाना कैसे है ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट है जब वो रगड़ रही है आपस में तो क्या वो आसानी से एक दूसरे के अंदर समा जा रही है या वो रुक रुक के जा रही है। अगर वो प्लेट रुक रुक के जा रही है तो यानी कि रुक रही है इसका मतलब उसमें ऊर्जा संचित हो रही है और उसके बाद जब वो ऊर्जा बहुत ज्यादा जाती है तो वो ऊर्जा निकल जाती है तो उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। तो जब भी कोई भी छोटा हो या बड़ा भूकंप हो इसका मतलब वो अपने अंदर जो ऊर्जा संचित हुई थी जिसका कि मेन कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है उसको रिलीज कर रहा है। तो यानी कि जो छोटे भूकंप होते हैं उसमें बहुत छोटी ऊर्जा जो है निकलती है और जो बड़े भूकंप होते हैं उसमें बड़ी ऊर्जा निकलती है, लेकिन यही वो ऊर्जा है जिसकी वजह से जब हम इसको लिविंग प्लैनेट या डायनामिक प्लैनेट कहते हैं कि मतलब ये इसमें सारी प्लेट गतिमान है और जो वो गति है वो अर्थक्वेक की वजह से ही होती है। अगर किसी इलाके में बहुत सारी ऊर्जा निकल रही है छोटे छोटे भूकंप के रूप में, हालांकि वो रिलेशन इतना लीनियर नहीं है, लेकिन हाँ वो दो चीजों को बता रही है कि एक तो ये कि ये इलाका भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप आ सकते हैं, कोई बड़ा भूकंप आ सकता है, लेकिन अगर उसकी ऊर्जा इतनी निकल पा रही है जितनी कि उस प्लेट मोशन में जरूरत थी तो फिर इसका मतलब बड़ा भूकंप आने की संभावना कम हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको बहुत ही लोग कैजुअली लेते हैं जो कि एकदम गलत है। छोटे भूकंप का आना ये नहीं बताता है कि बड़ा भूकंप नहीं आएगा, छोटे भूकंप का आना ये बताता है कि ये इलाका भूकंप प्रभावित है और यहाँ पे बड़ा भूकंप आ सकता है। अभी हमारे साथ समस्या क्या है कि हम लोग भूकंप के हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं, हम लोग कौन से इलाके हैं वो कहाँ पे भूकंप आ रहे हैं, वहाँ पे कैसे भूकंप आते हैं, वहाँ पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और अगर वहाँ पे बड़ा भूकंप आएगा तो उससे क्या हानि हो सकती है, वो कौन से इलाके हैं जहाँ पे की हानि ज्यादा होगी या हानि कम होगी। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं क्या इससे हम भविष्यवाणी कर पाएंगे, वो एक पार्ट है जो हमारे साइंस का जो अभी भी अछूता है जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रयास कर रहे हैं, हम ही नहीं सारे विश्व उसके बारे में प्रयास कर रहा है। एनडीएमए की वेबसाइट पे जाएं तो जो आपका साधारण मकान जो घर का बनाना है साधारण स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए वो वहां पे मौजूद है। जैसे हम लोग यहां बैठे हैं ये हमारे पास एक टेबल है तो मैं जरा देख लूं इसको कि ये टेबल कितनी मजबूत है, अगर ये टेबल मजबूत है तो अच्छा होगा कि मैं इसके नीचे घुस जाऊं बजाय इसके कि बाहर भागूं और उसके बाद अनेसली और कोई रिस्क लूं, तो अच्छा होगा कि मैं इसके टेबल के नीचे घुस जाऊं। सबसे बड़ा जो उनका मोटो है वो ये है कि ड्रॉप कवर एंड होल्ड, ये तीन वर्ड वो यूज करते हैं कि ड्रॉप यानी कि आप जहां भी हैं वो नीचे गिर जाएं, किसी सुरक्षित जैसे पलंग है बेड बहुत मजबूत होता है आप उसके नीचे घुस जाएं, आप किसी टेबल के नीचे घुस जाएं तो वो सबसे अच्छी जगह है। ड्रॉप हो गया, कवर उस अपने आप को कवर कर लें, सिर को कवर कर लें आप ऐसे करके, क्योंकि सबसे जो आपका जो नाजुक चीज है वो सिर है आपका, तो सिर को आप कवर कर लें और होल्ड और वहां रहें जब तक कि वो कंपन बंद नहीं हो जाए। तो ड्रॉप कवर एंड होल्ड वाला जो सिद्धांत है वो काफी आजकल सब लोग इसको फॉलो करते हैं और स्कूल में यही सिखाया जाता है ड्रॉप कवर एंड होल्ड। जो पूर्व तैयारी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो जब आपके सामने इतनी भयंकर कोई विपत्ति आती है तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो आपकी केवल पूर्व ट्रेनिंग ही काम आती है जो आपको बचा सकती है। तो इसलिए पूर्व ट्रेनिंग पे हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अक्सर लोग भूकंप को लेके काफी अजीब अजीब तरह से बात भी करते हैं, अफवाह भी फैलाते हैं और कहते हैं कि साहब भूकंप इसलिए आ गया या उसलिए आ गया, तो अफवाहों पर ध्यान ना दें, सबसे पहला काम तो यही है। और दूसरा ये है कि भूकंप लोगों को नहीं मारता, जो कमजोर बिल्डिंग है वो लोगों को मारती है। आज तक का इतिहास अगर उठा के देखें तो किसी एक भूकंप ने, खाली भूकंप ने किसी आदमी को नहीं मारा है, जो हानि हुई है वो केवल इसलिए कि जब हम लोग असुरक्षित घरों में थे और वो घर हमारे पर गिर गए और फिर डेथ हो गई। तो उस घरों को सुरक्षित बनाएं, पहले से तैयारी रखें, जैसे अगर हम उत्तराखंड में रह रहे हैं तो हमें मालूम है कि ये भूकंप वाला क्षेत्र है, तो हमें पहले से हमारे पास तैयारी होनी चाहिए कि अगर भूकंप आएगा तो हम कहां जाएंगे, कहां भागेंगे, कैसे भागेंगे और क्या करेंगे। अब कम से कम जितने हमारे पास आंकड़े हैं या जितनी विज्ञान ने तरक्की कर ली है तो हमें मालूम है कि भूकंप कैसे आते हैं, हमें मालूम है कि भूकंप क्यों आते हैं। हाँ, बस एक ही समस्या जो हमारे साथ है वो ये है कि अगला भूकंप कहां आएगा ये हमें पता है, लेकिन कब आएगा इसके बारे में थोड़ी समस्या है। उसके बारे में अभी भी शोध जो है वो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी अभी भी परेशानियां हैं, लेकिन भूकंप कैसे आता है इसके बारे में हम लोगों को कोई संदेह नहीं है कि ये एक प्राकृतिक क्रिया है जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कंट्रोल होती है। है।
1: अभी आप सुन रहे थे भूकंप का विज्ञान विषय पर डॉक्टर विनीत गहलोत, निदेशक वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून।

0: उनसे भेंट वार्ता। अब सुनिए उत्तराखंड रत्न से सम्मानित ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मीकांत के विचार। डॉक्टर लक्ष्मीकांत हमें बता रहे हैं कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है और किस प्रकार रेडियो आज भी किसानों का विश्वसनीय साथी बना हुआ है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें आकाशवाणी की और भारतीय कृषि की, दोनों ने एक लंबा सफर साथ साथ तय किया है। क्या भूमिका रही है आकाशवाणी की भारतीय कृषि के विकास में?
2: ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने चुना है आज के लिए, और मैं ये कहूंगा कि अगर आप थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ करके देखें तो आकाशवाणी और कृषि दोनों बिल्कुल हाथ बांधे साथ साथ इनका सफर रहा है। 1936 में जब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई, और आपको ये भी ज्ञात होगा कि आजादी के बाद देश में जो अनाज था उसका एक बड़ी कमी थी, और जो 1964 में जो डॉक्टर बोरलॉग जो नोबल लॉरेट थे, उनका जब जो गेहूं का जो जनन सामग्री थी जब वो यहाँ पर ला करके जब टेस्ट की जा रही थी, तो उससे जो पैदावार में बढ़ोतरी हुई, तो वो एक जिसको हम आधुनिक कृषि कहते हैं, जिसमें आपके उन्नत बीज का प्रयोग किया गया, खाद पानी इन सब आगतों का जो प्रयोग किया गया, और उससे जो जिसको हम लोग हरित क्रांति कहते हैं, जो हरित क्रांति आई, तो ये जो हमारे किसान थे उनके लिए नई चीजें थी
1: जी।
2: और आज का समय तो बहुत सारे प्रसार के साधन आ गए हैं, तो उस समय सबसे प्रभावी जो साधन था वो रेडियो था, क्योंकि रेडियो की पहुंच जगह जगह थी और सुदूर क्षेत्रों में भी रेडियो की पहुंच थी। तो इसलिए ये सोचा गया, जो उस समय भारत के जो कृषि मंत्री थे, तत्कालीन कृषि मंत्री भारत रत्न सी सुब्रमण्यम साहब
1: जी,
2: उन्होंने देखा कि जो अमेरिका है इसमें रेडियो की सफलता कृषि के प्रचार प्रसार में काफी हुई है, तो उन्होंने 7 आकाशवाणी के जो केंद्र थे उस पर फार्म एंड होम यूनिट जो है शुरू करवाए
1: जी।
2: तो इससे भारत में जो कृषि प्रसारण के एक नए युग की इसकी शुरुआत हुई। इसने बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो कृषि तकनीकों को आम जो कृषक है हमारे सुदूर क्षेत्रों में उन तक पहुंचाने में, और उनकी जीवन शैली को सुधारने में, और उनका जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसको बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इस कार्यक्रम ने निभाई। मैं तो पहाड़ में ही रहा हूं, तो मैंने देखा है कि हम लोग रेडियो को अलग अलग जगह पे ले जा करके उसको रखते थे कि कहाँ पे साफ सुनाई दे रहा है, तो कई बार वो साफ नहीं सुनाई देता था। उस समय ये आकाशवाणी लखनऊ से ट्रांसमिशन होता था और नजीबाबाद उसको रिले करता था
1: जी,
2: और वो सुनाई नहीं देता था। और ये भी युग था कि टीवी तो था नहीं
1: जी,
2: मोबाइल भी नहीं था, और केवल रेडियो ही एक होता था, और शाम को जब कृषि जगत उस पर लगता था तो उसको एक जगह पे लगा के गाँव के सारे लोग सुनते थे उस टाइम
1: जी।
2: तो आज क्या हो गया है कि जो डिजिटल युग आया उससे ये स्पष्ट देने लगा। आज तो हर किसी के पास में स्मार्टफोन, अधिकतर गांवों में भी स्मार्टफोन है, जहां पे नेटवर्क की समस्या है वहां तो अभी भी रेडियो ही चल रहा है, लेकिन जिन क्षेत्रों के आसपास में नेटवर्क अच्छा है तो उसमें इसके थ्रू इसके प्रचार प्रसार में और कृषि के जो ज्ञान है उसके प्रचार प्रसार में बड़ी मदद मिली है। कई लोग अभी भी जो किसान भाई है वो जो आकाशवाणी से प्रसारित होते हैं कृषि से संबंधित कार्यक्रम, वो सुनते हैं और बताते हैं, साहब हमने उसमें सुना था ऐसा ऐसा, फला वैज्ञानिक ने ऐसा बताया था और उसको हमने प्रयोग किया
1: जी।
2: तो अभी भी ये लोग इसमें रुचि लेते हैं और सुनते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है आकाशवाणी का, क्योंकि जो हमारी पॉपुलेशन है इस सब तक पहुंचना, इंडिविजुअल आदमी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। रिपोर्टर्स हैं वो जब जाकर के किसानों के खेत पे जाकर के उसकी जो सक्सेस स्टोरी को लेकर के आते हैं, और किसान जो है ना जब वो अपने साथी किसान के जुबान से सुनता है कि सफलता की कहानी, तो उसको ज्यादा भरोसा होता है
1: जी।
2: तो और उसके अंदर एक ये विश्वास होता है कि भाई इस भी ने ये किया है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ
1: जी जी।
2: कृषि में एक्चुअली सारा कुछ आ जाता है, पशुपालन भी, मत्स्य पालन भी, रेशम पालन भी, ये सारी चीजें आ जाती हैं, या मुर्गी पालन है, बागवानी है, ये सब कृषि के ही अंग हैं। अभी भी अगर गांव का भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी नहीं है
1: जी।
2: तो इन चीजों को लगातार इस पर समसामयिक कार्यक्रम होते रहे, इन योजनाओं की जानकारी किसानों को मिलती रहे, तो उससे किसान भाई जो है लाभान्वित होंगे, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी दशा बहुत सुधार की जरूरत है उसमें
1: जी।
2: तो उसमें ये जो आकाशवाणी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है और उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ किसानों को मिल पाएगा।
0: आकाशवाणी का कृषि के विकास में योगदान विषय पर जानकारी साझा कर रहे थे उत्तराखंड रत्न से सम्मानित डॉक्टर लक्ष्मीकांत, निदेशक ICAR विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा। कार्यक्रम के अगले खंड में अब बातचीत कर रहे हैं ऊर्जा संरक्षण

0: पर और ऊर्जा संरक्षण के इस विषय पर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजेश त्रिपाठी हमें बता रहे हैं कि ऊर्जा संरक्षण क्यों आवश्यक है और भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बातचीत कर रहे हैं इनसे रमेश चंद्रा।
1: डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि भारत जैसा जो देश है, जो विकसित हो रहा देश है, इसमें ऊर्जा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आज के समय की बात करें तो जो हमारा देश है, इसमें चुनौतियां क्या आप समझते हैं ऊर्जा को लेकर?
2: समाज के लिए ऊर्जा हमेशा से आवश्यक रहा है, चाहे आप व्यक्तिगत जिंदगी में देखें तो भी ऊर्जा की आवश्यकता है, शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो ऊर्जा का तो महत्व हर जगह है। हमारे देश में ऊर्जा इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि किसी भी समाज को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, चाहे ऊर्जा के स्रोत के रूप में आप पेट्रोलियम को देखें, चाहे और स्रोत हैं जैसे हाइड्रो है, थर्मल है, विंड है, विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं। हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम अभी भी ऊर्जा के मामले में, खास तौर से पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है। सभी जानते हैं कि भौगोलिक जो अवस्था है जो हमारे देश की, उसमें पेट्रोलियम उत्पाद उतनी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ बाकी देशों में, जैसे आपका अमेरिका है, रशिया है, ईरान है, मिडिल ईस्ट नेशन है, जहां पर पेट्रोलियम उत्पाद काफी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो इसीलिए हमारे लिए एक चिंतनीय विषय भी हो जाता है, क्यों? क्योंकि समाज के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता तो पड़नी है। लॉजिस्टिक्स पार्ट्स में अगर देखें, यानी परिवहन है, उद्योग को चलाने के लिए है, तो कहीं ना कहीं ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है, महत्व है, और इससे हम इसको इनकार नहीं कर सकते। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि ऊर्जा के मामले में हम अभी भी संपन्न नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है
1: जी।
2: आप जानकर हैरत करेंगे कि करीब हमारे जो विदेशी मुद्रा कोष है वो, उसका करीब 70-75% हम सिर्फ पेट्रोलियम उत्पाद को खरीदने में लगा देते। अब उसकी वजह से क्या है कि वो हमारे ऊपर काफी बड़ा बोझ रखता है, और जब तक हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे ऊर्जा के मामले में, तो ये जो विदेशी मुद्रा कोष से जो निकास है, आगत और निकास, हम ये दो प्रबंध की भाषा में बात करते हैं, तो निकास ज्यादा है, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आर्थिक बोझ भी पड़ता है, और इसीलिए जो है ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस पर चर्चा करें, इसके नए विकल्पों की बात करें, नवीनीकरण की बात करें, ये बहुत, जिसको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। हमारे यहाँ आप मान के चलें कि करीब 9-10 महीने प्रचुर मात्रा में प्रकाश मौजूद है, तो उस प्रकाश को हम कैसे प्रयोग कर, क्योंकि आजकल वैज्ञानिक काफी काम कर रहे हैं कि सूर्य के ऊर्जा को कन्वर्ट करके हम बिजली बना सकते हैं, और भी ऊर्जा स्रोत बना सकते हैं, तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर पैनल्स पे काम हो ही रहा है, सरकार आपको सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा हम बायोफ्यूल की बात करते हैं, हाइड्रो ऊर्जा की बात करते हैं, इसके अलावा हम विंड ऊर्जा की बात करते हैं, भारत में हवा की अवस्था ठीक है, तो इस तरीके की वैकल्पिक ऊर्जाओं पे हमें काम करना पड़ेगा।
0: ऊर्जा संरक्षण महत्वपूर्ण क्यों है? डॉक्टर राजेश त्रिपाठी एसोसिएट प्रोफेसर पेट्रोलियम विश्वविद्यालय देहरादून से जानकारी साझा कर रहे थे। आइए अब जान लेते हैं जून महीने में जन्मे महान वैज्ञानिकों की उपलब्धियां और विज्ञान जगत को दिए गए उनके योगदान, साथ ही जून महीने में जिन वैज्ञानिकों की पुण्यतिथि आती है उनके जीवन और वैज्ञानिक योगदान को भी हम याद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं जून के इस महीने में जन्मे और दिवंगत हुए विज्ञान जगत के महान व्यक्तित्व के बारे में। विज्ञान का इतिहास उन महान व्यक्तित्वों की प्रेरणादायक गाथा है जिन्होंने अपनी खोजों और विचारों से मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जून माह विज्ञान जगत के लिए विशेष महत्व रखता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ महान वैज्ञानिकों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की, जिनका जन्म 13 जून 1831 को स्कॉटलैंड में हुआ था। उन्होंने विद्युत, चुंबकत्व और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित करते हुए प्रसिद्ध मैक्सवेल समीकरण प्रस्तुत किए। उनके सिद्धांतों ने रेडियो, टेलीविजन और आधुनिक वायरलेस संचार तकनीक की नींव रखी। अब बात करते हैं एलन ट्यूरिंग की, उनका जन्म 23 जून 1912 को इंग्लैंड में हुआ था। उन्हें आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है। ट्यूरिंग मशीन की अवधारणा और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एनिग्मा कोड को समझने में उनकी भूमिका आज भी इतिहास में अमूल्य मानी जाती है। जून माह में हम नोबेल पुरस्कार विजेता रसायन वैज्ञानिक जेरोम कार्ले को भी स्मरण करते हैं, जिनका निधन 6 जून 2013 को हुआ। उन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे वैज्ञानिकों को अणुओं की संरचना समझने

0: सहायता मिली। इसी क्रम में कैनेथ जी विल्सन, जिनका निधन 15 जून 2013 को हुआ, उन्होंने पदार्थों के व्यवहार और फेज ट्रांजिशन के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्य के लिए उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के अग्रणी विचारक जेम्स मार्टिन का निधन भी 24 जून 2013 को हुआ था। उन्होंने तकनीकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। श्रोताओं, इन महान वैज्ञानिकों का जीवन हमें ये सिखाता है कि ज्ञान, जिज्ञासा और निरंतर प्रयास से मानवता के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले जा सकते हैं। अब सुनिए एक विशेष वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़। गढ़वाल विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर उमेश चंद्र नेथानी सरल भाषा में समझा रहे हैं कि ऑप्टिकल फाइबर तकनीक ने संचार और डिजिटल क्रांति को किस प्रकार नई गति दी है।
1: ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी अर्थ प्रकाशिक तंतु होता है। यह कांच, सिलिका या प्लास्टिक से बना एक बहुत ही पतला और लचीला तार होता है। इसका उपयोग प्रकाश के संकेतों के माध्यम से बहुत तेज गति से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है तो यह तार की दीवारों से टकराकर बिना बाहर निकले आगे बढ़ता रहता है। इस तरह यह बाल के समान पतला तना प्रकाश की तरंगों के रूप में डेटा संचरित करने के लिए तरंग मार्ग का काम करता है। यह आधुनिक उच्च गति इंटरनेट और दूर संचार का आधार है, जो विशाल बैंडविड्थ और लगभग तात्कालिक संचार को विशाल दूरी तक प्रदान करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फाइबर की संरचनात्मक परतों के कारण संभव होता है। इसकी बनावट में मुख्य अवयवों में प्रथम पोर होती है, जो भीतरी अत्यधिक पारदर्शी कांच या प्लास्टिक का तार होता है, जहाँ से प्रकाश वास्तव में गुजरता है। द्वितीय अवयव आवरण होता है, जो प्रकाश के कोर के चारों ओर लिपटी हुई एक बाहरी परत होती है। इसका अपवर्तनांक बहुत कम होता है। घनत्व में यह अंतर दर्पण की तरह कार्य करता है, जिससे प्रकाश कोर के अंदर ही रुक जाता है। तीसरा अवयव बफर कोटिंग और जैकेट होता है। यह बाहरी सुरक्षात्मक प्लास्टिक और रबर की परतें, जो नाजुक कांच को किसी भौतिक नुकसान, नमी और झुकने के तनाव से बचाती है। परंपरागत तांबे के तारों की तुलना में ऑप्टिकल फाइबर कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करता है। कुछ मुख्य लाभों को अगर देखें तो यह विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप EMI या रेडियो आवृत्ति हस्तक्षेप RFI से प्रभावित नहीं होता है। चूंकि प्रकाश पूरी तरह से कोर के अंदर समाहित होता है और विकिरण नहीं करता है, इसलिए ऑप्टिकल फाइबर को तोड़े बिना उसमें सेंध लगाना बेहद मुश्किल है, जिससे यह अत्यधिक सुरक्षित हो जाता है। प्रकाश लगभग तात्कालिक गति से यात्रा करता है, जिससे केबलों को हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीम करने, AI क्लाउड नेटवर्क चलाने और वैश्विक डेटा को रूट करने की लगभग असीमित क्षमता मिलती है। ऑप्टिकल फाइबर के सामान्य अनुप्रयोगों में इंटरनेट और दूरसंचार शामिल हैं। ये आधुनिक वैश्विक नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी हैं, जो फाइबर टू द होम, FTTH, ब्रॉडबैंड, समुद्र के नीचे बिछी संचार केबल और उच्च क्षमता वाले टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क प्रदान करते हैं। सोचिए, यदि इंटरनेट न हो तो जीवन कैसा होगा? सब जगह अंधेरा ही अंधेरा होगा और हम विज्ञान में और मेडिकल के क्षेत्र में आजकल के युग में किसी भी कंप्यूटेशन के लायक नहीं रहेंगे। मेडिकल इमेजिंग में लचीले ऑप्टिकल फाइबर डॉक्टरों को एंडोस्कोप और लेप्रोस्कोप जैसे गैर आक्रामक उपकरणों के माध्यम से मानव शरीर के अंदरूनी हिस्से को रोशन करने और देखने की अनुमति देता है। इस तरह शरीर के अंदर क्या क्या घटित हो रहा है, इससे डॉक्टर स्पष्ट रूप से देख लेते हैं और तदनुसार बीमारी देखकर इलाज करना आसान और सटीक हो जाता है। निश्चित ही चिकित्सा जगत में यह एक चमत्कार की तरह प्रयुक्त होता है। रक्षा और एरोस्पेस में इसका उपयोग अत्यधिक सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन, विमान वायरिंग और मिसाइल मार्गदर्शन प्रणालियों के लिए किया जाता है। क्योंकि प्रकाश संकेतों के आसानी से रोका या जाम नहीं किया जा सकता, आधुनिक लड़ाइयों में इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इससे दुश्मनों के क्षेत्रों की सही और सटीक जानकारी मिल जाती है। अतः किसी भी देश के लिए रक्षा एवं एरोस्पेस में इसकी भूमिका निर्णायक होती है। औद्योगिक सेंसर फाइबर ऑप्टिक सेंसर का उपयोग पुलों, इमारतों और तेल पाइपलाइनों में तापमान, दबाव और संरचनात्मक अखंडता की निगरानी के लिए किया जाता है। इस तरह मानव द्वारा निर्मित फाइबर से आधुनिक तरीके से मानव रहित प्रणाली से बड़ी चालाकी से कार्य किया जाता है।
0: अभी आपने सुनी ये वार्ता ऑप्टिकल फाइबर डिजिटल भारत की रीढ़ विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर

0: रमेश चंद्र नैथानी सेवानिवृत्त विभाग अध्यक्ष भौतिक विज्ञान विभाग जी गोपाल रेड्डी कैंपस गढ़वाल विश्वविद्यालय पौड़ी से। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और उनके प्रभाव पर महत्वपूर्ण भेंट वार्ता। पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं AIG अस्पताल हैदराबाद के निदेशक डॉक्टर जीवी राव इनसे बातचीत कर रही हैं सीमा कुमारी।
1: डॉक्टर जीवी राव जी, चिकित्सा के क्षेत्र में के उल्लेखनीय योगदान ने लाखों लोगों के जीवन को एक नई दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र में आपका सफर जो है वो कई दशकों से फैला हुआ है। आप यहाँ के जाने माने डॉक्टर माने जाते हैं और अब आप उस शीर्ष स्थान में पहुंचे हैं जहाँ आप दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गैस्ट्रिक के जो पेशेंट्स हैं आजकल, उनके लिए कौन कौन सी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो उपलब्ध हैं अपने भारत में?
2: भारत तो इतना आगे जा चुका है कि दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी आना ना हो भारत पे आ जाता है, और ये टेक्नोलॉजी प्राइम मिनिस्टर साहब की दुआई से अभी इंडिया में भी बन रही है। अभी तो इसके पहले जो टेक्नोलॉजी खाली मेन सिटीज में रहता था, अभी तो गांव-गांव फैल चुका है। अभी ये गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी जो स्पेशलिटी है, बोथ मेडिकल और सर्जिकल जो स्पेशलिटी है, इसमें जो उन्नति हुई ये एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी, रोबोटिक सर्जरी, ये तीन स्पेशलिटीज के वजह से सर्जरीज बहुत मिनिमली इन्वेजिव हो गए और रिकवरी बहुत हो गया। समझो आज एक्चुअली मेजॉरिटी इंडिया में जो फैमिली जो रहते हैं उनका फैमिली में एक ब्रेडविनर रहता है। अगर ये आदमी कोई बीमारी से काम पे ना जाए तो सारी के सारी फैमिली अफेक्ट हो जाती है। तो ये मिनिमली इन्वेजिव जो एंडोस्कोपी हो, लैप्रोस्कोपी हो या रोबोटिक सर्जरी हो, इसके वजह से जो भी चिकित्सा करे आदमी जल्द से जल्द रिकवर होकर अपने काम पे लग जाता है। सो इससे वो बहुत आसान हो गया कि द फैमिलीज आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड नाउ बाय दिस। वी गो थ्रू रेगुलर मेडिकल चेकअप और जो भी डेटा है, हम तो मैं तो एक आदमी हूँ, मैं तो मेरा पूरा डेटा है, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ मेरा एक डिजिटल ट्विन है हॉस्पिटल में, सिस्टम में जो भी मेरा डेटा है पूरा उसमें रिकॉर्डेड है। तो दैट टेक्स केयर ऑफ माई दिस थिंग एक्चुअली।
1: थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर जीवी राव सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट निदेशक AIG अस्पताल हैदराबाद से चिकित्सा क्षेत्र में तकनीक और नवाचार विषय पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। श्रोताओं, अब बात करते हैं जून 2026 में विज्ञान और अंतरिक्ष जगत की कुछ प्रमुख घटनाओं की जिन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। सबसे पहले बात नासा के बहुप्रतीक्षित नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप की। 21 जून 2026 को ये अत्याधुनिक दूरबीन अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर पहुंच गई। इस दूरबीन को हबल स्पेस टेलीस्कोप की उत्तराधिकारी माना जा रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये हबल की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक क्षेत्र का अवलोकन कर सकेगी। इसके माध्यम से डार्क एनर्जी, दूरस्थ आकाशगंगाओं तथा हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित ग्रहों यानी एक्सोप्लैनेट्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होने की उम्मीद है। अब बात यूरोप की एक बड़ी अंतरिक्ष उपलब्धि की। 17 जून 2026 को फ्रेंच गायना के कुरु प्रक्षेपण केंद्र से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के एरियन 6 रॉकेट ने एक ही मिशन में 36 इंटरनेट उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। इस सफलता से वैश्विक इंटरनेट कनेक्टिविटी और अंतरिक्ष उद्योग को नई गति मिलने की उम्मीद है। वहीं चीन ने अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। चीन के त्यांगुगोंग स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण यानी माइक्रोग्रेविटी वातावरण में धान की खेती के प्रयोग कर रहे हैं। ये शोध भविष्य में चंद्रमा और मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां स्थापित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक खाद्य उत्पादन संभव हो जाता है तो लंबी अवधि के अंतरिक्ष अभियानों को नई दिशा मिल सकती है। अब रुख करते हैं मंगल की ओर। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के मार्स एक्सप्रेस यानी के जून 2026 में मंगल ग्रह पर अनेक विशाल धूल के बवंडरों जिन्हें डस्ट डेविल्स कहा जाता है की तस्वीरें भेजी। इन चित्रों के अध्ययन से वैज्ञानिक मंगल ग्रह के वातावरण, मौसम और जलवायु को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। जून 2026 के दौरान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन परीक्षणों, माइक्रोग्रेविटी अनुसंधानों तथा महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन की तैयारियों में हुई प्रगति की जानकारी साझा की। ये उपलब्धियां भारत के भविष्य के मानव अंतरिक्ष अभियानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और अब बात करते हैं जून माह के आकाशीय नजारों की। 21 जून 2026 को उत्तरी गोलार्ध में

0: वर्ष का सबसे बड़ा दिन यथार्थ ग्रीष्म अयनांत मनाया गया। इसके अलावा जून माह में शुक्र और बृहस्पति ग्रहों का सुंदर संयोजन खगोल प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं बुध ग्रह का सायंकालीन दर्शन भी आकाश प्रेमियों के लिए विशेष अवसर लेकर आया। निसंदेह जून 2026 विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नई उपलब्धियों, नई संभावनाओं और नई खोजों का महीना साबित हुआ। तो ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार फिर मिलेंगे आपको नए विचारों के साथ, नवीन जानकारियों के साथ। आज के विज्ञान भारती की प्रस्तुति आकाशवाणी देहरादून की थी। वाचन स्वर प्रियंका जेना का, प्रस्तुति संकल्प मिश्रा। मिलते हैं विज्ञान भारती के अगले एपिसोड में। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अखिल भारतीय पत्रिका कार्यक्रम विज्ञान भारती।

0: ये आकाशवाणी है। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन। समृद्ध संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे प्रभात ने संतूर की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। आपने सबसे पहले श्री दुलाल रॉय से संगीत की शिक्षा प्राप्त की। इससे पहले आपने लंबे समय तक उस्ताद साबिर खान से तबला सीखा, जिससे आप में लय और ताल की गहरी समझ विकसित हुई। आपने संतूर की विधिवत शिक्षा पंडित तरुण भट्टाचार्य और पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी से प्राप्त की। वर्तमान में आप सारंगी वादक पद्म भूषण उस्ताद साबरी खान और सरोद वादक पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान से वाद्य संगीत की बारीकियों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। संगीत में MA करने वाले प्रभात ने गायन और वाद्य संगीत की विभिन्न शैलियों का ऐसा समन्वय विकसित किया है जिससे उनका संगीत मधुर और पारंपरिक दोनों बन गया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के एक ग्रेट कलाकार प्रभात ने भारत के साथ साथ यूरोप में भी व्यापक रूप से प्रस्तुतियां दी हैं। आपने स्पेन, फ्रांस, चिली, केनिया और नॉर्वे जैसे देशों में कार्यक्रम किए। आपने फ्रांस में आयोजित इंडिया फेस्टिवल और स्पेन में आयोजित स्प्रिंग फेस्टिवल में भी भाग लिया। हाल ही में आपने ट्यूनिशिया में ICCR द्वारा आयोजित भारत स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रस्तुति दी। एक रचनात्मक कलाकार के रूप में प्रभात हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नए आयामों की खोज में निरंतर कार्यरत हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ संतूर रिसाइटल बाय प्रभात मुखोपाध्याय। Born in family of rich musical tradition, Prabhat has already made himself a name in the world of Santur. He was initiated by Sri Dulal Roy. He took Taleem from Ustad Sabir Khan in Tabla for a long time to acquire a sense of rhythm and tad. He took extensive training in Santur from Pandit Torun Bhattacharya and Padma Shri Pandit Bhajan Sopori, the two maestros in the instrument. Presently, he is taking tutelage in the intricacies of instrumental music from the great Sarangi Maestro, Padma Bhushan Ustad Sabri Khan, Sarod Maestro, Padma Vibhushan Ustad Amjad Ali Khan. An MA in music, Prabhat has attained the distinction of bringing in a synthesis of the various phrases of vocal and instrumental music to make it both lyrical and ethnic. A-grade artist of All India Radio and Doordarshan, Prabhat has travelled extensively within the country as well as in Europe. He has performed in so many countries, Spain, France, Chile, Kenya, Norway. He participated India Festival in France and Spring Festival in Spain. Recently, he performed India Independence Day Festival in Tunisia, organized by ICCR. A creative artist, Prabhat has been in search of new dimensions in Hindustani classical music.
0: आपके साथ आज इस कार्यक्रम में तबले पर संगत कर रहे हैं मुस्तफा हुसैन। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का आरंभ राग रागेश्री से कर रहे हैं। प्रस्तुत है आलाप, जोड़ और झाला, विलंबित रचना

0: और द्रुत रचना तीन ताल में निबद्ध है.
1: टुडे ही इज अकंपनीड ऑन तबला बाय मुस्तफा हुसैन. प्रभात मुखोपाध्याय बिगिन्स हिज संतूर रिसाइटल विद राग रागेश्री. ही नाउ प्रेजेंट्स आलाप विलंबित लय कॉम्पोजिशन सेट टू झपताल एंड द्रुत लय कॉम्पोजिशन इज सेट टू तीन ताल.

0: ये था प्रभात मुखोपाध्याय द्वारा संतूर पर बजाया गया राग रागेश्री। प्रभात मुखोपाध्याय अपने कार्यक्रम का समापन पहाड़ी धुन से कर रहे हैं।
1: That was राग रागेश्री performed by प्रभात मुखोपाध्याय। He concludes his recital with a पहाड़ी धुन।

0: अभी आप प्रभात मुखोपाध्याय का संतूर वादन सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मुस्तफा हुसैन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ही प्रसारित किया गया।
1: That was धुन played by प्रभात मुखोपाध्याय। He was accompanied on tabla by Mustafa Hussain. With that, we come to the end of this program. This program was earlier recorded in the studio of Akashwani Delhi. Also came to you from the Delhi station of Akashwani.
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही

0: की विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक बंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने बताया कि अब तक कुल दो व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि तीन लोग

भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियांड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन

0: Israeli drone strike hit the Nabatea area a day after Israel and Lebanon signed a U.S. brokered framework for Israeli withdrawal and restoring Lebanese state authority. In the FIFA World Cup, Panama will take on England in Group L match at East Rutherford in U.S. tonight. In another Group A fixture, Croatia will face Ghana at Philadelphia in U.S. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर तीनों सभाओं के कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।